0: ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
1: ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ
0: ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ
1: ਓਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ
0: ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
1: ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਰੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਮੁਝੇ ਦੇਖਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਮ ਤੀਨ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋਂ ਮੇ ਮੈਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਥੀ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਉਸਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੌਕ ਰੂਮ ਮੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹਮਾਰਾ ਰੰਗ ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਯੇ ਸਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਇਸੀ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਗਰੋਥ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਅਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਤੋ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਕਭੀ ਅਲਗ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਕਰੂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਮੇ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾ ਔਰ ਯੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਗਰੋਥ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮਨੇ ਚਲਾ ਦਿਆ ਰੇੜੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਦੀ ਔਰ ਹਮਨੇ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਕੋ ਜੁਗਾੜ ਹਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਔਰੇਂਜ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੋ ਸਭੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਏਕ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਕੋਈ ਔਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਕਾਮ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ੋ ਸੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇ ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪੂਰੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਕਮ ਹੈ ਤੋ ਆਂਖੇ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਖੁਨ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਗਰ ਕਮ ਹੈ तो किसी और चीज से तो सिंथेसाइज हो नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा काम नहीं कर रहा, नहीं सिंथेसाइज हो रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब हम टीथिंग की बात कर रहे तो मैंने ये आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम कहीं से ज्यादा ले लिया जाता है, खुराक में अब उतना आ नहीं रहा, दूध ही देना है बच्चे को, दूध में पूरा कैल्शियम पूरा हो नहीं रहा, तो फिर क्या है, कुदरत आंतरियों से कैल्शियम निकाल लेती। अगर वो आंतरियों से कैल्शियम निकाल के दांत बनाना शुरू कर देगी तो फिर आंतरियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चे को टट्टियां लग जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। इसी तरह ही अगर उसने कहा कि नहीं आंतरियों में भी इतना है नहीं, तो फिर वो हड्डियों से निकालेगी, जो हड्डियों से निकालेगी तो दांत तो बनाना ही है, आगे काम तो चलना ही है, जो नई रेलवे लाइन बिछानी हो तो बिछानी ही है, तो अल्टीमेट हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो बच्चा अभी चलने लगा था, जो बच्चा अभी टेबल के साथ स्टैंड खड़ा हो जाता था, अब वो नहीं होगा। तो मतलब ये एग्जांपल्स मैं आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो न्यूक्लियस है असल में इसका काम क्या है। तो ये सभी चीजें जो शरीर में हमारी खुराक के जरिए नहीं जा रही लेकिन उनकी जरूरत है, और उनकी जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, टू सिंथेसाइज, किसी न किसी और चीज का जुगाड़ बनाकर उन चीजों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है। और ये सब काम जो है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये सब काम जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस का, ये बात हमने आप सब लोगों को बता दी थी। और बड़ी बात मैंने बताई थी कि डीएनए इसमें होता है डिसऑक्सीराइब न्यूक्लियस जैसे होता है जो हमारा करेक्टर को प्रिजर्व करता है, और इसकी भी डिटेल मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि जब माँ और बाप के स्पर्म और ओवम मिलते थे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एक एक क्रोमोसोम से सैकड़ों ही जीन्स थे, और हरेक जीन्स का अपना ही करेक्टर था, वो अपनी ही खासियत थी उसमें, और जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है वो पूरा बराबर बांटा जाता है ताकि जितने भी सिबलिंग्स हों, बहन भाई हों, उन सब में पूरी तरह उस तरह माँ बाप का करेक्टर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कुछ गुण, कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शरारती नौटी हो जाते, कुछ वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो जीन्स इसमें ट्रांसमिट हुए हैं वो जीन दूसरे में उतने ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि हर एक जीन्स का अपना अपना करेक्टर है। एक एक बच्चे का कद लंबा हो गया, एक बच्चे का कद छोटा रह गया, तो किस बात का ये है कि वो जो जीन्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं, हर एक जीन्स के ऊपर जो प्रोटीन की कोडिंग होती, जैसे आप बाजार में सामान लेकर आते हैं ना तो वो चक्री सी बनी होती है लाइनों की, वो उसमें उसको स्कैन करते हैं तो पता हो इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है, ठीक इसी तरह का पूरा ढांचा जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस में होता है। तो ये बात मैंने आप सब लोगों को बताई, इसके अंदर का जो फ्लूड है, जितनी भी चीजें इसमें तैर रही होती हैं या जितनी भी चीजें इसमें प्रिजर्व रहती हैं आगे रिकॉर्ड के लिए या आगे पेश करने के लिए या आगे डिवीजन करने के लिए या ट्रांसमिट आने वाली जनरेशन को देने के लिए, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म का भी काम वही जैसे साइटोप्लाज्म का था, एक अलग ही एनवायरमेंट है, एक अलग ही तरह का माहौल है, जेली लाइक ये होता है और इसी में वो सब चीजें तैरती रहती हैं। अगर ये खराब हो गया तो वो पूरी चीज खराब हो जाती है। इसी तरह ही हमने इसका मेन फंक्शन जो आपको बताया था कि एक तरह का स्टोर हाउस है, जितना भी रिकॉर्ड है हमारी पुराने फोर फादर्स का, उस सब को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा होता है, और जैसे ही आगे नई जनरेशन बनती है तो इसकी जो डिवीजन है वो इस तरह होती है कि सभी चीजें दोनों आगे आने वाली जनरेशन को बराबर ट्रांसमिट हो, बराबर डिवीजन उसमें हो। अब जो बराबर डिवीजन होगी तो आगे आने वाला चैप्टर वही आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन की जिम्मेवारी फिर किसकी है। इसमें तो समान है, इसने तो कहा भी मेरे पास इतना गहना है, इतना डीएनए है, इतने जीन्स हैं, ये सारे ले लो भाई, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कौन करेगा, इसकी बात आज हम इस प्रोग्राम में आपसे करेंगे। और अगर वो डिफेक्ट हो गया तो बेशक बाप ने तो कह दिया कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, इसको भाई बांट लो, और जो बांटने वाला है वो कहेगा किसी को ज्यादा रेतली जमीन दे दी, किसी को रोही की दे दी थी, किसी को पूरी जो है न्याय की जमीन दे दी, फर्क पड़ जाएगा, है ना। सो ये बांटने वाले के ऊपर आएगा। अब हमने ये कह दिया कि ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रखता है कि इसके पास क्या क्या है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। अगर ऐसी ना हुई تو اس کے لیے میں نے بیماریوں کی بات بھی آپ سے کر دی تھی. زیادہ تر جینیٹک بیماریاں نیوکلس کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, نیوکلس کی پرابلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں, جس کو میں نے الزامین یا پرکنسن کہا تھا یا ایلس کہا, اے ایلس کہا تھا, اور یہ سب بیماریاں جو ہوتی ہیں, ان کوآرڈینیشن کہا تھا, آٹو امیون ڈیزیز کہا تھا, یہ سب پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. خاص طور پہ ان کا سمبندھ پچھلی جنریشن سے ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ سب آگے وہی نیوکلس ڈیفیکٹ رہا, وہی آگے ٹرانسمٹ ہوا, پھر آگے آنے والی جنریشن کو اس طرح کی بیماریاں ہو سکتی. تو یہ میں نے شارٹ میں آپ سب لوگوں کو بتا دیا. پھر اس کے بعد میں نے مائٹوکونڈریا کی بات کی تھی, اور مائٹوکونڈریا کو بھی میں نے ڈیٹیل میں آپ سب لوگوں کو سمجھایا تھا کہ بھئی یہ ایک طرح کے راڈس ٹائپ ہوتے ہیں, ایک طرح کے انرجی پروڈیوسنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, ایک طرح بجلی گھر ہوتا ہے, جو بجلی پہنچائے گا تو سبھی مشینری چلے گی, سبھی کچھ اندھیرا دور ہوگا, کام چلے گا. اگر یہ نہیں رہے گی تو ہماری موٹر نہیں چلے گی, ہماری سچائی نہیں ہوگی, پانی نہیں آئے گا, کیونکہ بجلی نہیں ہے اس لیے موٹر چل نہیں رہی. تو وہی کام یہ جو مائٹوکونڈریا کرتا ہے, اس کے بارے میں بھی میں نے پچھلے پروگراموں میں بتایا تھا, اور اس کا کام زیادہ تر افیکٹ برین پہ ہوتا ہے اگر یہ مائٹوکونڈریا نارمل نہ ہوں, کیونکہ پورا سنچالن ہماری باڈی کا ہوتا ہے وہ برین سے ہوتا ہے. برین سے نروز ایشو ہوتی ہیں, اور وہ جو ریڑھ کی ہڈی کے دوارا پورے شریر کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اگر برین میں ہی اس کی کوئی کمی پیشی رہ گئی, کیونکہ سیل تو بلڈ میں بھی ہیں, سیل تو باڈی کے بھی ہیں, سیل تو ہر ایک انگ کے ہی ہیں, وہ میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دیا تھا. مائٹوکونڈریا ہر ایک سیل کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, اور اس مائٹوکونڈریا کی وجہ سے ہی ہر ایک سیل کی اندر کی کارکردگی جو بھی کرنا ہے اس کو نارمل چل سکتا, نہیں تو اندھیرے میں تو کوئی کام نہیں نہ ہوگا. اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا لیور کے لیے, لنگ کے لیے, ہارٹ کے لیے, پھیپھڑوں کے لیے, ہماری انٹسٹائنز کے جتنے بھی کاروبار چلتے ہیں, اگر ان میں سمجھ کر لو کہ لائٹ ہی نہیں ہے تو سارے کے سارے کام جو ہو پیچھے رہ جائیں گے, رک جائیں گے. اور اندازہ لگائیے کہ اگر برین کے کارن کام رک گئے تو بڑی بات ہو جائے گی, ڈیمنشیا وغیرہ کی پرابلم آ جائے گی. اور کئی بار ایسا ہوتا نا, بجلی انٹر کرنٹ آتی, کبھی آگے چلے گئی, آگے چلے گئی, اس طرح کی کنڈیشنیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کی کنڈیشن میں کیا ہو, ایپیلیپسی وغیرہ کی بیماریاں آ جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ مائٹوکونڈریا صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے کبھی کرنٹ آ جاتا ہے, کبھی نہیں آ جاتا, کوئی کنیکشن ڈھیلا ہوگا, کچھ ایسا ہو گیا ہوگا. اسی طرح سے دماغ کے اندر جو سیل کے اندر جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, مائٹوکونڈریا کے اندر جتنے بھی اس کے ڈویژنز ہوتی ہیں, اس کے حساب سے یہ بجلی سپلائی کرتا ہے, اور اس کی بجلی سپلائی کرنے سے ہی دماغ کام کرتا ہے, بجلی سپلائی کرنے سے ہی مسل ماس پیشیاں کام کرتے ہیں, اور اب ماس پیشیاں یا کسی انگ نے کام نے ہٹنے کام کیا کرنا, سرکولیشن دینا, اور اگر مائٹوکونڈریا اس کے سیلوں کا نارمل نہیں ہے تو پھر سرکولیشن نہیں جائے گا, خوراکیں نہیں جائے گی. اسی طرح لنگز کا کام ہے آکسیجن سپلائی کرنا, اب وہ ان کا مائٹوکونڈریا ہی صحیح نہیں ہے, چاہے باہر سے آکسیجن آ رہی ہے, انوائرمنٹ سے تو آ ہی رہی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, لیکن وہ اندر جا رہی ہے, جانے والا پروسیس بھی کمزور ہو گیا, پھیپھڑوں کے اپنے مائٹوکونڈریا جس کو لائٹ کرنی تھی, وہ موٹر چلانی تھی کہ پانی نکلے, اسے میں کام کرنا تھا کہ پھیپھڑے سانس لے پائیں, وہ نہیں لے پائیں گے. تو یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ایپیلیپسی, سٹروک, سیزر کے بارے میں نے آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ سیزر کیول ایپیلیپسی کے نہیں ہوتے, بہت طرح کے سیزر ہوتے ہیں, لیکن ہاں جتنے بھی سیزر آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, یا جرک ہے باڈی کے ایک دم جرک, کئی لوگ سوتے سوتے بھی ایک دم جرک مارنا شروع کر دیتے ہیں, یا کئی بار کام کرتے کرتے جاگ نیند نہیں ہے, کام کر رہے ہیں لیکن ایک دم باں جھٹک جاتی ہے, ٹانگ جھٹک جاتی ہے, یہ سب اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارا جو مائٹوکونڈریا سیل کے اندر ہے وہ نارمل کام نہیں کر رہا. اس کی سٹرکچر کی بات بھی میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دی تھی, اور یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر بھی ایک لیئر, ڈبل لیئر ہوتا ہے, ایک انر لیئر ہوتا ہے, ایک آؤٹر لیئر ہوتا ہے. جتنے بھی آرگینلز سیل کے اندر ہوتے ہیں, جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں, وہ سب اس سائٹوپلازم کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اس سے سیپریٹ رہتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا قلعہ ہوتا ہے, ان کی اپنی چار دیواری ہوتی ہے, وہ ڈبل لیئر دیوار ہوتی ہے, جیسے سیل کا میمبرین تھا ڈبل لیئر تھا, نیوکلس کا میمبرین تھا ڈبل لیئر تھا, اسی طرح جو مائٹوکونڈریا والے جو راڈ ٹائپ ہے ये रॉड टाइप होते हैं, वो ये भी डबल लेड होते हैं और ये रोशनी देने का या एनर्जी देने का काम करते हैं, और इस रोशनी से, इस एनर्जी से हमारे शरीर का जो पूरा काम है वो उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। और पक्की बात होगी कि इसका काम क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस करना और इसी से सभी चीज को रेगुलेट करना, इसी से ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, आवाजाही, लेना देना जितना भी है हमारे शरीर का। अब मान लिया जाए ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लोगों को कब्ज हो जाती है, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं तो किसी को डायरिया भी लग सकता है। तो ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही, चाहे अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो ये इसी की वजह से है कि करंट नॉर्मल नहीं, करंट नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मैंने आप सब लोगों को बताया भाई इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, फंक्शन का भी पता लग गया। और ये भी एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल ना जाऊं, वैसे ये मैंने कही है, रिपीट कर दूं कि जितना गार्बेज बनता है ना सेल के अंदर, सेल मरते हैं डेली डेली, रोजाना कुछ सेल मरते हैं, कुछ सेल नए पैदा होते हैं, क्योंकि रूटीन है बोन्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोन्स हैं उनमें सेल बन ही रहे हैं, रोजाना बन रहे हैं। और एक सेल की उम्र कितनी है, 120 डेज, 120 दिन के बाद जो आज सेल बना है उसको मर जाना है। और डेली सेल बनते हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, हर 6 साल बाद वो जो मेंबर है बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं और दूसरे रिटायर होते रहते हैं, इसी तरह ही ये जो सेल डेथ है ये एक नॉर्मल कर्म है, आदमी को जो बना है उसको मरना ही है। इसी तरह सेल के अंदर भी वो सेल की जो डेथ है वो होनी ही है, और जो उसका गार्बेज बचेगा बाकी सारा, जिसको हम यो तीसरे पाशा की तरह ये कहते हैं क्या क्या करो उसको फुल हर साल पाने, उसमें जो भी आपका राख हो उसको इकट्ठी कर लो और चलते हुए पानी में उसको डाल दो, ठीक उसी तरह ये जो चलते हुए पानी में डालने वाला काम या उसको बर्न आउट करके शरीर से सेल से निकालने वाला काम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है। आजकल तो बिजली के चूल्हे से ही लाश जलाई जाती है, तो ये बिजली का काम जो करने वाला है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी ये करता है। तो फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह किसी भी चीज को चालू करने के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आदमी हैं एक दमी, और दम किससे चलता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तब हम चल पाएंगे, हमारे अंदर चर्बी फैट जो भी कुछ प्रिजर्व तो रहता ही है, इसीलिए बिना खुराक के भी हम बहुत सारे काफी दर्शन सिंह फेरूमान 81 डेज जिंदा रह गया था, बुखार खुराक ही रह गया था। इसी तरह ही हम लोग हमारे शरीर की जो भी बंतर है इसमें वो शरीर की बंतर के तत्व तो हैं ही ना, जब तक इसकी एग्जिस्टेंस है, जब ये शरीर दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके बनाने वाले तत्व उसके अंदर हैं। और एक एक अंग से जब आप भूख हड़ताल करते हो या जब आप मरण व्रत रखते हो तो एक एक अंग से वो चीजें ली जाती हैं, और लेने के बाद उनको फिर सिंथेसाइज किया जाता है कि शरीर की एनर्जी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सिंथेसाइज होकर जब तक जीवन चलता रहता है बंदा मरता नहीं है। अल्टीमेट जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है तब किसी आदमी की डेथ होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि शरीर में मटीरियल तो है, अब नहीं बाहर से खुराक आ रही तो ना सही, लेकिन इसको तो ऑक्सीडेशन किया जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने कहा था ऑक्सीजन का कि एक्सरसाइज की जाए। उसके बाद अगर खुराक दी जा रही है, क्योंकि सभी तो मरण वक्त पे नहीं है ना, खुराक दी जा रही है तो खुराक इस तरह की दी जाए जो कम मात्रा में जाने के बाद भी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके। जैसे जो है ना पानी, वो हर 2-3 मिनट बाद हजम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है। जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको 3-4 घंटे में हमारे बॉडी से इसका इवेपोरेट होना, या गार्बेज के तौर पर, रेक्टम के तौर पर, इंटेस्टाइन लार्ज पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का उसमें चले जाना, ये अनिवार्य हो जाता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक, जैसे पत्थर के कोले की एग्जाम्पल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि पत्थर का कोला है वो अगर जलता है तो लाल हो जाता है तो लंबे समय तक वो हीट देता रहता है, और लकड़ी का कोला है तो वो जल्दी बुझ जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी हीट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये जो जितने भी है ये जितनी भी खुराक होती है ना उसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूसिंग हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, और हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस ये जो हैं आलू है या सब्जी है या जो भी कुछ खाते हैं इनकी एक लिमिट है, प्रोटीन की लिमिट इनसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबे तक वो हीट उसको रख सकते हैं। तो क्या जब आपको ये लगे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रही है या स्ट्रोक हो रहा है या सीजर्स हो रहा है या मानसिक तवाजन सही नहीं है, तो उस बंदे को सबसे पहली बात तो ये करो कि उसको खुराक एनर्जी वाली दो, एक्सरसाइज भी करवाओ एनर्जी वाली खुराक दो। तो एनर्जी वाली खुराक क्या हुई, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट। उसके बाद जितनी भी चीजें टॉक्सिक टॉक्सिसिटी पैदा करती है, वैसे ये जब हम बता रहे थे तो मैंने आपको टी के बारे में भी कहा था, हालांकि टी हमारी नॉर्मल खुराक का हिस्सा नहीं है, एक स्टिमुलेटर है कैफीन के तौर पर। और इस तरह की जितनी भी आपको नहीं पता कि कौन सी चीज पहले दोस्त के तौर पर हमारे साथ चल रही है लेकिन आप दुश्मनी निभा रही, इसीलिए बोलते हैं कि दाना दुश्मन अच्छा जो मूर्ख दोस्त से, क्योंकि मूर्ख दोस्त का कोई पता नहीं कब नुकसान कर दे, और जो दाना दुश्मन है वो उस वक्त वार करेगा जब उसको पता चले कि अब मैं इसका नुकसान कर ही सकता हूँ। जब उसको पता हो कि नहीं इसका नुकसान मैं नहीं कर सकता तो वो दुश्मनी नहीं जताएगा, वो दोस्ती जताएगा ताकि इसका भ्रम बना रहा है मेरे ऊपर, मेरे पर ये शक ना करे। लेकिन जो दोस्त होता है ना उसका तो पता ही नहीं चलता, उसके पर तो हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो पता नहीं कब वो नुकसान कर दे। वही बात इस डाइट के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग रूटीन में बहुत सी चीजें खाते हैं, कोई बात नहीं, तंदुरुस्त शरीर है उसको नहीं जरूरत है तो उसको निकाल देगा, टट्टी के रस्ते, पेशाब के रस्ते, सांस के रस्ते, पसीने के रस्ते निकाल देगा। लेकिन अगर वो चीज हमारा शरीर पूरा काम नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा, तो गर्भ के तौर पे शरीर पे रुक जाएगी और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी जहरीला मादा बन जाएगा। इसलिए क्या करें, खुराक डाइट तो आपने मेंटेन कर ली, उसके बाद फिर ऐसा करें कि भाई जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली हैं उनको एकदम बंद कर दें, एकदम बंद कर दें, ताकि वो टॉक्सिसिटी जितने भी दोस्त है, कोई बात नहीं भाई 10 दिन भाई इसके पास नजदीक नहीं आना है, दोस्त है रोजाना चाय पीते ही है, नहीं गुजारा होता, लेकिन एक बार उसको अलग करके देखे कि होता क्या है, मुझे इसकी जरूरत कितनी है और मैं इसके बिना कैसे चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ। क्योंकि शरीर में एक ऐसी समर्था है कि अगर एक चीज खुराक वाली आप उसको नहीं देते, दूसरी चीजें शरीर में जा रही हैं, तो ये उनसे सिंथेसाइज करके जरूरत की चीजें बना लेगी। मैंने अभी कहा जब इसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा था कि सिंथेसाइजिंग वाला प्रोसेस भी कुदरत ने हमारे शरीर में डाला हुआ है कि नहीं अगर सही चीज मुझे आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं मिल रहा, तो जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उनसे उसने सिंथेसाइज करके काम चला लिया। आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत है, अगर नहीं जरूरत तो फिर अलग कर दो, क्योंकि है तो टॉक्सिसिटी ही ना। कोई भी चीज जो जबरदस्ती आपसे काम करवाती, चाय जबरदस्ती हमसे काम करवाती है ना, क्योंकि हम सुस्त होते हैं तो चाय का पी लो थोड़ी चुस्ती आ जाए, तो जबरदस्ती हमें उस तरफ लगाती है। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको निकाल दे, उसके बाद जितनी भी दवाइयां, जितनी भी एंटीबायोटिक, जितना भी ऐसा कुछ खा रहे हैं, एक बार उसको स्टॉप करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज की वजह से क्या क्या चीज हमारे शरीर में बीमारी के तौर पर बढ़ रही है या कम हो रही। ऐसे होता है कि लोग बड़े लंबे समय से, हमारे गांव में हम देखते थे कि लोग बीका सोन के कैप्सूल खाए जा रहे हैं, लगातार ही खाई जा रही, जरूरत है नहीं, लगातार ही खाई जा रहे, और डॉक्टर के पास उनको तो पता नहीं है कि बी कम्प्लेक्स जितना बॉडी को चाहिए वो उतना रख लेगा, बाकी पेशाब के रस्ते जल्दी खारिज हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, और डॉक्टर को वो कंप्लेन कर रहे कि डॉक्टर जी मेरा पेशाब पी रहा था। अब डॉक्टर क्या समझे इसको पी लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें जानने के लिए जरूरी ये है कि जितनी भी खुराक के तौर पे तत्व आप ले रहे हैं, शरीर के अंदर दे रहे हैं, उसको भी एक बार अलग करके देखें, फिर उसके बाद उसकी खुराक निर्धारित करें और ये देखें कि पहले वाली जो चीज जा रही थी उसके ना जाने से शरीर में कोई कमी पेशी आ रही है, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, तो फिर इस्तेमाल फालतू हम ले रहे थे ना, और जितनी भी चीजें फालतू हम ले रहे हैं वो टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, ज्यादा बोझ ना डालें, जितनी रोशनी की जरूरत है यार उतने बल्ब जगाओ। आपका मीटर उतना लोड नहीं ले रहा तो ज्यादा हर जगह जगह पर रोशनी करने की क्या जरूरत है, जहां काम कर रहे हो वहां रखो, बाकी बंद कर दो। तो ये चीज, उसके बाद मैंने ये कहा था कि CQ10 के नाम पे इस तरह की कंपोजिशन मिलती है, या एल कार्सिटाइन वगैरह के नाम पे मिलती है, या एल सिट्रोलाइन के तौर पे मिलती है, और हमारी खुराक में बहुत सी चीजें मैंने बताई थी, हदवाना है जिसको वाटरमेलन हम लोग बोलते हैं, विटामिन सी है, ये सब चीजें आप रूटीन में दे सकते हैं, या विटामिन जो है उस हालात में। यंग एज में मैंने ये कहा था कि विटामिन पर शरीर को मत डालो, अगर बनी बनाई खरीद खीर दोगे तो जिस अंग को जिस चीज को सिंथेसाइज करना है वो बंद कर देगा कि बनी बनाई खीर मिल रही मैं क्यों कष्ट करूं भाई। अगर जैसे इंसुलिन वगैरह लेनी शुरू कर देते ना डायबिटिक्स वगैरह लोग, और अल्टीमेट वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, कारण ये होता है डे टू डे एडिक्टेड हो जाना किसी भी इंसुलिन का, पैंक्रियास जितना काम कर सकती थी उतना भी नहीं करेगी, ये बनी बनाई मिल रही तो मैं क्या करूं। इसी तरह बहुत से अंग जो एंजाइम तैयार करते हैं वो एंजाइम तैयार नहीं करेंगे और चुप हो जाएंगे, और अल्टीमेट जब वो दवाई आप छोड़ेंगे तो अल्टीमेट आपको बैड इफेक्ट्स होंगे। इसीलिए बिना जरूरत के कोई भी चीज लेनी वो टॉक्सिसिटी ही पैदा करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी दवाइयां, जब इस तरह का हालात हो, किसी को भी एपिलेप्सी है, किसी को भी सीजर्स हो रहे हैं, किसी को भी डिमेंशिया की पहली स्टेज, जरूरी नहीं कि सभी एकदम डिमेंशिया पे पहुंच गए, डिमेंशिया तो आखिरी स्टेज है पागलपन की। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, अब आप 70 हो गए, चले जा रहे हो कहीं रास्ते में और आपको याद नहीं, यार पता नहीं कौन सी रोड है, मैं किधर जा रहा हूं, आगे मैं तो घर जा रहा था, ये पता नहीं रोड कौन सी आ गई। रोजाना उस रोड पे आप गुजरते हो, रोजाना जो काम आप करते हो उसमें ही आपको भ्रम हो जाए तो ये समझो आपका माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, एनर्जी लाइट पूरी नहीं दे रही है, तो उसी वक्त आपको फिर ये खुराक बदलनी होगी, उसी वक्त आपको फिर जो दवाइयां खाए, खासतौर पर आजकल हालात क्या है कि जो भी इस उम्र के आम लोग है ना कुछ तो खा ही रहे हैं, रेयरली कोई होगा वो कहेगा कि नहीं मैंने तो कभी दवाई ली नहीं। पुराने जमाने में तो बहुत लोग मिल जाते थे जो बोलते थे कि नहीं मैं तो दवाई लेता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी एस्पिरिन की गोली भी नहीं दी। लेकिन अब इस तरह के आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात होगी, तकरीबन कुछ ना कुछ वो ले ही रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको इस तरह के साइन मिलने शुरू हो जाएं जो ये इंडिकेट करें कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त इन सब चीजों को जो भी आप दवाई के तौर पे खा रहे हो, जो भी आप खुराक के तौर पे खा रहे हो, उसको एक बार सेपरेट अलग कर दें। और खुराक की जरूरत तो है, लेकिन दो क्या, वो जो प्रिपेयर्ड मील है, जैसे मैंने आपको CQ10 की बात की है, जैसे हदवाने की बात की है, जैसे विटामिन सी की बात की है, इस तरह की चीजें जिनकी हमें रोजाना डे टू डे ज्यादा जरूरत है। विटामिन सी और बी के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जितने भी हैं ये जल्दी, अब घी फैट है ना इस तरह के जो हैं वो जल्दी खारिज नहीं होते शरीर से, लेकिन वाटर सॉल्युबल हैं वो जल्दी खारिज होते हैं, जल्दी वेस्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाए, चाहे बुखार की वजह से चाहे किसी की वजह से, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ ही, इवन आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट बढ़ गई है बॉडी की, तो उससे पसीना आना शुरू हो जाता है, साल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त विटामिन भी आपके खारिज होते हैं। तो सबसे ज्यादा विटामिन जो खारिज होता है वो है विटामिन सी और विटामिन बी। इसीलिए डॉक्टर लोग हरेक बुखार में ये रिकमेंड ही करते हैं कि भाई इसको विटामिन सी और बी वगैरह रेगुलरली देना शुरू करो, और देसी चीजों में हमारे पास नींबू है, हमारे पास ये जो ऑरेंज है, इस तरह की चीजें हैं। और वीकनेस के तौर पर मैंने आपको हदवाने के बारे में कहा था कि हम साधारण बात समझते हैं, लेकिन हदवाना जो है, वाटरमेलन जो है, इसमें एल-सिट्रुलाइन नाम का तत्व जो है वो बहुत एनर्जी देने वाला है और बहुत सी चीजें हमारी कवर करता है। थोड़ी क्वांटिटी में भी वो बहुत ज्यादा काम कर लेता है। तो फिर आपको ये करना है। चलो खैर, ये वो था जो आज से पहले मैंने सभी प्रोग्रामों में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सभी में आपको दोहरा दिया था, ताकि आपको याद रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बोल गया तो बोल गया। नहीं, जैसे मुझे याद है ना, वैसे आप लोगों को भी याद हो जाए कि क्या क्या चीज हुई थी, उसका क्या क्या पर्पज था, और अगर ऐसा पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा तो मुझे क्या करना। उसके बाद और जो ऑर्गेनल्स हैं और जो अंग हैं हमारे इस सेल के अंदर, उसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इस तरह की कुछ और अंग हैं और चीजें हैं जो सेल के अंदर अंदर घूम रही हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, वो सेल के नजदीक, जैसे क्रॉसिंग नहीं होता, या क्रिश्चियन लोग गले में पहनते हैं ना क्रॉस, ये जो क्रॉस की तरह के इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं, और इनके ऊपर इसकी निशानी क्या है कि जैसे कांच की दो ट्यूबें हों और उनका क्रॉस बना दिया जी। कांच की ट्यूब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, इस ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइट है ना, ये इसके ट्रांसपेरेंट जा रही होती है और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो आसान समझने के लिए मैंने ये कह दिया कि जो क्रिश्चियन लोग हमारे वो क्रॉस पहनते हैं ना, क्रॉस की तरह अगर दो ट्यूबें आपस में जुड़ी हो, उसका क्रॉस बना हुआ हो, तो इस तरह के ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, और इन सेंट्रोसोम्स के ऊपर एक और बहुत बड़ी, और हमेशा हमेशा ये एक जोड़े में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेंट्रोसोम यहां हो गया, एक फिर कहीं और हो गया, एक फिर कहीं हो गया, नहीं, जहां जहां भी होंगे ये जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे, ये इसकी पक्की निशानी है। और इसके ऊपर इसकी निशानी क्या है, बाकी इस तरह के और बहुत सी चीजें, जैसे हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, इनके ऊपर भी और सेंट्रियोल्स हैं, ये भी इसी तरह रॉड के ही होते हैं, लेकिन इनका फर्क क्या है। सेंट्रोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे आप नाक है ना आपका, मैं बड़ी आसान एग्जाम्पल आपको दूं, आपका नाक है, नाक बैरल है ना, एक ट्यूब है ना, दो ट्यूबें पैरेलल जा रही हैं और आगे अपनी आंखों का क्रॉस हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक इसी तरह की कंडीशन सेल के अंदर होती है, जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और आप ये देखते हैं कि नाक के अंदर बाल होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं। ये जो सीलिया हैं, ये जो सेंट्रोसोम है, इसके ऊपर ये सीलियाज होते हैं, ये इसकी पहचान है। सीलियाज का काम क्या है, जैसे कोई नाव चलती है ना तो चप्पू चलाते हैं ना, पानी को इधर से उधर से इधर से उधर से मारते हैं, इनका काम है इन सेंट्रोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। ये बेड़ी एक नाव की तरह इस साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते रहते हैं, जहां जहां इसकी जरूरत है, जैसे जैसे भी होना है वो नॉर्मल काम इसका हो। इसको हम एक तो इसका दूसरा नाम है फ्लाजेला, सीलिया, जैसे मछली मछली की पूंछ होती है ना, उसको फ्लाजेला बोलते हैं, उसके ऊपर एक झालर सी होती है, ठीक इसी तरह की इसकी आमतौर पर जो कंडीशन होती है, इसको हम सीलिया या फ्लाजेला हम बोलते हैं। और ये इन सेंट्रोसोम्स की ट्यूब्स को मूव करने में मदद करते हैं कि यहाँ काम हो गया मिस्त्री जी, अब तुम वहां जाओ, अब वहां काम हो गया। इस तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर घूमते रहते हैं, और ये यकीनी बनाते हैं कि जब सेल की डिवीजन होनी हो तो हरेक चीज नॉर्मल, ताकि जितने भी ये सेंट्रोसोम्स हैं उनकी डिवीजन बराबर बराबर हो सके, जितने भी इसके ऑर्गेनल्स हैं, अंदर अंग हैं, वो बराबर बराबर, ऐसा ना एक बाप किसी के बच्चे या बाप की जायदाद को डिवीजन कर रहे हैं तो कि ये एक भैंस तेरी, ये एक भैंस मेरी, ये एक गाय मेरी, एक गाय मेरी, ऐसा ना हो कि गाय किसी एक ही तरफ ही चल जाए, भैंस एक ही तरफ चल जाए, ऐसा ना हो। इस चीज को जो यकीनी बनाते हैं ये बराबर के बराबर वंड करते हैं, जैसे एक लाइन नहीं खींचता कोई आदमी, और ये लाइट वाले हैं, ट्यूब है, ट्यूब क्रॉसिंग वाली है, और डबल लेयर्ड होते हैं, ये आपस में बट जाते हैं कि भाई ठीक है, जिन्हें यूएनओ की फोर्स नहीं होती, कहीं लड़ाई हो जाए तो यूएनओ की फोर्स जाती है, और बोलते ठीक है भाई अब सीज फायर हो गया है, तुम अपनी जगह रहो तो हम अपनी जगह रहो, हम सेंटर में हैं। ठीक इसी तरह ये इसका नाम ही सेंट्रोसोम रख दिया। सेंट्रलाइज पोजीशन इनकी होती है, हर एक चीज को बराबर बराबर बांटने के लिए इनका असल काम होता है इक्वल सेल डिवीजन। और इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनकी सेपरेट गिनती अलग अलग करनी, ये सब इनका काम होता है। और इसके हिसाब से ही आगे आने वाला जो सेल है हमारा, आगे नया बनने वाला सेल है हमारा, इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई आगे आने वाला सेल नॉर्मल होगा कि नहीं नॉर्मल होगा। मान लिया जाए, अब आगे की बात आ गई, मान लिया जाए कि सेंट्रोसोम नॉर्मल नहीं है तो उसमें ज्यादातर की होगा। हमारे पास है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मेरी तो जी किडनी ही एक है। बड़ी ये बात लगती है ना, जब कुदरत ने शुरू से लेकर दो किडनियां बनाई हैं तो फिर तेरे में एक कैसे होगी। या कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि एक कान है, दूसरा कान बाहर बना ही नहीं है, या एक कान बना है ऊंचा है, एक कान नजदीक नीचे है, लेवल से नीचे है। इस तरह बहुत सी विकृति, इनको हम बोलते हैं विकृति, या दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एनोमलीज। इस तरह की बहुत सी एनोमलीज है जो आप आम आदमी सोचता ही नहीं है कि भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा कि भाई इसकी तो किडनी ही एक है, दो हैं, उसे काम चलता था, उसने कुदरत ने एक ही बनाई है उसको, कुदरत ने नहीं बनाई। ये जो सेंट्रोसोम मैं आपको बोल रहा हूं, इसने डिवीजन करनी थी, इसने नॉर्मल नहीं की, या एक तरफ का झुकाव हो गया, सभी जो दूध देने वाली गायें भैंसे थी वो एक को दे दी, दूसरे तरफ उसको दिया नहीं, तरफ भूखा मर रहा है ही कुछ नहीं उसमें। तो इस तरह की जो कंडीशन है, और या ये काम ऐसा तो नहीं होगा अकेली किडनी में होगा, क्योंकि पूरे सेल के वजूद की बात हो रही है, पूरी बॉडी के वजूद की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ब्रेन भी डिफेक्टिव रह जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का शरीर तो बहुत बड़ा है, सिर बहुत छोटा है, किसी का आपने देखा होगा कि शरीर छोटा है सिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हो रही हैं, हालांकि जो सिर बड़ा होने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे हाइड्रोसेफलस वगैरह की मैंने बात बताई थी, और बहुत सी बीमारियों के बारे में मैंने पीछे प्रोग्राम दिए थे। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह की किसी अंग में डिवीजन का आप फर्क समझते हो, डिवीजन नॉर्मल नहीं हुई, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि इसका सेंट्रोसोम ने काम पूरा नहीं किया। जितने भी अंदर सेंट्रोसोम थे, जितनी भी यूएनओ की फोर्सेस थी, उसने सीज फायर करवा दिया था, लेकिन उसमें जो सीज फायर गलत हो गया, एक तरफ तो बेचारी ज्यादा डेथ होगी, दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह अंगों का छोटा बड़ा होना या किसी अंग का एब्सेंस हो जाना, होना ही ना, जैसे किडनी की बात मैंने की है, या किसी का टेस्टिस ही एक होना, ये तो टेस्टिस की बात तो मैंने याद आ गई तो मैं बोल रहा हूं। कई बार तो ऐसा होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो सातवें आठवें महीने प्रेगनेंसी के दौरान हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो वो अंदर रह गया। पर लेकिन हमको पता तो चलता है ना कि भाई नहीं, वो आना था, ये एंग्वाइनल कैनाल से नहीं पास हुआ, एक तरफ रुक गया, एक तरफ का बाहर आ गया, ये तो किरार में बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसका टेस्टिस है ही एक, इसका टेस्टिस है ही एक, या किसी लड़की में पैदाइशी तौर पे ओवरी है ही एक, आजकल तो वैसे हालात के तौर पे अगर ओवरी एक निकाल देते तो बच्चे फिर भी पैदा होते हैं, टेस्टिस एक एक होता है तो तभी तो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो काम क्रिया होती है, ठीक है कि जो दो महीने में होनी थी, एक काम ने करना था, सॉरी एक महीने में करना था, वो दो महीने में हो रहा है, फर्क तो इतना ही पड़ेगा उसमें, लेकिन काम हो रहा है। और ये सब इस तरह की जो डिवीजन होती है ओवरी में, टेस्टिस में, किडनी में, या और जितने भी अंग हैं, अगर वो एक ही अंग है तो वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल का जब मैं कोई नॉर्मल का लफ्ज बोलता हूं ना, तो उसका मेरा कहने से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी आपस में एक रेशो है, कि ये इतना होगा तो ये इतना होगा, ये इतना होगा तो ये इतना होगा, हमारी उंगली इतनी लंबी होगी तो हमारा फ्लेंजेस इतना होगा, हमारा रिस्ट इतनी होगी तो यहां से लेकर एल्बो तक ये इतना होगा, ये एक मेजरमेंट। अभी तो मेडिकल साइंस ने इस सारे का, हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं, सारा कुछ कर दिया है कि भाई इतना इतना होगा, लेकिन जब ये चीज ये रेशो अल्टर कर जाए कि नहीं भाई एक बात छोटी है एक बड़ी है, एक ऐसे लगता है कि जैसे अपने शोल्डर के साथ जुड़ी हुई हो, छोटी सी बांध रह जाती है, ऐसे तो मैंने देखे हैं कई लोग कि ऐसे हो जाते हैं, इस तरह एक टांग ही छोटी हुई है, एक टांग पूरी बड़ी हुई है, इस तरह की जो डिवीजन है या इस तरह का जो भी कुछ हो जाता है ये सेंट्रोसोम की वजह से होता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पुरानी बीमारियों में कैंसर टाइप की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, कान छोटा बांह छोटी ये सब चीजें आमतौर पर होनी शुरू हो जाती है, ट्यूमर वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, एक तरफ तो किडनी है दूसरी तरफ ट्यूमर है, किडनी डेवलप नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे कारण जितने भी हम लोग अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, कभी यह समा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, अब तो हम एक एक बात जो है पेट की जानते हैं और उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे पहले पता कर देते कि कैसे। और यही चीजें हम लोग पहले जरूरत बीमार होने से पहले, जरूरत पड़ने का मतलब बीमार होने से पहले, आजकल हम लोग जान लेते हैं कि इसके शरीर में किस किस चीज की कमी, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात मैंने आपसे कही है, और अगर टेस्टिस हो ही ना, एक पैदा हुआ वो तो टेस्टिस में आ गया, दूसरा बने ही नहीं, तो इस तरह की बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं, जिनका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रोसोम है इस बॉडी में इस सेल में वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरी की पूरी डिवीजन नॉर्मल आगे नहीं बना रहा, तो उसके बाद इसी के साथ मिलता जुलता एक सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम के बारे में मैं आपको बताऊं, है तो वही इसी का हिस्सा, सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें, डिवीजन करने वाली चीजें हैं, लेकिन और ब्रीक डिवीजन करने, आपने कभी लड़कियों को वो चादरें निकालती थी ना, फूल बूटे बनाती थी या दरियां बुनती थी, वो अब देखा होगा आपने, बहुत से सुनने वाले लोगों ने ऐसा पुराने जमाने, अब तो करती नहीं है लड़कियां, अब तो पढ़ाई से तो खूबसूरत ही नहीं होती, पहले जमाने में तो दाज में जो लेकर जाना है उसने जो जितनी चादरें बनाई है, जितने सिरहाने बनाए हैं, उनके फूल बूटे निकाले हैं, यही सब दाज में उसको लेकर जाना होता था, यही सब करता था कि ये लड़की कितनी मेहनती है और आगे जाकर घर को कैसे बनाएगी, इसी से ये सब जाना जाता था। लेकिन एक सेल में ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक तो सेंट्रोसोम की बात मैंने बता दी कि जैसे क्रॉस है इस तरह का, लेकिन बना हुआ पाइपों का, जैसे कच कांच की पाइप होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पाइप हैगी है, डबल गुलाई वाली हैगी है, और उसी तरह की इस क्रॉस टाइप का ये सेंट्रोसोम्स होता है, इसके साथ मिलता जुलता और ब्रीक डिवीजन करने के लिए, और ब्रीक डिवीजन करने के लिए आपने देखा होगा कि लड़कियां जब सिलाई करती हैं ना, मैंने बड़ी बारीकी से चीजों को ढूंढा, क्योंकि जब मैं बताता था ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मुझे ये चीजें, इसीलिए मेरे स्टूडेंट मेरे से इस बात के लिए खुश थे कि इसका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, ये भूलता नहीं है, हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे। तब मैं जैसे सेंट्रियोल्स की बात कर रहा हूं तो ये इस तरह के हैं बारीक कि जैसे लड़कियां सुई से वो धागे गिनती है ना, इतने धागे निकाल कर, या स्वेटर बुनती हैं तो स्वेटर की गिनती के इतने कुरे निकालने हैं, इतने कुरे के बाद ये डालना है, इतने कुरे के बाद ये करना है, उसी तरह ही ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये डिवीजन को और एक्यूरेट बनाता है, डिवीजन को और एक्यूरेट बताता है, एक तरह का स्टोर हाउस इसके पास है कि भी मैं बांटूंगा, मैं चीजें बांटूंगा, भाई डिवीजन हो रही है सेल की होनी ही है तो मैं इन चीज को बराबर बांटूंगा, तो इतनी बारीकी से बांटूंगा कि भाई जितने इसके तंद हैं या इसके रेशे हैं ये इतने इधर चले गए, इतने इधर चले गए। वही एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी कि लड़कियां जब सिलाई कढ़ाई करती हैं या दरियां बुनती हैं तो फिर वो रेशों की गिनती करती हैं, वो धागों की गिनती करती हैं, और धागों की गिनती करके फिर उसको वहां से निकालती है ताकि इतने बराबर इधर रह जाएं, इतने बराबर इधर रह जाएं, तो लगेगा कि जो फूल मेरा बन रहा है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज बनेगा, जहां मैं चाहती हूं वही बनेगा। तो इसलिए सेल के अंदर डिवीजन, जो हर हालत में 120 दिन के बाद सेल को मरना है, नए सेल को आना है, या एक सेल से अगर नए सेल की डिवीजन हो रही है तो उसमें जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बराबर आने चाहिए। और अगर वो बराबर आएंगे, कैसे आएंगे? एक तो पहले हमने सेंट्रोसोम बोल दिया कि भाई हम रास्ते में यूएनओ की फोर्स हैं, हम खड़े हो गए हैं, इधर आपकी फौज है, उधर आपकी फौज है, हम खड़े हैं, अब सीज़फ़ायर हो गया है। लेकिन गिनती तो नहीं ना हुई, अभी इंसाफ तो होना बाकी है ना, अभी कैसे होगा ना। तो वो है हमारा सेंट्रीओल्स, वो गिनती है सिलाई की, जो मैंने आप सब लोगों को बताई कि बिल्कुल बारीक रेशे हैं, जैसे कपड़े के रेशे होते हैं ना, ताना पेटा जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह की वो डिवीजन करने वाले ये सेंट्रीओल्स होते हैं। और काम इसका भी वही हो गया। और ये लोग जो हैं, इनके साथ साथ एक और चीज चलती है, वैक्यूल्स उसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारी खाली खाली स्टोर डब्बे नहीं होते हैं कि ठीक है भाई कोई चीज जो आटे वाला है वो तो आटा रख दिया, जो नमक और दानी है उसमें नमक के और मसाला मिर्च रख दिए हैं, कुछ बर्तन हमने खाली रख लिए हैं कि अगर कोई चीज और बढ़ गई तो उसको कहां डालेंगे। इस तरह कुछ एक चीजों को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटीन को प्रिजर्व करने के लिए, और जितने भी फूड स्टफ्स आ रहे हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको स्पेशली प्रिजर्व करके रखने के लिए कि जब जरूरत होगी इस्तेमाल करेंगे। आप देखें ना, कई लोग बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम वैसे तो बोलते हैं फैट रेजिस्टेंट सेल डेवलप हो गए हैं और उनमें बहुत मोटे हो रहे हैं। हमें रोटी एक ही खाते हैं, चपाती एक आधी होती है, लेकिन फिर भी वो मोटाई में मोटे हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं रोटियां से पांच सात खाते हैं फिर भी दुबले पतले हैं। तो ये सब वैक्यूल्स जो होते हैं, हमारे खाली पांडे खाली बर्तन होते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा चीज को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। जो भी चीज सेल डिवीजन के हालात में बच गई है कि इसको क्या करें भाई, इसको ठीक है ऐसे है कि इसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जब इसकी जरूरत होगी, जब देखेंगे कि भाई डिवीजन करते करते इसको गाय भैंस ज्यादा चलेगी, इसको गाय भैंस कम चलेगी, ये जो स्टोर की आसमान है उसको दे देंगे। तो इसी तरह जितने फैट या और चीजें जो प्रिजर्व बॉडी में हो जाती हैं, जो जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, उन चीजों को कहां रखा जाए? वेस्ट में भी नहीं निकल रही, वेस्ट में भी नहीं निकल रही, तो सेल के अंदर जो रहती हैं, वही मैंने फैट का ओबेसिटी का आपको ये दिया कि इसकी जो बॉडी में ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं जो प्रिजर्व करने की जरूरत है, और उसके लिए कुदरत ने वैक्यूल्स छोड़े हुए। इसी तरह ही इसमें एयर बबल्स होते हैं, जिसमें हवा स्पेशली रहती ही है कि भाई अगर कहीं सांस लेने की दिक्कत आ गई तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। इसीलिए कई बार नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, तो कुछ समय के लिए हम गुजारा कर सकते हैं, उसी वक्त ही मरते नहीं ना मरते, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर प्रिजर्व्ड एयर कुछ ना कुछ रहती है, पर उसकी लिमिट कितनी है? 3 से 5 मिनट की, इतना ही होता है। और क्योंकि फिर सेलों का आपस में लिंक टूट जाता है, एक सेल से उधारी लेनी मुश्किल हो जाती है, तो ये सब सारा इस तरह काम चलता है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक और अंग है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अब भाई ये पूरा कुछ मैंने बता दिया, भाई ये खुराक जाएगी अंदर, ये ऐसे सिंथेसाइज होगी, इससे प्रोटीन बनेगा जी, उसके बाद ये जीन्स क्रिएट होंगे जी, डीएनए क्रिएट होगा, आरएनए क्रिएट होगा, ये प्रिजर्व किया जाएगा, ये करेक्टर प्रिजर्व कर लेंगे, सब कुछ तो मैंने बता दिया। लेकिन जो खुराक आई है यार, हजम कैसे होगी? हम कहें कि हमने रोटियां खा ली, अब मैंने तो आप सब लोगों को बताया है कि कैसे कैसे डाइजेशन का सिस्टम चलता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह में सलाइवा आता है जिसको हम टाइलन बोलते हैं। टाइलन का काम कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम खुराक में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, यही तत्व है ना हमारे, चाहे साग में हो, चाहे घी में हो, चाहे किसी में, असल में जो चीज अंदर जा रही वो वही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, यही सब चीजें जा रही है। और इन सब चीजों को हजम करने के लिए अलग अलग पदार्थों की जरूरत है और वो जो अलग अलग पदार्थ हैं उन सब चीजों को पैदा करना प्रिजर्व करके रखना एक और अंग ड्रम है हमारे पास। ये ड्रम की शक्ल के होते हैं, गोल गोल होते हैं और बर्तन है समझ लग कर लें, इनमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं। भूख लगी ना, पेट आप के खा लिया ज्यादा, अच्छा भाई वो हाजमे की गोली ले लो, वो चूर्ण ले लो। तो चूर्ण का मतलब क्या होता है, हम लोग इस लाइसोसोम को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि भाई तेरे अंदर जितना भी एंजाइम्स भरा है वो निकालो ताकि ये जो चीज मैंने खाई है हजम हो जाए। उसको हजम करने के लिए ये तुम्हारी जरूरत है। तो लाइसोसोम क्या है, इस तरह के पैकेट हैं जिनमें एंजाइम्स भरे होते हैं और पूरे शरीर में मुंह से लेकर नीचे तक ये पूरे पूरे शरीर में इसी तरह ही है। हर एक सेल का एक पार्ट है कि जैसे मुंह में मैंने आपको बताया ना टाइलन है, तो मुंह में टाइलन जितनी भी है उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में जाते ही, ब्रेड खाई आपने, आलू खाया आपने, ये जाते ही यहीं से मुंह से ही हजम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि यहां पर एंजाइम्स लाइसोसोम्स के हैं। नीचे जाएंगे स्टोमक में जाएंगे तो वहां पर HCL पैदा होगा, वहां पर पेप्सिन पैदा होगी, इसी तरह ही आगे जाएंगे तो बाइल आ रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हर एक तरह के खुराक के तत्व को हजम करने के लिए कुदरत ने एक नियम बनाया है कि इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी, इसको ये चीज हजम करेगी। वो सब चीज प्रिजर्व कहां है, वो रखेगा कहां, उसके लिए वो बेचारे पेसारी की दुकान में देखो ना, अलग अलग खाने बने होते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। इसी तरह ही कुदरत ने बाकी तो सारा कुछ कर दिया, न्यूक्लियस का भी काम कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी कर दिया, सेंट्रोसोम का भी कर दिया, सेंट्रीओल्स के बारे में बता दिया, वह कुछ खाली खाने हैं, ऑक्सीजन भरी हुई है वो भी है, वो सारा कुछ तो हो गया, फैट के ग्लोब्यूल्स चल रहे हैं वो भी हो गया। लेकिन ये जो लाइसोसोम है ये इस तरह है कि इसमें एंजाइम्स भरे हैं, साडा चूर्ण हमारा ये जो चूर्ण है ना, वो चूर्ण इसी में है कि किसी चीज को हजम करने के लिए कोई चीज पदार्थ चाहिए तेज करने के लिए, तो ये लाइसोसोम्स है। तो ये लाइसोसोम्स हर एक चीज को खाने के बाद हजम करने का मतलब ये है कि उससे एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल से वेस्ट बाहर निकलता है, खून में जाता है, खून अलग अलग सर्कुलेट करता है, उसके मुताबिक उसका वेस्ट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये लाइसोसोम हमारी आखिरी बात मैं समझता हूं आज के इस लेक्चर की है कि भाई कुदरत ने हर तरह के प्रबंध किए हुए हैं, लाइट रोशनी भी है, सामान सारा रखा हुआ है, लाइट रोशनी भी है, उससे चलेगा तो काम होगा। और ये सब चीजें जब जब ना हो, बोलते हैं ना अब मैंने खाना खाया तो यही रुका हुआ, हजम ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या था, रोटी तो एक ही मैंने खाई थी, कुछ ज्यादा खाना भी नहीं खाया था, बार हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास लाइसोसोम्स की गिनती कम है, उसमें एंजाइम्स नहीं है, उसमें वो चूर्ण नहीं है जिससे जो आपने खाया वो हजम हो जाए। परेशानी से आपको समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम्स का काम क्या है, इसका काम है खाई हुई खुराक को हजम करना, उस तरह के अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोटीन खाए, अंडा खा लिया है ना, तो अंडा आम रूटीन में टाइलन इसको हजम नहीं ना करेगी, तो इसके लिए अलग तरह की कुछ और चाहिए ना। तो सेलों के अंदर लाइसोसोम्स में वो चीज भरी होगी जो इस अंडे को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगी, फैट को अमाइलेज में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अब ये खून में मिलने योग्य है, ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, फैट सीधा घी तो हमारे खून में नहीं ना जाएगा, किसी और शक्ल में जाएगा ना, तो उसको उस शक्ल में लाने का मतलब है हाजमा। किसी भी खाई हुई रोटी को सब्जी को हाजम करने की नौबत तक ले जाना, इस तरह उसको कन्वर्ट कर देना कि अब ये खून में शामिल होने लायक है, हो सकती है, मिक्सअप हो, ऐसे नहीं अलग नहीं होगा, इतना पीस दिया हमने इसको, इतना इसको रगड़ दिया है कि अब इतना सॉफ्ट हो गया कि जैसे हमारा ब्लड है। और ये काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स की के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स इसको मशीन समझ लो, रगड़ने वाली मशीन समझ लो, या इसमें समझ लो कि किसी चीज को बोलने, असल सल्फ्यूरिक एसिड है तो किसी के ऊपर डाल दो तो वो गल जाएगी। हाँ जी, सो ये सब चीजें आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ मेरा टाइम हो गया और ये सेल को हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम से कि अब शरीर जवान हो गया है, अब ये बेचारा इस एनवायरमेंट के हवाले से, इस खुराक के हवाले से, अपने तरीका का रहन सहन के हवाले से किस किस हालात का सामना करेगा। बच के तो आ गए हम, बड़ी मुसीबतें झेली, अब इतना बड़ा शरीर बन गया, बावजूद इसके भी हम बच गए, लाखों करोड़ों की गिनती से बचते हुए हम बच गए, जवान भी हो गए हैं। अब इसके बाद और मुसीबतें हमारे सामने जो आएंगी, जिनको हम बीमारियां बोलेंगे, उसके बारे में वेरवा हम आगे वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधु, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलिन, कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन प्रोग्रामों से कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको, और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है, इसकी सीटें झेली, अब इतना बड़ा शरीर बन गया, बावजूद इसके भी हम बच गए, लाखों करोड़ों की गिनती से बचते हुए हम बच गए, जवान भी हो गए हैं। अब इसके बाद और मुसीबतें हमारे सामने जो आएंगी, जिनको हम बीमारियां बोलेंगे, उसके बारे में वेरवा हम आगे वाले प्रोग्राम से शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधु, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलिन, कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन प्रोग्रामों से कुछ न कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, जानकारी मिल रही होगी और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको, और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई इस तरह का आपका बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको बताना ही है।

0: होगा, जानकारी मिल रही होगी और जानकारी भी लाहेबंदी होगी, जरूरत है आपको और उस जरूरत को मैं पूरा करने के समर्थ हो चुका हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इसका फैलाव और करें, आप इतना सा योगदान जरूर करें कि इस चीज को आप और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी सुन लें। कोई फीस नहीं है इसकी, कोई इस तरह का आपका बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको बताना ही है कि और लोग भी सुन लें। इतनी हमदर्दी आप उनसे करें, मेरे से तो नहीं, उनसे हमदर्दी करें ताकि वो भी सुन लें और उनकी भी जानकारी में वादा हो, हम उनकी भी सेहत अच्छी रह सके, अपनी सेहत का बचाव कर सके। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। परसों फिर मिलते हैं श्रोतियों, सुनते रहा करो प्रोग्राम, बहुत इंपोर्टेंट डॉक्टर साहब का प्रोग्राम हुंदा और अपने साथियों दोस्तों भैन पर इधर तुसी घर दे विच ला के फोन उच्ची आवाज दे विच सारा परिवार बह के सुन सकते हो और इधर विच बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मिलते हैं जी फिर, थैंक यू
0: जी, सत श्री अकाल।
1: थैंक यू, सत श्री अकाल।

जानकारी होनी चाहिए कि इसको हो क्या रहा है, किस डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि आज डॉक्टर तो एक एक सिस्टम का अलग है, सिस्टम नहीं बल्कि एक एक अंग का अलग है, इसलिए ताकि उसके हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी हम उसकी राहत पहुंचा पाए। इसलिए सूटेबली जो डॉक्टर जो इस चीज का जानकार है उसके पास ले जाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके बारे में जानते हों, नहीं तो फिर हॉस्पिटल में जाएगा, वहां वो शनाख्त करेंगे, फिर वो ट्रांसफर करेंगे, इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लग सकता है इस बात के लिए। तो वही बातें मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर अंग में ही ऐसा चलन है कि जब कोई भी चीज किसी भी अंग में आ जाती है तो उस वक्त उसमें जो वाइब्रेशन होती है, जो लहरें बनती हैं, उनकी वजह से बाहर को स्किन से लेकर अंदर तक मीडियम जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है किसी भी चीज का है, किसी भी अंग का है, वहां से लेकर उसके बाहरी लिंक तक एक लिंक बना हुआ है, और वो लिंक अपने आप को साबित करता है कि अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी कुछ निशानियां बाहर आई हैं। और स्टडी को जानते हुए, नेचर को स्टडी करते हुए, या पीछे का जो हमारा पास्ट था उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, इस चीज की जानकारी रखते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंचने से, मैंने ये बात कही थी कि जैसे जैसे ये मेडिकल साइंस डेवलप हुई थी ना, तो सबसे पहले इसका नाम था एक्सीडेंटल मेडिसिन, अचानक कोई चीजें होने वाली। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दी थी कि किसी को टेटनस होगी, जिसको तुनखवा बोलते हैं, टेटनस होगी, बहुत बड़े दौरे पड़ रहे हैं, कमर पीछे को झुक रही है, जबाड़ा जो है उसका बिल्कुल क्रंच हो गया है, खोला ही नहीं जा सकता मुंह। अल्टीमेटली इस तरह की कंडीशन बार बार हो रही है तो लोग सोचते थे यार इससे तो अच्छा है मर ही जाए। और उस वक्त हमारे पास इजीली अवेलेबल क्या था, इजीली अवेलेबल अफीम थी, पोस्ट था, ये सब चीजें थी, तो उसको अफीम ज्यादा दे दी, जितनी आम नॉर्मल आदमी की डोज होती है। अब तो हम जानते हैं ना कि अफीम पोस्ट की कितनी डोज है, अफीम की कितनी डोज है, उसमें निकले हुए मॉर्फिन की कितनी डोज है, उस वक्त थी नहीं, लेकिन आम लोग जो उसका इस्तेमाल करते थे उससे ज्यादा दे दी यार ये नहीं देखा जाता हमसे, इससे बेहतर ये है कि ये मर जाए, और उसको ज्यादा अफीम दे दीगी। देखा क्या कि वो ठीक हो गया, दौरे खत्म हो गए। क्यों? अब हम जानते हैं कि ओपियम में या मॉर्फिन में एंटी पेरिस्टाल्टिक मोशन इफेक्ट है, और जितने भी इस तरह के कन्वल्शंस हैं उनको कंट्रोल करने की कुव्वत है जो पैरालाइज कर देता है उन चीजों को। तो हुआ यही, उस वक्त ये एक्सीडेंटल बात ही है, मरने के लिए अफीम खाई और ये आदमी मर गया। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, पारा हमारी जिंदगी में आया, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, और इसी की वजह से जो लोग आज से या सुलाख से पीड़ित थे, इस तरह की तकलीफें उनको थी, और उनके लिए उन्होंने कहा यार अच्छा है ये, इससे मर जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द पूरे शरीर में, अब इंद्री की दर्द जो है घुटनों तक पहुंच गई, जोड़ों तक पहुंच गई, चल हम सकते नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो क्या करें। उस वक्त इसको शर्मिंदगी की बात भी बोलते थे, तो अल्टीमेट पारा खा लिया कि ठीक है मर जाते हैं, इससे तो अच्छा यही था, और हुआ क्या वो ठीक हो गया। अब बार बार जब ऐसा करने की नौबत आई तो देखा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, मरकरी की वजह से ऐसा क्यों हुआ, तो इस तरह ही हमने ये जाना, जैसे ओपियम देने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि वो बच गया, अब हम जानते हैं, उस वक्त नहीं जानते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया मेडिसिन ऑफ एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंटल मेडिसिन। ये एक्सीडेंटल थी जब हमने शुरू किया। मैं बात फिर अपने आज के लेक्चर लेकर आ रहा हूं, पहले हमें नहीं पता था कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है इसका लिंक कुछ अंदर की चेंजेस से है, शरीर के अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं इनका संबंध जो बाहर से है वो बाहर हमेशा, आपने देखा होगा कई लोग खाना खाते हैं उनके नाक या चेहरे पे पसीना आ जाता है, और आसान बात करूं, अब मिर्ची लोग नहीं खाते ज्यादा, और जो पेपर से एलर्जिक है या कुछ ऐसी कंडीशन है उनको अगर मिर्ची खिला दो तो उसी वक्त एक सेकंड में उसके चेहरे पे पसीना आ जाएगा, नाक पे पसीना आ जाएगा। तो क्या यह हुआ, वो जाने के बाद अंदर की जो वाइब्रेशन थी उसने अपना इफेक्ट शो किया, जो इफेक्ट हमें चेहरे पे नाक पे पसीने के रूप में हमें दिखाई दिया। तो मैं बीमारियों की बात अगर करूं, या बीमारियां भी आखिर किसी न किसी चीज की इंटेंसिव हुई है ना, कोई

0: हुआ है ना, वो जैसा हुआ है ना, जिसकी वजह से शरीर में कोई तब्दीली आई है। और अगर शरीर में कोई तब्दीली आई है और ऐसा नहीं है कि वो तब्दीली अंदर अंदर ही रह गई है, नहीं, क्योंकि पानी की तरह इसमें खला नहीं है, खाली जगह नहीं है, जो अंतर हो रहा है वो कंकर फेंकने से वही किनारे पे हो रहा है। इसी तरह ही हम जो इस शरीर के अंदर घटित हो रहा है उसकी वाइब्रेशन या उसके एहसास, उसकी फीलिंग, उसके सिम्टम बाहर देख सकते हैं। और उसी चीज की जो ये शनाख्त मैं आपके सामने कर रहा हूं इन लेक्चरों में कि अगर कुछ भी ऐसा हो किसी अंग में, क्योंकि तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आसानी से समझ पाओ कि सिर के अंदर अगर कोई भी तब्दीली होती है तो फिर डिजीनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस होगी, एचिमोस होगा और ये फॉरगेटफुलनेस होगी। ये सब मोटी मोटी निशानियां आपको अभी भी याद होंगी कि इस तरह होता है तो हम समझेंगे कि ब्रेन में कोई विकार है। ब्रेन के अंदर जितने भी अंग उनमें से कोई विकार फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस विकार की वजह से ऐसा ये होता है, वो हमारा सेकंड राउंड होगा इस बात के लिए, लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह ही हमने गर्दन की बात की थी, थायराइड ग्लैंड है तो जो यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड है था, या इसमें जो हमारी नालियां ऊपर से नीचे को जा रही है, या कैरोटिड आर्टरीज जा रही हैं, या कैरोटिड वेन्स जा रही हैं, आ रही हैं, इस तरह का पूरा दारो मदार जो जा रहा है उनमें से अगर कोई भी खराबी होएगी तो फिर कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आएंगी जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई कौन से अंग में कोई डिफेक्ट हो गया है। जैसे आसानी से समझने वाली बात, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, हाइपोथायराइड हो गया, हमने देखा कि वो बीबी तो बहुत मोटी ताजी बेचारी कुर्सी में बैठने योगी नहीं है, बस जो स्किन है बहुत उसकी ड्राई है, बाल जो है उसके वो गिर रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, ये सब उसकी निशानियां हैं। ये बाहर हम देख पाएंगे तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है हमें, उससे पूछने की जरूरत नहीं है हमें कि तेरे को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो वो पता चल जाएगा। और हाइपर अब खाता पीता बहुत है भाई, तो पांच पांच छह छह रोटियां खा जाता है, सुबह भी खा जाता है, शाम की खा जाता है, लेकिन फिर भी दुबला पतला ही है, एकदम जैसे कुछ खाता ही नहीं, हड्डियां निकली हुई है। तो हम कह पाएंगे कि भाई इस आदमी को हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो मतलब ये बाहर की निशानियां, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को कि ये बाहर की निशानियां हैं और शरीर के हरेक अंग से हमें इस तरह की सूचना बाहर मिलती है। जरूरत है इन चीजों को समझने की, और इनको समझने के बाद आप इजी निशाने पर पहुंच जाएंगे जिसको हम आज तो उसका नाम हमने रख लिया ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस, और डॉक्टरों ने इसको एक जगह दे दी कि भाई ठीक है, हमारा डायग्नोसिस होगा लैब से, हमारा डायग्नोसिस होगा एक्सरे से, हमारा डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट से होगा, लेकिन ये इसको हम इस बात से रख लेते हैं कि भाई ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो हमने बाहर देखा, ऑब्जर्व किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं लैब से, वेरीफाई करते हैं एक्सरे से, ईसीजी से, वगैरह वगैरह। तो वो जो बातें ऐसी होती हैं अब परफेक्ट हो गई है, पहले विश्वास हो या ना हो, गलत हो या ठीक हो, इसका निर्णय पहले नहीं था, लेकिन अब सदियों से चलते आ रहे इस मेडिकल साइंस ने बार बार इन निशानियों को देखा, समझा, वेरीफाई किया, लैब टेस्ट किया, एक्सरे किया, ईसीजी या जो भी कुछ किया आज की डिवाइसेस के मुताबिक, और इसने साबित कर दिया कि भाई इस शरीर के अंदर इस अंग में इस तरह की कोई खराबी आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखों के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आंखों के नीचे, कान के, नाक के बिल्कुल पास है येलोश टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं। अब येलोश टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पष्ट तौर पे ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो क्या हुआ, लिवर कहां पर है, आंखों में वो निशानी दे रहा है कि ये इस बात की निशानी है। अब इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, बार बार वेरीफाई कर लिया, तो बेशक कहा हमने फिर भी कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये क्लिनिकल प्रूफ है, लेकिन वेरीफाई हमने किया जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया। लेकिन अब हम इन सिम्टम्स पर रिलाय करना शुरू कर दिया, अब हम इनको यकीनन मानना शुरू कर दिया कि हाँ अगर इस तरह की बाहर निशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, और वो जो घटित हुआ है किस अंग में हुआ है ये बाहर की निशानियां हमें इस तरह का बता रही हैं। इसलिए ये चैप्टर जो मैंने आपके सामने शुरू किया इस बात के लिए किया ताकि आप सब लोगों को पता चले कि अगर शरीर के अंदर हम चेस्ट पर पहुंच गए, नेक की बात करते करते हम चेस्ट में पहुंच गए और हमें पता चले कि चेस्ट के अंदर छाती के अंदर अगर कोई भी रुकावट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर बाहर निशानियां क्या होंगी, और इससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि ये जो छाती है वो बनी हुई कैसे है। हालांकि एनाटोमिकल स्ट्रक्चर मैंने आप सब लोगों को बार बार समझाया है कि एनाटोमिकल मीन बना कैसे है, स्ट्रक्चर का ढांचा ये खड़ा कैसे हुआ है उसको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये जो पिंजरा टाइप गोल चेस्ट हमें दिखाई देती है, हड्डियां इसीलिए लोग पेट में क्यों नहीं इतनी लगा दी, हड्डियां इसीलिए लगा दी कि इसमें बहुत जरूरी सामान रहता है, बहुत जरूरी कार्रवाई करने वाले दफ्तर हैं, इस शरीर को इस जीवन को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इसमें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हमारे सिर में थी तो उसको पूरा का पूरा ढक दिया, सिर्फ एक एंट्रेंस रह दिया। छाती जो है इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति का हाउस है, ये प्रधानमंत्री का हाउस है, कार्रवाई तो ब्रेन की तरह चलेगी लेकिन करेगा कौन, आगे कार्रवाई कौन करेगा, वो हमारा यहाँ ही पर गृह मंत्री है, यहीं पर ही प्रधानमंत्री है, इसलिए इनकी भी निगरानी इनकी भी सेफ्टी इस तरह कुदरत ने कर दी है। और इसकी शनाख्त के लिए मैंने आप सब लोगों को कहा था कि ये हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का विस्तार मैंने आप सब लोगों को बार बार बताया था कि भाई ये 26 अलग अलग वर्टिब्राज हैं मन के जिसको हम बोलते हैं, जिनके अंदर एक कैनाल होती है और जिन मनकों के बाहर हॉर्न्स बने होते हैं ताकि जितनी भी मांसपेशी जितनी भी मांसपेशियां बाहर से आए वो इसके साथ बच जाए डाई हो जाए ताकि ये पूरी तरह अपनी सेहत में रह सके और पूरा कंट्रोल इसका संभाल सके वेट उठा सके। इसलिए इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आप सब लोगों को दी थी। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि जो पसलियों का ढांचा है ये पसलियां 24 गिनते हैं, 12 पेयर 12 जोड़े 12 उधर हैं 12 उधर हैं। इन पसलियों की डिस्क्रिप्शन भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई ये 12 ऐसे ही नहीं कि ग्लोब बन के आ गया चारों ओर लपेट लिया है, ऐसा नहीं है। पहली 7 हड्डियां रिब्स जिनको हम बोलते हैं वो सामने स्टर्नम के साथ बटी हुई हैं। स्टर्नम की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी थी कि इसके 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा मेनुबरियन स्टर्नम है जो हमारी क्लेविकल हड्डी जिसको हम असली की हड्डी है उससे जुड़ी हुई है, उसके बाद ये स्टर्नम की शाफ्ट हैगी है सामने, उसके नीचे ज़िफॉइड स्टर्नम का एक छोटा सा पोर्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं पहले दे चुका हूं क्योंकि तो अभी हमने चेस्ट की बात करनी है। और ये पसलियों की बात की थी कि 7 पसलियां बिल्कुल इस स्टर्नम के साथ फिक्स की गई हैं और 3 पसलियां फिक्स नहीं की गई हैं, इसके साथ नहीं है, वो जो 8वीं पसली है वो 7वीं की हाथ पकड़ लेती है और 9वीं पसली वो 8वीं का हाथ पकड़ लेती है, तो इस तरह करके एक दूसरे को पकड़ते हुए थोड़ी पीछे हट गई है ताकि एब्डोमेन को पेट को पूरा फैलने का समय मिल जाए क्योंकि तो इसमें तो बार बार खुराक आएगी भी गैस बनेगी भी रिलीज भी होगी सब कुछ होगा, इसलिए इसको बार बार फैलने की जरूरत पड़ती है और ज्यादा छाती से ज्यादा फैलने की इसको जरूरत है, पता नहीं कब कैसा हो जाए। इसलिए वो जो 2 पसलियां नीचे बच जाती है वो केवल रीढ़ की हड्डी के साथ लगी हुई है, सामने वो फ्री है कि कोई बात नहीं फैलना है तो फैल जाए, जितना भी एब्डोमेन फैल सकता है वो फैल जाए। तो ये ऐसा हम लोगों ने आप सब लोगों को बता दिया था कि वो 12 की 12 पसलियां साइड दाहिने साइड बाएं साइड इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और नीचे की 2 नहीं जुड़ी हैं। फिर हमने ये कहा था कि इनके जोड़ जुड़ने का पोस्टल कार्टिलेज इन पसलियों को एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस में रखने के लिए हम लोग कुदरत ने और मांसपेशियां लगाई हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इंटर मीन्स बीच में, कॉस्टल मीन्स रिब्स, मसल पसलियों के बीच बीच में जो मांसपेशी है जो इन पसलियों को अपनी जगह पर रखती है उसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इसी तरह ही जहां जहां इनका ज्वाइंट होता है, सामने ज्वाइंट है स्टर्नम के साथ, पीछे ज्वाइंट है रीढ़ की हड्डी के साथ, उसके लिए स्पेशल कार्टिलेज है और वो कार्टिलेज जो है इनको वहां वहां पर बांधा रखता है। तो मैंने इसे आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये जो चेस्ट है इसकी हम आज बात करने लगे। अब इसके एंटर हम करेंगे कि चेस्ट के बारे में ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, ये चेस्ट से गुजर के जा रहा है और उस चीज को वो चेस्ट के मिडल से गुजरता है जिसका नाम हमने रख दिया मिडिया स्टाइनम। मिड का मतलब आधा उधर बीच में हो गया ना, तो इसी तरह मिडिया स्टाइनम स्टर्नम के पीछे बिल्कुल सेंटर में, छाती के सेंटर में एक ऐसा कॉरिडोर है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बाईपास है जिससे ऊपर की चीजें नीचे आ रही हैं और नीचे की चीजें ऊपर सिर को जा रही हैं, उसको कॉरिडोर हमने बोल दिया या मिडिया स्टाइनम बोल दिया। अब मिडिया स्टाइनम में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जिसमें हमने कहा था कि नाक से एक नाली शुरू होती है जो फेफड़ों तक जाती है और उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लेकिन लैरिंग्स एक जगह आकर गर्दन में आकर रुक गई और दूसरी तरफ उसके आगे मुंह की बात आई थी, तो मुंह से एक नाली शुरू होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं और वो जो फेरिंग्स है वो भी एक जगह आकर रुक गई जहां पर आके सांस वाली नाली, खुराक वाली नाली आकर रुक गई है, उसको हमने बोल दिया एपिग्लोटिस, एक जंक्शन का नाम रख दिया हमने एपिग्लोटिस। वहां पर आके इनका आपस में राउट चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, सा वाली नाली, सा की नाली आगे आ जाती है, खुराक वाली नाली पीछे आ जाती है क्योंकि उसको तो आगे नीचे और जाना है, स्टोमक की तरफ जाना है, और इसी तरह ही सांस वाली नाली आगे आ जाती है। लेकिन एक और तब्दीली यहां पर होती क्या है, उसकी दूसरी तब्दीली ये है कि इस एपिग्लोटिस से नीचे का जो पोर्शन खुराक का है उसका नाम हमने बदल दिया, इसको ईसोफेगस कह दिया, और सांस वाली नाली जो इस एपिग्लोटिस से आगे फेफड़ों की तरफ जा रही है उसका नाम हमने बदल दिया, उसको ब्रोंकस कह दिया। और अब ब्रोंकस तो दो हो गई क्योंकि दो फेफड़े हैं, ईसोफेगस एक ही स्टोमक में जा रही है वो एक ही रही, फेरिंग्स से ईसोफेगस हो गया, लैरिंग से ब्रोंकस हो गया, लेकिन ब्रोंकस दो हो गए इसी जंक्शन से, और एक राइट फेफड़े को दाहिने फेफड़े को जा रही है, एक बाएं फेफड़े को जा रही है और सांस पूरा हमारा उसी तरह चल रहा है। अब बात क्या है, अब ये जो जंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुराक के लिए भी है, सांस के लिए भी, खुराक के बिना हम कुछ देर रह सकेंगे लेकिन हवा के बिना तो नहीं रह सकेंगे ना, हमारी लिमिट 3 से 5 मिनट तक की है मैक्सिमम, इसलिए ये बड़ा जरूरी कार्रवाई जरूरी रास्ता है। जैसे अब लड़ाई चली ना, जी मसा बातें बता रहे थे, अब तेल का आदान प्रदान वहां से होना है और जिस दरिया के उस लिंक से, समुन्द्र के लिंक से होना है, अगर वो ही नहीं खुला होगा, वो ही किसी कंट्रोल में होगा तो उसकी मर्जी है, आने दे मर्जी है ना जाने दे, और अगर इसमें कोई नुक्स हो गया तो कितने देश प्रभावित हो गए, पूरा देश ही पर दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी उससे, है जी। सो इसलिए हर्मस उसको बोलते हैं, इसके लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, और इस एपिग्लोटिस की रक्षा करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर गिलाफ एक तरह दिया कुदरत ने, वो स्प्रिंग जैसा है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया का ऐसा गिलाफ है जो इसके ऊपर स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, इसके अंदर मांसपेशियां हैं जैसे पसलियां एक दूसरे के बजी हुई है ना, और उनको बीच बीच में जो उसको मांसपेशियां इंटरकॉस्टल मसल जिसका नाम मैंने लिया, इसी तरह ही ट्रेकिया को भी स्प्रिंग टाइप कार्टिलेज सब्सटेंस है जो इसको बोलता है बांधता है और ये ट्रेकिया जो है खास तौर पे इस जंक्शन को और इस जंक्शन के साथ ही ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा, वो नाली जो ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ खून वापस लेकर दिल को जा रही है और गार्बेज रुकी जाए तो क्या होगा। इसी तरह ही हार्ट से निकलकर जो नालियां ब्रेन को खून सप्लाई कर रही हैं कि भाई लो खुराक भी लो ऑक्सीजन भी लो तो ब्रेन काम करे, वो दो नालियां हैं कैरोटिड आर्टरीज, तो वो कैरोटिड आर्टरीज भी यहां से होकर गुजर रही हैं, गर्दन से ही निकल रही हैं और इसको उसने कवर कर दिया है। तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि ये पूरी चीजों की एंट्री नीचे जा रही है चेस्ट में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं और ये जो ईसोफेगस की मैंने बात की कि बाकी तो भाई बोरंस ब्रोंकस आई तो दोनों फेफड़ों में चली गई और ऊपर से जो खून की नाली आई वो हार्ट तक रह गई, वो चेस्ट तक उनका लिमिटेड। लेकिन ईसोफेगस तो छाती को पार करके नीचे जा रहा है और दूसरी वो नाली जो नीचे पूरे शरीर को खून की खुराक की ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, जिसको हमने एओर्टा बोला था और जगह जगह उसके नाम बदल दिए थे। पहले जब हार्ट से वो शुरू हुई थी उसका नाम था असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद फिर आर्क ऑफ एओर्टा वो घूम गई, घूम के पीछे की तरफ चली गई और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जाने लगी, निकली तो यहीं से ना, और उसको हमने आर्क ऑफ एओर्टा बोल दिया था। और फिर छाती में रही तो उसका नाम थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा, थोरक्स में है नाम लेकिन है डिसेंडिंग, नीचे को जा रही है, थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा नाम रख दिया। और जैसे ही वो डायाफ्राम, वो एक मेम्ब्रेन है जो छाती और पेट को सेपरेट करता है आपस में, उससे गुजरकर नीचे गई तो उसका नाम हो गया डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। आगे फिर चलेंगे इसकी बात के लिए, हम छाती तक रुक जाते हैं। तो इसी तरह ही ये जो है हमारा एओर्टा खून सप्लाई करने वाली नाली, ये भी नीचे जा रही है, ईसोफेगस भी नीचे जा रही है और ये इनको हम फ्रेनिक ओपन बोलते हैं। फ्रेनिक इस डायफ्राम का दूसरा नाम है और फ्रेनिक नर्व भी है जो इसको सप्लाई करती है, उसका भी आगे वेरवा आएगा तो हम बताएंगे ऐसा लोगों को फ्रेनिक नर्व क्या है कैसे करती है। मैं सिर्फ छाती तक लिमिटेड हूं कि छाती से पेट में जाने तक बहुत सी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम है, ईसोफेगस इंपॉर्टेंट तौर पे है, ये जो खून नीचे लेके जाने वाली नाली है एओर्टा जिसका नाम बोला वो है, उसके बाद नीचे से ऊपर को खून लाने वाली उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। जैसे मैंने ऊपर कहा सुपीरियर वेना कावा जो ब्रेन का खून नीचे लेकर आई, जो नीचे से ऊपर खून लेकर जा रही है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, वो भी तो यहीं से गुजरेगी। तकरीबन 7 डिफरेंट इंपॉर्टेंट ओपनिंग है इस डायफ्राम में, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना चेस्ट का और अब्डोमेन का, 7 डिफरेंट ओपनिंग्स हैं इसमें जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर आने जाने के लिए। लेकिन ये निकलते कहां है, जिसको हमने मीडियास्टाइनम बोला, जो छाती का सेंट्रल भाग है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनका भी मैंने आपके सामने नाम दिया, ये सब चेस्ट के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक निकलते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं ताकि आदान प्रदान होता रहता है, आवाजाही होती रहती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई नुक्स हो गया तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कुछ चीज में कोई नुक्स हो गया तब कितनी चीजें हैं, कि कैसे पता चले कि ईसोफेगस में नुक्स हो गया है या पैरिक्स में नुक्स हो गया है या ब्रोंकस में नुक्स हो गया है या एओर्टा में नुक्स हो गया है या वेना कावा में नुक्स हो गया है, इतनी जो चीजें हैं। ये बात मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर इनमें से किस चीज में भी नुक्स हो जाता है तो आपको कैसे पता चले बाहर, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो जाएंगे ही जाएंगे, हम आपको वो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बातें हैं वो बताएंगे। उसके बाद अगली बात इस साथी के बारे में पूरी हम कर लें तो फिर हम बताएंगे निशानियां क्या है। जब छाती को हमने सेंट्रलाइज एरिया जिसको हमने मिडियास्टाइनम कहा था उसमें बांट दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, एक दाहिने साइड हिस्सा रह गया, एक बाएं साइड हिस्सा रह गया, और दाहिने और बाएं साइड को जो हिस्सा रह गया उन दोनों चीजों को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरा एक इस तरह का मेम्ब्रेन है जो हमारे फेफड़ों के ऊपर कवर किया हुआ है। मैंने कई बार ये बात बताई कि बहुत सारे अंगों के ऊपर कुदरत ने एक इस तरह का गिराफ चढ़ाया हुआ है, और क्योंकि हर अंग अपनी मूवमेंट में है, किसी की ज्यादा मूवमेंट है, किसी की कम मूवमेंट है, किसी ज्यादा है, किसी की कम है, और वो जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, उसके मुताबिक उसको फैलना होता है सुकड़ना होता है, फैलना होता है सुकड़ना होता है, और ये फैले सुकड़े इसकी बाहर की बाउंड्री को कोई हर्ज ना हो, इसकी बाउंड्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हरेक अंग के ऊपर कुदरत ने एक ऐसा गिलाफ चढ़ाया है, और उस गिलाफ का जो फेफड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका नाम है प्लूरा, और दाहिने साइड भी फेफड़ा है बाएं साइड भी फेफड़ा है, इसलिए एक राइट प्लूरा हो जाएगा एक लेफ्ट प्लूरा हो जाएगा। ये जो प्लूरा है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये जिस दिन भी जैसे हम बोलते हैं कि भाई दो लोब है बाईं तरफ तीन लोब है दाईं तरफ, और इन लोब्स के अंदर तक भी ये जाता है और उसको अलग अलग सेपरेट दोनों को तीनों को या दोनों को करता है, और ये इसकी खासियत है कि उनके फैलने या सुकड़ने में इसको फैसिलिटेट करता है। इसके जितने भी कवरिंग्स हैं, जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग है पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं, और एब्डोमेन के ऊपर जो स्किन के नीचे का जो आंतरियों के ऊपर है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, वो सभी कवरिंग जितने भी है ना ये पूरे डबल लेयर कवर्ड हैं, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड कुदरत ने रख दिया है ताकि अगर ये फैले या सुकड़े अंदर के अंग और उनको फैसिलिटी उतनी मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ चेस्ट की। ये जो चेस्ट है ना इसके प्लूरा के दो हिस्से हो गए, और इस प्लूरा के जो दो हिस्से, एक प्लूरा को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो बाहर रह जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। बाहर वाला जो है पसलियों के अंदर अंदर तक लगा होता है, अंदर वाला जो है वो फेफड़ों के साथ साथ चिपका होता है, फेफड़े फैलते हैं वो भी फैल जाता है, फेफड़े सुकड़ते हैं वो भी सुकड़ जाता है, और इसके अंदर का जो फ्लूड है वो इसको फैसिलिटेट करता है फैलने के लिए। इस तरह दो बैग हो गए, जिन दोनों बैग में हमारे दो फेफड़े रहते हैं, और उसके बाद इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमने मिडियास्टाइनम बनाया था, मिडियास्टाइनम के अंदर ही लिपटा हुआ हमारा हार्ट भी है, हार्ट का बहुत सारा पोर्शन भी है, और हार्ट को आप सभी लोग ऐसे ही मोटे तौर पर जानते हैं कि भाई हार्ट जो छाती में खबे तरफ होता है बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ हम मानते हैं, ठीक है ज्यादा बाईं तरफ होता है, उसकी जो सरफेस एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं, मैंने बहुत बार यहाँ इन प्रोग्राम में बताया भी, और आगे आने वाले समय में फिर दोबारा बताऊंगा समय समय के मुताबिक कि हार्ट अंदर है, लेकिन अब हम इतने काबिल हो गए हैं इस जानकारी में कि हम देख पाए कि इसके वाल्व कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, कहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहाँ पर राइट एट्रियम है, कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम आता है, छाती से ऊपर ही हम जान सकते हैं कौन सा वाल्व जो है वो कहाँ पर है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाने वाला जो वाल्व है वो कहाँ पर होगा, और अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो हम छाती के ऊपर से कैसे जानेंगे, हम जान सकते हैं। इसी तरह ही वेंट्रिकल का जो और ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनमें से लगा हुआ जो वाल्व है वो उसको जानेंगे तो कैसे जानेंगे, तो हम छाती के ऊपर से ये चीजें जान सकते हैं कि भाई वो कहाँ पर है, और वहां पर की आवाज जो है वो हमारे कानों में फिट है, हमारे ब्रेन में सेट है, और वो आवाज उस तरह की नहीं होगी तो हम कहेंगे ना इसके तो ट्राइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, इसके तो बाईकस्पिड वाल्व में नुक्स है, या इसके लूनर वाल्व में है। सेमीलूनर मार्ग जो जैसे पल्मोनरी का होता है, इसी तरह ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाहर से ही। ये निशानियां मैं बताऊंगा आप सब लोगों को बताऊंगा, मैं सिर्फ हर चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी को कोई ये ना रह जाए, मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कहा, ये ना रहे। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको इस तरह बताऊं कि आप सब लोग समझ जाएं मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि छाती के अंदर दो फेफड़े हैं, बाईं तरफ के फेफड़े में दो लोब हैं और बाईं तरफ में ज्यादातर हिस्सा जो है हार्ट का होता है, और हार्ट की जो बाउंड्री है ना राइट साइड में बाउंड्री, वो जो हमारी सामने की स्टर्नम है ना, स्टर्नम की हड्डी से सेंटर से मिले, जैसे तहसीलदार आते हैं ना निशानदेही करने के लिए जमीनों की, तो जरीब होती है उनके पास, वो जरीब से वो पत्थर लगे होते हैं उसी वो नापना शुरू कर देते हैं, यहां से नापेंगे तो यहां तक ये भाई तुम्हारी है, यहां पर पत्थर लगा दो या निशान लगा दो कि ये तुम्हारी जमीन है, इसके इधर इसकी जमीन है, रौला हो जाता है कुछ कुछ वो सेल्फ सॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट साइड में हार्ट है लेकिन हार्ट का कुछ हिस्सा राइट साइड में भी है, और वो मैंने निशान दे करके आपको बता दी कि अगर स्टर्नम के सेंटर से हम मिनती शुरू करें तो स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर सेंटर से राइट साइड को हार्ट की बाउंड्री है, उसका एरिया वहां तक है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके मुताबिक कि अगर इस एरिया तक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हार्ट की हम निशानियां आपको बताएंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि हार्ट में है। ऐसा ही नहीं कहेंगे कि हार्ट ये जो है फेफड़ों में ही है, नहीं, फेफड़ों और हार्ट की जितने भी चेंजेस हैं आपस में वो आप अलग अंदाजा लगा सकेंगे कि नहीं ये तो फेफड़ों में हार्ट में नहीं है, क्योंकि आपको निशानियां पता होगी। इस हिसाब से ये जो चेस्ट के अंदर का जितना भी सिस्टम सेट किया हुआ है वो कम्पैक्ट टाइप का बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, और इन सभी में हर एक की अपनी बाउंड्री है, और जब भी किसी में कोई खराबी आएगी उसकी अपनी रफ्तार में उसके अपने चलन में रुकावट आ जाएगी, और वो जो रुकावट आएगी आस पड़ोस को तकलीफ देगी, आस पड़ोस का चलन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तकलीफ अगर हार्ट में हुई या तकलीफ मीडियास्टाइनम के किसी और ईसोफेगस में हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट साथ वालों को भी होगा, इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट नीचे भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे हम जानें कि भाई ये ईसोफेगस में है या हार्ट में नुक्स आ गया है, या एवेना केवा का नुक्स है, या एओटा का नुक्स है, ये सब चीजें हम आपको इन्हीं प्रोग्रामों में बताएंगे कि इसमें नुक्स हो तो आप क्या कैसा समझेंगे, बाहर की कौन कौन सी निशानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि चेस्ट है क्या, कौन कौन सी हड्डियों से बनी है ये, वो हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे अपनी पूरी दूरी में एक दूसरे के साथ बची रहती हैं और एक केज बना देती है, पिंजरा बना देती हैं, और उस पिंजरे में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, और उसका नाम मैंने मीडियास्टाइनम बोल दिया, मीडियास्टाइनम में उसके बाद ईसोफेगस बोल दिया, उसके बाद हमने ये जो मेम्ब्रेन था डायफ्राम का उसकी बात हमने कर दी, उसके बाद हमने ट्रेकिया की बात कर दी कि उससे नीचे ब्रोंकस जा रही हैं, उसके नीचे जो है ईसोफेगस जा रहा है, ये सब बातें यहां से निकली। एक बात जो आज के इस प्रोग्राम में अभी हार्ट की मैंने बात की है, लंग्स की मैंने बात की है, हार्ट और लंग्स जो है वो अपने अपने दायरे में कवर्ड हैं, उनको बाउंड्री दे दी कुदरत ने कि भैया पेरिकार्डियम के अंदर अंदर ही तुमको रहना है, ये फेफड़े हैं ये इसके अंदर अंदर ही तुमको रहना है। लेकिन जैसे ही फेफड़ों में कंजेशन हो गया, निमोनिया हो गया, फिर जैसे ही हार्ट में कोई नुक्स हो गया, कोई वाल्व काम नहीं कर रहा है, कोई जो जो उसकी आर्टरीज हैं उनमें कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो साइन एंड सिम्टम पैदा करेगा। जैसे वो मैंने रोडी वाली बात शुरुआत में कही थी कि आप कंकर फेंकते हैं पानी में, जैसे ही आप उसमें कंकर फेंक देंगे लहरें निकलेंगी, ठीक उसी तरह ही हार्ट में अगर कोई चेंजेस आएगी तो किस तरह की लहरें होंगी, हार्ट में या फेफड़ों में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो किस तरह की चेंजेस होंगी जो बाहर आप महसूस कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस है, ग्लोबल निमोनिया है, इस तरह के अलग अलग नाम है बीमारियों के, और उनमें अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई क्या क्या निशानी। पहले हम जनरल निशानियों की बात करेंगे, अगर फेफड़े में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, हार्ट में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, मीडियास्टाइन के किसी कंटेंट में कोई ऐसा नुक्स हुआ तो फिर बाहर आप क्या देखेंगे। ये चीजें मैंने आप सब लोगों को आगे इन प्रोग्रामों में बतानी है, और आज का ये चैप्टर मैं समझता हूँ मैं आगे ना चलू, हाँ एक बात रहेगी, एक बात रहेगी, वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले भी बात हुई होगी क्योंकि तो बड़े लंबा समा हो गया बोलते हुए मुझे, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, अरे भैया काहे फिरता फूलिया फूलिया, तब 10 मास उर्द मुख रहता, शोधन कैसे भूलिया बढ़िया, तेरे को ये वो बातें भूल गई है, जब माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ तब तेरी रक्षा कौन कर रहा था। हाँ जी, लेकिन मैं जो मेडिकल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, मेडिकल व्यू पॉइंट ये है कि शरीर में अपनी एक इम्यूनिटी है, बच्चा पैदा हो जाता है माँ से तो अलग हो गया ना, कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो उसको बचा के रखती है, अलग अलग विंग है, सेक्शन है प्रोटेक्शन के लिए। तो उस वक्त कुदरत ने जैसे ही स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले, जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट हुई, जैसे ही वो डेवलप करना शुरू हुआ, कुदरत ने कहा कि भाई अब तेरी खुराक तो तेरे को माँ दे देगी, माँ की तरफ से कुछ ऐसा भी आ सकता है जो तेरे को नुकसान दे दे, और उसको बचाने के लिए भी ये हम तेरे को एक ग्लैंड दे रहे हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, जिसको जैसे हम बाहर का बात करते हैं कि लिम्फ नोड्स की, कि जितना जहां जहां आर्टरी है वहां वहां वेन है, जहां जहां वेन है वहां वहां लिम्फ नोड है, वहां वहां लिम्फ चैनल है, वहां वहां लिम्फ चैनल के साथ नर्व है, ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ साथ चलती है। और इसका सबसे बड़ा हेड क्या है, सबसे पहले तो अलग अलग तरह जेल है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसका बड़ा बॉस कौन है, स्प्लीन है, तिली है जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, उसके बाद बहुत बड़ा बॉस कौन है, नहीं अभी नहीं बात करना है, उसके बाद जो तिली है, अगर मान लीजिए तिली से भी कोई चीज नहीं बीमारी हुई, कैंसर हुआ, हम लोग देखते हैं कि लिम्फ नोड फूट गई है तो हम बोलते हैं अभी डाउटफुल है कुछ, हम टेस्ट करने शुरू करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिम्फ नोड तो बहुत शरीर में और भी फैल गए, उसके बाद हमने देखा कि नो तिली भी बढ़ रही है क्योंकि तो इनका बॉस है खून को साफ करने वाला, जो गार्बेज आ रहा है किसी बीमार अंग से, उस बीमार अंग से आने वाले इस गार्बेज को ठीक करने के लिए जो हमारे पास अंग दिया हुआ कुदरत ने, उसका नाम स्प्लीन है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि स्प्लीन का भी एक बॉस है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, और थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर छाती के अंदर लगा होता है, और थाइमस ग्लैंड कुदरत का वो तोहफा है इस जीवन के लिए कि जब तुम्हें तेरे पास और कुछ नहीं था ना, उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड तेरे पास प्रोटेक्शन करता है, जितना भी गार्बेज जितना भी कुछ ऐसा उस वक्त पैदा हो रहा था जो तेरे को नुकसान पहुंचा सकता था उसको सेट करने के लिए ये लिम्फोइड ऑर्गन। और ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड है, ये भी तो भाई इसी मीडियास्टाइनम में ही है ना, ये भी हार्ट के ऊपर लगा हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अचंभा हुआ होगा कि शरीर के अंदर रहते हुए भी तो गार्बेज बनता था ना, और उसी में रहता था, उसको न्यूट्रल करने के लिए ठीक करने के लिए क्या चीज थी, तो ये थाइमस ग्लैंड उस वक्त इस शरीर की रक्षा कर रहा था कि भाई ठीक है तेरी रक्षा माँ तो जो करना करती है, हम भी तेरी रक्षा करेंगे ताकि तुम जिंदा रहे और बाहर आ जाए। और जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है बड़ा होना शुरू होता है ना, उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, थाइमस ग्लैंड का काम कम हो जाता है और थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, बच्चा छोटा था वो बड़ा हो रहा है, उसका थाइमस ग्लैंड उसकी प्रोटेक्शन करने वाला, पहले माँ बाप रक्षा करते हैं ना, फिर उंगली पकड़ के चलाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है ना तो बोलते हैं ठीक है अब ये अपनी रक्षा आप करने योग्य, फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। यही एक माँ बाप का दर्जा रखने वाला हमारे पास उस वक्त थाइमस ग्लैंड होता है भाई, ये भी इस मीडियास्टाइनम का ही हिस्सा है, और इसमें अगर कोई खराबी आएगी और मान लिया जाए दिल्ली से कुछ नहीं हुआ, ये पूरे शरीर में लिम्फ नोड हुडकिंस डिजीज उसको बोलते हैं, बहुत से शरीर में इस तरह की कृतियां बन गई, बहुत कुछ ऐसा बन गया जो कोई और हल नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड भी फिर बड़ा होना शुरू हो जाता, थाइमस ग्लैंड का काम भी बढ़ जाता है, नहीं भाई अब किसी से नहीं संभलता, अब लिम्फ नोड नहीं कंट्रोल कर पाते, अब तिमीरी बेचारी नहीं कंट्रोल कर पाती, अब तुम सहाई हो भाई, अब तुम मेरी मदद करो, तो उस वक्त ये जो थाइमस ग्लैंड है ये फिर बड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आज का समय मेरा समाप्त हो रहा है, अभी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए इस छाती के संबंध में, अगले प्रोग्राम में फिर हम इसका वेरवा आपके सामने कहेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कम से कम वो इंटरेस्ट लेकर सुने, रोजाना इन प्रोग्रामों को सुने, और अगर अच्छे लगे तो दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह ऐसे नहीं कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चर कर रहा हूं, मैंने कहा लेक्चर किया और बस चलता बन, नहीं मेरा काम यह है कि जो भाषा आप समझते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप समझते हैं, जो आपके रूटीन लाइफ के साथ संबंधित है, इस तरह की बातें मैं आपसे करूं जो आप आसानी से समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं, बता तो शरीर के बारे में रहा हूं लेकिन आप इसको इस तरह समझ जाए जिस तरह आप अपने खेतों के बारे में जानते हैं, जिस तरह आप अपने जानवर पशुओं के बारे में जानते हैं, इस शरीर के बारे में भी आप उस तरह जाने कि भाई हर चीज आपकी नजर में हो कि कैसे कैसे हो रही है। तो मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। कंसल्ट करने की कोई फीस नहीं है, किसी भी दुनिया के कोने से आप मुझे कॉल कर सकते हो, अब तो व्हाट्सएप है हर जगह ही है, कहीं से भी आप बिना पैसे के कॉल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कॉल करना चाहते तो ईमेल है homeomedicine@yahoo.com। तो किसी भी वक्त ईमेल करके भी आप अपना सवाल मेरे पास भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा। उस तरह ही मेरी बेस्ट जजमेंट जो 52 ईयर मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस फील्ड हो गया, और इस समय पे पढ़ते पढ़ाते जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया मैं वो आप सब लोगों को दे जाना चाहता हूं। तो किसी को किसी जरूरत हो, अगर आप होम्योपैथिक तरीके से किसी बीमारी का इलाज ही करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हो 4086871899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही मेहरबानी, बहुत बड़ी जानकारियां। दोस्तों ताडा भी धन्यवाद, चीमा साहब ताडा भी, मिलते हैं जी परसों, फिर दियो इजाजत मेरे वालों। बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी।

में उसका नाम बदल देते हैं। हम कहते हैं कि भाई नहीं, इसका नाम अब मीजल्स नहीं रहा, इसका नाम पॉक्स नहीं रहा, इसका नाम वेरिसेला नहीं रहा, हम कहते हैं कि ये शिंगल्स हो गई है। तो इस तरह बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो अपना नाम उसका हम चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉजेटिव मटीरियल फैक्टर है ना, वो वही रहते हैं। तो इस तरह की बातें भी मैंने आप सब के सामने की थी। और टोटलर एज के बाद एक ऐसी एज आई थी जिसको ना हम बच्चा कह सकते हैं ना हम जवान कह सकते हैं, और उसको हमने कहा था एडल्सेंस एज। और उस एडल्सेंस एज को हमने कहा था कि भाई ये एज 7 साल के बाद कहो, 6 साल के बाद कहो, और ये फिर आगे 18 साल तक, 14 से 18, कुछ लोग इसको 14 साल तक मानते थे, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं 18 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तब तक ये जो डेवलपमेंट होने वाली बॉडी में वो पूरी हो चुकी होती है, तो उसको हम अडल्ट मानने शुरू कर देते हैं। कानूनी तौर पर भी अडल्ट मानते हैं, वैसे शारीरिक तौर पर भी इसकी जो डेवलपमेंट हो जाती है वो वहां तक हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई अब ये अडल्ट हो गया है। तो इससे पहले क्या था, ना वो बच्चा था ना वो अडल्ट था। तो उस फेज की जितनी भी प्रॉब्लम थी, उस फेज के हालात के जितने अचंभे थे, क्योंकि कुछ अचंभे भी तो मैंने आपको बताया ना कि लड़की से लड़का होगा, लड़के से लड़की होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें जो हमारे नॉलेज में पहले नहीं थी, अब मेडिकल साइंस उसके बारे में जानती है, जेनेटिक्स ने इतनी स्टडी कर ली कि भाई ऐसा होता क्यों है। अब हमारे लिए वो अचंभा नहीं रहा, पहले वो अचंभा था, अब अचंभा नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है। इसकी डिटेल मैंने इन प्रोग्रामों में आपके सामने रखी थी। और उसके बाद एडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते इस शरीर में क्या क्या तब्दीलियां आई, और ये एक ऐसा दौर था, ये एक ऐसा समय था जिसमें फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, शारीरिक तौर पे भी, उस कार्यक्रम के तौर पे भी स्पष्ट हो जाता था कि जो लड़का है वो लड़की है, लड़का है वो, जो लड़की है वो लड़की है। तो मतलब बाहरी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि ये लड़की ही है, अंदरूनी तौर पे भी स्पष्ट होता है कि जैसे मासिक धर्म आना शुरू हो गया, जैसे स्पर्म बनने शुरू हो गए, सीमन आना शुरू हो गया, जैसे आवाज की चेंजेस मैंने आज हम लोग को बताई थी, इसको हम लोग बोल, ये जो सभी निशानियां पैदा होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। तो वो जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं वो पूरे आने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त फिर हमने एक स्टॉप लगा दिया था, और उस स्टॉप को लगाने का मतलब ये था कि अब हम इस जीवन को अडल्ट एज में ले आए हैं। लेकिन एक सवाल पैदा हो गया था कि अब ये पूरे का पूरा शरीर जो बना हुआ है, इसकी बंतर के बारे में थोड़ी जानकारी कर लें, ताकि हमें पता हो कि इस शरीर में अगर कोई बीमारी आती है, अगर कोई घटना घटित होती है, तो उसके पीछे कहां पर क्या हमें खोजना होगा, क्या हमें ठीक करना होगा, और तभी ये जो बीमारियां हैं वो रूट आउट हो सकती। कौन चीज है जो इस शरीर को चला रही है फिजियोलॉजिकली, क्योंकि हमारा काम, मैंने ये कहा था कि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो एलोपैथिक सिद्धांत से या मटीरियलिस्टिक व्यू से थोड़ा सा और अलग है, और उसको हमने कहा था कि ये हम बाद में आपके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे थे कि जो हमारी लिमिट है फिजिकल की, पदार्थ तक की, जो पदार्थ में हमें दिखाई दे सकता है उस तक की लिमिट रखते हुए मैंने आपको ये सब कहा था कि भाई ये बंतर जो शरीर की बनी है, अल्टीमेट इसका अंदरून, इसका माइन्यूट कहां पर है, जिसमें कोई ना कोई नुक्स पड़ता है तो फिर इस शरीर में बीमारियां बड़े पैमाने पर दिखाई देती। मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी दे दी थी, जो वो प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है और उसमें जो कोई स्पॉट आ जाता है तो वो पर्दे पर होता है, हम लोग पर्दे से डील कर रहे हैं। ये जो शरीर है वो हमारा पर्दा है हमारी जीवन शक्ति का, और वो जो इसको जीवन शक्ति को अगर हम थोड़ा सा पदार्थिक रूप में लें तो सेल पे, तो असली बात मैंने आप सब लोगों को ये बताई थी फिजिकल रूप में कि ये शरीर की बनकर सेलों से बनी हुई है, ट्रिलियंस सेल हैं, लेकिन उन सब सेलों में एक समानता है। समानता क्या है कि उसकी बनतर, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग, कार्यक्रम करने का तरीकाकार, एक दूसरे को चीज बांटने का तरीकाकार, एक दूसरे से चीज इकट्ठी करके बाहर भेजने का तरीकाकार, ये सब एक था, और अलग अलग अंगों को बनाने के लिए इसकी शेप चेंज हो जाती थी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था या फंक्शन थी वो वही रहती थी। तो ये सब बातें मैंने आप सब लोग के सामने रखी थी, और उसके बाद फिर मैंने सेल के बारे में आप सब लोगों को बताना

0: किया था कि मिसाइल जो जिसको सिंगल यूनिट या मिनिमम यूनिट हम बोल रहे हैं वो है क्या, उसकी डिटेल मैंने आप सबके सामने रखी थी, उसकी बंतर क्या है वो सब हम आपके सामने रखी थी, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, या और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी चीजें काम करने वाली हैं जिसकी अलग अलग ड्यूटी है, तो वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं जो बड़े पैमाने पे शरीर पे हमें बीमारी के तौर पे दिखाई देते हैं, या अगर ये तंदुरुस्त है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो शरीर की फंक्शनिंग पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे शरीर नॉर्मल तौर पे काम करता है, और अगर इसमें कोई नुक्स आता है तो अल्टीमेट वो नुक्स कहां पर आ रहा है। ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को इन प्रोग्रामों में पहले बताई थी, और उसके बाद फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसको हमने कहा था कि इंडिविजुअलाइजेशन, हर आदमी एक दूसरे आदमी से अलग है, चाहे ट्विन्स हों तो भी उनकी मानसिकता एक दूसरे से डिफर हो जाती है, चाहे वो शारीरिक तौर पे एक जैसे ही लगेंगे लेकिन उनकी मानसिकता डिफरेंस हो जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हम कहें कि सभी लोग जो एक ही बीमारी का डायग्नोसिस लेकर आते हैं उसको जो निचली सतह है हमारी, वो जो सेल की सतह है उससे ऊपर की सतह पर हम पहुंचते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई नहीं, हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल एहसास में फीलिंग में एक दूसरे से अलग है, और इसी तरह ही अगर हम माइन्यूट चेंजेस जो आती हैं अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे किसी चीज में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं तो फिर सभी में वही बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन इससे और बारीकी में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि नहीं, एहसास फीलिंग्स डिजायर्स जो हैं वो सब में अलग अलग आ जाएंगी। और उसकी एग्जांपल भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई अगर चार पांच पॉट कलर के होंगे, अलग अलग कलर हैं हर एक पॉट में, उन सभी में से हम लोग एक अलग पॉट में अलग रंग सभी में एक एक चमचा मिलाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि सभी पॉट्स में डिफरेंट कलर आता है, एक जैसा कलर नहीं आता है, क्योंकि उसका अपना भी रंग था ना, उस पॉट का अपना भी तो रंग था ना, इसमें जो एक मिक्स किया गया जो सभी में एक ही मिक्स किया गया। तो बताना मैं ये चाहता था आप सब लोगों को कि मान लिया जाए किसी को मलेरिया मच्छर काट लिया, और अब मच्छर काट लिया तो हमने कहा कि इसको मलेरिया हो गया। मलेरिया क्यों कहा हमने, क्योंकि कुछ एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी कि शिवरिंग ठंड लगकर बुखार हुआ, पसीना आकर बुखार उतरा, ये सब उसकी जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है जिसके बेस पे हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं, या ब्लड के तौर पे उसकी रिंग जो है मलेरियल रिंग चेक करते हैं हीमोग्लोबिन में, या ऐसे कहें कि हमने पैथोलॉजिकली भी और सिम्टोमेटोलॉजिकली भी इसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेकर कह दिया कि इसको मलेरिया है, या किसी को कह दिया कि भाई इसको हैजा है, या किसी को कह दिया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसके आधार पे हमने कह दिया था, लेकिन ये सभी फिजिकल सिम्टम थे। ये मैंने कहा था कि इस जीवन को चलाने वाली कोई चीज आदिक है, पावर है, इंडिविजुअल है, सभी की अलग अलग है, और जिस तरह वो पॉट्स में कलर अलग अलग हो गए थे ना, इसी तरह ही जब कोई बीमारी या ऐसे कहें कि कोई जरासीम किसी बॉडी पे इफेक्ट करता है तो उसके सामने जो विजिबल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो तो एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो उसका लाइफ फोर्स है, जो इस जीवन की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, अगर उसके लेवल पे जाकर उसको हम शनाख्त करना शुरू करेंगे तो वो हमें अलग दिखाई दे। कोई जो है आपने देखा होगा कि मलेरिया के लोग होते हैं कि उनको ठंड लग रही है, ले तो कपड़ा नहीं लेना चाहते, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना है, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी पीना है, और इस तरह ही अलग अलग तरह की क्रेविंग्स हमारी होती हैं, और खाने में भी पीने में भी रहने में भी बात करने में भी अलग अलग तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो सभी पेशेंट में अलग अलग होगी। और ऐसा भी है कि एक आदमी की जो नेचर पहले थी बीमार होने से पहले, अब वो बीमार हो गया किसी भी बीमारी से, तो उसकी नेचर में, उसकी फीलिंग में, उसकी डिजायर में, उसके एवर्शंस में चेंज आ जाती है, लेकिन हम लोग इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हम क्योंकि हम लोग मटेरियल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना बात को, मटेरियल का मतलब है कि आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस हर चीज को फिजिकली देखना चाहती है कि बंदा तो कह रहा है कि मैं बीमार हूं, और बंदा उसी वक्त डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसी वक्त उसको भेजे लैब में, तो लैब के टेस्ट जो भी आएंगे वो कहेंगे भाई तुम तो बीमार नहीं हो क्योंकि तुम्हारे तो टेस्ट नॉर्मल हैं। क्योंकि हम लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो निर्धारित किया है उसका स्टैंडर्ड हमने निर्धारित किया है, और वो स्टैंडर्ड एक एज एन एवरेज स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड नहीं है। किसी आदमी को टेम्परेचर अगर होता है 98.4 हमारा, किसी का सब नॉर्मल ही रहता है उसी में ठीक रहता है, अगर किसी का 98.4 हो जाता है या 99 हो जाता है तो वो बहुत फीवरिश महसूस करता है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर 120 हम नॉर्मल मानते हैं, डायस्टोलिक 80 हो गया या सिस्टोलिक जो है 120 हो गया, ये हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं अगर उनको 120-80 हो जाता है तो वो बोलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, क्या हुआ ये, इसने क्या साबित किया? इसने ये साबित किया कि मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो हमने एज एन एवरेज लिया था वो सभी पे फिट नहीं बैठता, वो सभी के लिए इंडिविजुअल है और हर आदमी का वो इंडिविजुअलिटी है। तो क्या हुआ कि लैब से टेस्ट आया तो टेस्ट ने कहा कि तुम्हारे तो टेस्ट सब नॉर्मल है, मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फिक्स किया था वो एज एन एवरेज लिया था और सभी के लिए नहीं था। तो ये बात कहकर मैं आपको साबित ये करना चाहता हूं कि हर आदमी एक दूसरे से इंडिविजुअल है और उसकी फीलिंग्स डिजायर्स अवर्शंस दूसरों से इंडिविजुअल हैं, बेशक सेल तक उसकी बनतर सेम है, उसी तरह का कार्यक्रम है सेल का, उसी तरह की स्ट्रक्चर है सेल का, उसी तरह सारी कार्रवाई वो सेल करते हैं, लेकिन जहां तक उससे ऊपर के लेवल की बात आ जाती है तो वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो फिर ये कहकर बात मैंने आप सब लोगों को ये पहचाने की कोशिश की थी कि अगर हर आदमी इंडिविजुअल है और अगर हर आदमी में जो इस शरीर को चलाने वाली पावर है वो इनविजिबल है, पावर है, तो मतलब फिर ट्रीटमेंट तो उसका करना चाहिए ना। असल में ट्रीटमेंट तो उस चीज का होना चाहिए जो इस शरीर के नॉर्मल और एबनॉर्मल हर तरह के कार्यक्रम के लिए जिम्मेवार है। वही बादशाह अगर किसी देश पे कब्जा कर लेता है तो क्या होता है, उसके थाने, उसकी कचहरी, उसके सब जितने भी कार्यक्रम कानूनी कर चलने वाले हैं वो सब तो सेम ही रहते हैं, लेकिन कानून बदल जाता है, कार्रवाई बदल जाती है क्योंकि अब नए बादशाह की चलती है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जीवन शक्ति जो शरीर में है वो इनविजुअल पावर है, इनविजिबल पावर है, और अगर हमने उसको कुछ हेल्प करनी है, क्योंकि कोई इसी तरह की वबा ही है जो इस आदमी के ऊपर इफेक्ट की, उसकी वाइटलिटी के ऊपर इफेक्ट की, वाइटलिटी मजबूर हो गई कि इस शरीर का चलन बदला जाए, इसमें पसीना लाया जाए, इसको ठंड लगाई जाए, इसको प्यास लगाई जाए, इसको अनकवर किया जाए, कवर किया जाए, ये सब जितनी भी हरकतें हम करते हैं, प्यास लगे ना लगे ये सब हरकतें हैं, ये उस चीज की हरकतें हैं, ये उस चीज की फीलिंग एंड सेंसेशंस हैं जो इस शरीर की जिम्मेवार है, जो इस शरीर की नॉर्मल और एबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है। अगर वो नॉर्मल और एबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है तो फिर मतलब क्या, जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी को मलेरिया मच्छर ने काट लिया तो उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक इन्फ्लुएंस है जिसको वैसे आम बोली में एशंस कह देते कि ये इस दवाई का एशंस है, ये इस चीज का एशंस है जी। इसी तरह उसका जो इन्फ्लुएंस उसने बॉडी पे इफेक्ट किया, बॉडी में जो रेफरेंस भेजा ब्रेन को, ब्रेन तक तो हमने पढ़ लिया ना पूरा कुछ कि ब्रेन के नर्व के साथ ये बॉडी हमारी जुड़ी हुई है, ब्रेन से ये जो लैंग्वेज थी वो डीकोड हुई, उस पावर तक पहुंची, उसने क्या फील किया, उसको इरेडिकेट करने के लिए जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें शिवर थी, जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें पसीना था, जो सिम्टम उसने पैदा किए वो उसमें थर्स्ट रेस्टनेस थी, या उसमें सिम्टम पैदा किए कि उसमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, ये सब चीजें उसकी वजह से थी। तो मेरा ये कहने से मतलब ये था कि अगर हम फिजिकल बॉडी को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की चीज है, ऐसे विश्वास नहीं हो सकता किसी को, विश्वास इस पर बात पर तभी होगा जब आप इसका खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अगर उस चीज को जो असल जिम्मेवार है किसी चीज की, उस चीज को आप पकड़ेंगे, उस चीज को हेल्प की जरूरत है उसी रूप में हेल्प करेंगे, तो कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, तो कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इस फिजिकल शरीर को, जैसे किसी की टांगे पकड़ो, सिर तक पहुंचना है तो पांव पकड़ लो, पांव से आगे ऊपर चलते रहो, ये तरीकाकार हम लोगों ने अपनाया हुआ है। और यही डिफरेंस है एलोपैथिक स्टाइल में और होम्योपैथिक स्टाइल में, क्योंकि हम इंडिविजुअल करेक्टर नहीं दे रहे, किसी भी बीमारी के इंडिविजुअल करेक्टर नहीं ले रहे, क्योंकि वो इंडिविजुअल करेक्टर जो है वो हमारी पहुंच से ऊपर की बात है, क्योंकि हम फिजिकल रोग हैं, हम पदार्थ तक ही लिमिट रखते हैं, हम सेल तक ही अपनी खोज रखते हैं। अगर सेल से ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली हम वहां पर पहुंचेंगे कि इस शरीर का रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है। मैंने यहां पर पहुंचते हुए मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दी थी कि अगर कोई ये कहे कि हवा में लून घोल दो, नमक घोल दो, तो नहीं घोला जाएगा ना, लगता है ये आदमी मूर्ख है, हवा में नमक घोलने की हमारे हमें कह रहा है। लेकिन अगर आप अमोनिया गैस को, गंध को स्मेल करते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो अमोनिया की गंध है, इसका मतलब अमोनिया का साल्ट इस गंध में, इस हवा में मिक्स हुआ। कब हुआ? जब ये उसकी शेप में आ गया। इसी तरह ही किसी भी बीमारी के जरासीम या किसी भी दवाई का इफेक्ट मटेरियल होते हुए भी उसका जो एसेंस है, उसके जो इफेक्ट हैं, वो हायर लेवल पे उस वाइटलिटी पर इफेक्ट करते हैं, और वो वाइटलिटी मजबूर हो जाती है उस इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम पैदा करने के लिए, जिसका हम अलग अलग बीमारी के तौर पे डायग्नोस करके नाम रख देते हैं। और जो मलेरिया काटा है, मच्छर काटा है, तो मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की जितने भी कैटेगरी है, तीन चार हमने बना दी है, तो उसके मुताबिक उसके सिम्टम पैदा होंगे। हैजा होगा तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग फिजिकल रूप में पैदा, ये कब पैदा हुए? ये तब पैदा हुए जब बीमारी पैदा करने वाली चीज का एसेंस ने ब्रेन तक, ब्रेन विजिबल है, ब्रेन हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी है, ब्रेन ने डीकोड करके इस शरीर की जीवन शक्ति, जो इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, उस तक पहुंचाए। उसने जो फील किया, मैंने उसकी ये भी एग्जांपल दी थी कि मान लिया जाए आपका उंगली किसी गर्म चीज से टकरा जाती है, तो इमीडिएट एक सेकंड के हजारवें हिस्से में आपको वो ऑर्डर ब्रेन पर पहुंचता है, डी कोड होता है, वहां से होकर वापस ऑर्डर होता है, एकदम उंगली खींच लो, कितना समय लगता है आपको गर्म चीज को हाथ छूने के बाद एकदम खींचने में, इतने समय में हुआ क्या है? आपको नहीं, हम लोग नहीं समझते, लेकिन हुआ क्या है कि ये सेंसेशन नर्व के जरिए ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डी कोड करके मन जो हमारा मस्तक है, या ऐसे कहें जो हमारी जो वाइटलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है शरीर के लिए, उस तक पहुंचाया। उसने उसी वक्त उसको ऑर्डर दिया कि उंगली को पीछे खींच लो। तो ये सब बातें करने से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इस शरीर को चलाने वाली बीमारी में या तंदुरुस्ती में चलाने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस फिजिकल बॉडी से ऊपर है, और वही है जो फिजिकल शरीर से ऊपर किसी की इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल करेक्टर को निर्धारित करती है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा कि इवन ट्विंस होते हैं ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसकी फीलिंग्स, डिजायर, वर्शंस की आप बात करोगे तो डिफरेंट हो जाएगी। और यही बात होती है कि किसी बीमारी का चलन जब भी किसी का प्रकोप किसी के ऊपर होता है, तो उस वक्त उसकी डिजायर, अवर्शन, फीलिंग्स पहले से बदल जाती है, जैसे वो बादशाह वाली मैंने बात कही, थाने वही, कचहरियां वही, कारखाने वही, लेकिन रूल अब डिफरेंट हो गया। और जो रूल डिफरेंट हो जाता है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल बॉडी। जिससे मैंने कहा कि प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है, उसमें कोई स्पॉट आ गया है, अब उसमें से जो स्पॉट का वो जो पिक्चर हमारे पर्दे पर दिखाई दे रही है वो बड़ी दिखाई दे रही है, अब पर्दे को हम आगे पीछे कर रहे हैं। जो सिद्धांत अभी हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं ना, तो मटीरियल तक ही हमारी पहुंच अप्रोच है और उसको मानते हुए हम लोग उस पर्दे को आगे पीछे कर रहे हैं। यहां पर आकर मैंने आप सब लोगों को ये भी कहा था, उल्टी वाली मैं वोमिटिंग वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, कि जो कुदरत जो आपकी वाइटलिटी इस शरीर के साथ करना चाहती है या जो उसको तकलीफ है वो आपको पहुंचाना चाहती है, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो इस बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ठीक नहीं उसको लगता, उसको वो निकालना चाहती है। वो एक्सप्रेस क्या कर रही है? उल्टी, जी कच्चा होना, मतराना, वो इससे पैदा कर रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मटीरियल बॉडी होते हुए मटीरियल चीज को समझते हैं और हम लोग उसको उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सी बीमारियां दवाई खाने के बाद और बढ़ जाती है, घबराहट परेशानी और बढ़ जाती है और हम लोग बोलते रिएक्शन हो गई, साइड इफेक्ट हो गए। असल में क्या है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ अवर वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स थी जो वो चाहती थी कि मेरी हेल्प की जाए, ये शरीर में जो अंदर जो चली गई है चीज गई है वो अनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसको बाहर निकाला जाए या इसके जो इफेक्ट हैं इस बॉडी के सेलों को डैमेज करेंगे, इसको बाहर निकाला जाए। और आप जबरदस्ती कोई दवाई करते हो जिससे वो इफेक्ट बंद हो जाए, मतलब पर्दे को इधर उधर कर रहे हो, तो अल्टीमेट कुदरत क्या करेगी? परेशान हो जाएगी कि क्या करें आप। कोशिश वो करेगी फिर भी, इस जब तक जीवन है, जीवन स्ट्रांग है, तब तक ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, घबराहट में हो जाएगी, इसको टॉयलेट टट्टी लगा देगी, डायरिया लगा देगी जिसे वो निकले। अगर नहीं हुआ तो जब तक उसको वो अंदर से न्यूट्रलाइज नहीं कर देती जो आपके अंदर गया था और उल्टी पैदा हुई थी, तब तक ये घबराहट ये परेशानी आपके साथ बनी रहे। तो ये बात करके भी मैं आपको वहीं पहुंचाना चाहता हूं कि असल इस बॉडी का जो इंडिविजुअलाइजेशन करेक्टर है जिस के बेस पर हमारा जीवन चलता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अगर इस जीवन को चलाने वाली कोई इंडिविजुअल शख्सियत इस तरह की है जो इनविजिबल है, तो फिर हम दवाई भी उसी तरह की ही देने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे अगर हम चलें, आपने देखा होगा कि एक आदमी शब्द पढ़ रहा है, एक आदमी बंसरी बजा रहा है, एक संगीत चल रहा है, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, एक आदमी स्टेज पे खड़ा हुआ लेक्चर कर रहा है और लेक्चर करते करते वो लोग इतने जोश में आ जाते हैं वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये कहां असर हुआ? शरीर पे नहीं हुआ, किसी हायर लेवल पे हुआ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर तो कुछ किया ही नहीं, आपके हर लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है। और वो हर आदमी का नहीं होगा, सभी के सभी वहां बैठे सुनने वाले संगीत सभी रोएंगे नहीं, सभी नहीं रोने लगे, और वो लेक्चर सुनने वाले लोग सभी के सभी किसी को मरने मारने पर उतारू नहीं हो जाएंगे। हर आदमी की फीलिंग उस पर इंडिविजुअल होगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कहना आप लोगों को कि आप लोग बीमारी के तौर पर भी समझें, आप लोग इस शरीर की बनतर के तौर पर भी समझें, तो ये महसूस करें कि इसके चलन के रुकावट के लिए जो भी इसके चलन मतलब इसकी फिजियोलॉजी में, इसकी फिजियोलॉजी में अगर जो भी रुकावट आ रही है उसके पीछे या उसके लिए जिम्मेवार इसके ऊपर हायर स्टेज है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि भाई अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, आप इसको अंदर का कहाँ करें भाई? नहीं, फिर भी वो वाइटलिटी ही जिम्मेवार है। मैं इसको फिर आपको समझाऊं कि अगर मुर्दे की टांग तोड़ दो, मुर्दा तो है ही, लिविंग बींग नहीं है अभी, उसकी टांग तोड़ दो तो उसमें कभी सूजन नहीं आएगी, कोई ब्लड भी नहीं निकलेगा, कोई उसको दर्द भी नहीं होगी। और जितने भी सिम्टम्स लिविंग बीइंग में उस एक्सीडेंट के पैदा होंगे, ये सब साबित करेंगे कि सम हायर पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी, ऐसा हो जी। तो मेरे कहने से मतलब कि हर हालात में ही वो एक बॉडी, वो एक चीज इनविजिबल जो है हमारे शरीर की, वो ही इफेक्टेड होती है, उस पर ही किसी बीमारी का इफेक्ट होता है। डॉक्टर हैरिंग हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर हैरिंग ने कहा कि अगर जरासीम ही बीमारी पैदा करने वाले हैं तो लेट्स टेक, उसने वो जो घोल था कॉलरा बेसिलस का, तो उसने पी लिया, तो कहता है मुझे कॉलरा हो जाना चाहिए ना, हैजा हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। इसी तरह ही ये कौन रिस्पॉन्सिबल था कि मेरी वो वाइटलिटी इससे स्ट्रॉन्गर थी, उसको इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह ही लोग मिसमेराइज करते हैं, मिसमेराइज करते हैं, क्योंकि मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल मिसमेराइज करता था, हिप्नोटाइज करके बहुत सी बीमारियां मैं ठीक करता था। मेंटल रोग जो, मेंटल बीमारियां क्या है, शारीरिक तौर पे सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हायर लेवल पे कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए हैं, उस हायर लेवल के इफेक्ट से बाद में ऐसा हो सकता है सेकेंडरी कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है वो हायर लेवल पे ही है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक किए जिनको हिप्नोटाइज करके भी हम लोग दुरुस्त करते थे, और वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी तक ठीक ठाक हैं, अभी तक उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये वंडरफुल इफेक्ट है, क्योंकि हमने उसकी वाइटलिटी को, जो असल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी इस शरीर के जीवन की चलन की, उसको स्ट्रांग किया था। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है ये साबित करने के लिए कि अगर हम उस इंडिविजुअल पावर तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएं, चाहे मेडिसिन से चाहे हिप्नोटिज्म से, तो हम बहुत सी बीमारियां जो इसकी वजह से पैदा हुई हैं, इसमें आए हुए वकार की वजह से पैदा हुई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। और इसीलिए ही हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। होम्योपैथिक तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, जो केवल फिजिकल तक अपना लेवल रखती है, उस तक अगर करते हैं तो फिर हम सेल तक रह जाते हैं। और उसकी परिभाषा भी मैंने आप सब लोगों को पहुंचा दी थी कि भाई ये एक लेवल है, लेकिन इस लेवल के लिए पाव सेल में जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जिसको हम आगे पैथोलॉजी बोलते हैं, इन सब चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हायर वाइटल पावर की है। और इसकी एग्जांपल मैंने आप सबके सामने रखी थी कि जितने भी डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं, मान लिया जाए टीबी के वार्ड में काम करते हैं, सभी को टीबी तो नहीं हो जाती, जितनी भी नर्से हैं सभी को टीबी तो नहीं हो जाती। या मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी ये कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो था सभी को तो नहीं हुआ, सभी ने वैक्सीन प्रोटेक्शन भी नहीं ली, सभी मर तो नहीं गए, हालांकि बहुत सारे लोग मर गए उस वक्त, कोविड-19 जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह ही बहुत सी चीजों, जब जितनी बीमारी, इवन इन्फ्लुएंजा भी जब महामारी के तौर पे आया था तो उस वक्त हजारों लोग कोविड की तरह मर गए थे इसी तरह। और आहिस्ता आहिस्ता कोई भी बीमारी अगर आती है, हमारी खुद की जीवन, जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी तो लोग जिंदा रहते थे ना, तब भी उनको बीमारियां होती थी, बेशक बहुत सारे लोग मर जाते थे, रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए साथ में कि बहुत से लोग बच गए थे, बच जाते हैं, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं, उनकी जनरेशन हम आगे चल रहे हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये सब चीजें साबित करती हैं कि फिजिकल से ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर की हर एक्टिविटी, चाहे तंदुरुस्ती की हो चाहे बीमारी की हो, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही है। और इसी तरह ही दूसरा फेज इस चीज का, ये एक फेज मैंने आपको सब बता दिया कि बीमारी या तंदुरुस्ती इस शरीर की, बेशक मटीरियलिस्टिक होते हुए हम लोग सिर्फ टिश्यू चेंज देखते हैं, हम लोग सब सेल में आई हुई चेंजेस ही देखते हैं, लेकिन इस आई हुई सभी चेंजेस के लिए, सबसे छोटी बात तो सेल है ना, सेल में चेंजेस देखते हैं, लेकिन इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारी कौन है, वाइटलिटी है। और उसका दूसरा पक्ष, दूसरा फेज मैंने आपके सामने रखा था दवाइयों के बारे में, हम हमारे पास सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि बीमार आ गया उसको हम दवाई देते हैं। अब जो दवाई देते हैं तो दवाई देने के पीछे अगर हम बारीकी से खोज करते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि दवाई के अंदर भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि हम दवाई कहते किसको हैं। अब बाजार में कोई चीज आप ले आए तो वो सब्सटेंस है, वेजिटेबल समझ लो। मैंने ग्रुप बताया थे आप सब लोगों को कि भाई अभी हम लोगों ने जो कुदरत ने दिया हुआ हमारा भंडार है ना दवाइयों का, जिसे हम दवाइयां बनाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे किसी भी साइंस वाले जो दवाइयां बनाते हैं उनके ग्रुप हैं, जितने भी वनस्पति से दवाइयां बनाते हैं उन सबको हम बोलते हैं वेजिटेबल ग्रुप, और जितने भी मिनरल्स हैं इस ब्रह्मांड में उनसे हम दवाइयां बनाते हैं तो उनको हम मिनरल किंगडम बोलते हैं। इसी तरह ही शरीर के जो लिविंग सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिक्रीशन तो वो है जो बॉडी के अंदर से तंदुरुस्त हेल्दी तंदुरुस्त टिश्यू से निकलता है, एक्सक्रीशन वो है जो वेस्ट के तौर पे शरीर से निकाला जाता है, जैसे पेशाब वगैरह हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह अंदर के जैसे थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है और अलग अलग हार्मोन है, इस तरह के अलग अलग सिक्रीशन है जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, और जो लिविंग बींग से दवाइयां बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सारकोड्स, और जो बीमार चीजें हैं और उनका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन से जैसे स्प्यूटम है, ट्यूबरकुलोसिस की स्प्यूटम है और इस सब से भी अभी चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं नोजोल्स। इसी तरह बीमारियों इसके अलावा भी एक मैंने ग्रुप आपको बताया था जो अभी ह्यूमन बीइंग की जानकारी में जिसको हम बोलते थे इम्पाउंडेरा भी दिया, उसे भी हम दवाइयां बुलाते हैं शक्ति, जैसे एक्सरे है, जैसे सन रेज है, जैसे मून रेज है, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें रेज हैं जिनका पता है हमें कि अगर हमारे शरीर में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हमारे शरीर में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। जैसे धूप में चले जाओ ना तो वो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाकर लगा जाओ, ऐसे नहीं जाओ जी, क्यों बोलते हैं, इसीलिए कि उससे इफेक्ट होते हैं ना। तो इसी तरह ही जितने भी हमने इस तरह के चीजें निकाली उनको हम बोलते हैं इम्पाउंडेरा भी दिया। अब इस सारी कहानी के पीछे हम चीज क्या, रेस तो अब दिखाई नहीं देते ना, दवाई तो दिखाई देती है ना कि ये मैंने कुनीन से बना ली है, ये मैंने पेंसिल बना ली है, ये मैंने टेट्रासाइक्लिन बना लिया, ये तो मटीरियल आप देख रहे हैं ना। इसी तरह ओपियम की बात है, मैंने ओपियम की एग्जांपल ज्यादा रखी थी क्योंकि सभी लोग आसानी से समझता है, कोर्स सभी लोग समझते हैं, अफीम सभी लोग समझते हैं, तो मैं आसानी वाली वो एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि भाई पहली तो बात ये है कि कोई सब्सटेंस आपने बाजार से ले लिया वो एक वेजिटेबल है या वो एक मिनरल है या कुछ भी है, अब जब उसे हम दवाई बनाते हैं तो फिर हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं ये मेडिसिनल सब्सटेंस है, इससे दवाई बनती है, और उसके बाद फिर जो दवाई बन जाती है तो सवाल पैदा होता है कि दवाई कहते किसको है। हम दवाई उसको बोलते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है या हमारी बॉडी के नॉर्मल चलन को कोई सब्सटेंस कैसे तब्दील करता है, कैसे इफेक्ट करता है, जैसे वो लेक्चर करने वाली बात मैंने आपको बताई थी। उसी तरह ही इसका मतलब ये हुआ, मैं वही लाना चाहता हूं आपको, कि किसी भी सब्सटेंस का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम उस दवाई का इफेक्ट समझते हैं, और जब हम इसकी बारीकी से खोज करते हैं तो हम वैसे साइंसों की बात तो मैंने लंबी हो गई कि भाई ये अगर नेचुरल फार्म में इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, और ये नेचुरल फार्म वही पोस्ट वही अफीम है उसे पैसे दी मार्फिन निकाल दिया तो हम बोलते हैं ये एलोपैथिक हो गया। अगर इससे भी ऊपर अब जाएंगे तो एक्चुअली क्या है, हर एक सब्सटेंस में जो चीज हमारे शरीर को इफेक्ट करती है ना किसी भी दवाई की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको हम उसका बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। अफीन या पोस्ट के अंदर क्या है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो मटीरियल पोस्ट की बात नहीं कर रहे हम, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर होगी ना जिस जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी, फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे है। बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाई है डबल हो गई है, अफीम खाई है एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है, फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी ना कहें हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट करना है ये कहना चाहिए, ये ज्यादा दुरुस्त लफ्ज होगा, और उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ना वो हर सब्सटेंस का अपना अपना वक्रा है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी से मैच नहीं करता, अलग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप सबके सामने पहले प्रोग्रामों में रखी थी कि जैसे सुहागा है बोरेक्स ग्राम, जैसे चीनी है मीठी है, साल्ट लून है, सोडियम क्लोराइड ये भी चीज वाइट है, सभी चीजें तो वाइट है, फटकरी है वो वाइट है, और लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे ना, लो चून का मिश्रण लगा के करो जी, कैसे करोगे जी। तो इसी तरह ही ये सब चीजें आ गई पूरी पीस कर रखी हुई हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंसों के लिए फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाई देंगे, यार इसको क्या करें। सो अल्टीमेट जो साइंस है ना, मेडिकल कल ही साइंस ने ये इसका डिस्कर्स निकाला, ये नतीजा निकाला कि एक और तरीका कार है जिसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं वाइटलिटी पे जाना चाहता हूँ, याद ये रखना कि हमारा सिर्फ पॉइंट वो है कि वाइटलिटी पर पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सभी फिजिकल भौतिक सभी केमिकल रासायनिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए उसके बाद भी कुछ सब्सटेंस ऐसे लगे कि यार इनकी रिएक्शन भी वैसे ही है, इसका दिखने का ये इधर उधर का ये सब एक ही तरह है। तो फिर उसके बाद एक वे आउट निकाला गया कि हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज किसी अगर फटकरी नमक से अलग है, अगर फटकरी सुहागे से अलग है तो क्यों अलग है। तो उसको जो भी सब्सटेंस हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हर आदमी पे इंडिविजुअल होगा। जो पहली बात मैंने पॉट्स की आपके सामने की थी कि हरेक पॉट में अलग अलग रंग है, ये साबित करने के लिए कि हर बंदा इंडिविजुअल है और उसमें एक ही तरह का रंग हमने मिलाना शुरू किया, बोरक्स दिया, फटकरी दी, साल्ट दिया, तो हर चीज जो है हमारे शरीर को इंडिविजुअल तौर पे अलग तौर पे इफेक्ट करेगी। फटकरी की तरह लून नहीं करेगा, नमक की तरह गोरक्ष नहीं करेगा, ये अलग अलग तौर पे हमारे शरीर पे असर करेगी। और असर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल शरीर पे, असर ये है कि आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ जाएगी, आपकी डिजायर एवर्शन में तब्दीली आ जाएगी। तो ये क्या था जिसको हमने कहा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एंड दोज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल। किसी भी चीज की वो जो माइन्यूट पावर है, जैसे मैं हिप्नोटाइज की बात कर रहा था, वो जो माइन्यूट पावर है जो हमारे उस वाइटलिटी पे जो इनविजिबल पावर है उस पे इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ही दवाइयां का मटीरियल योग जो है उसका लेवल जो है हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है, उसके जो इफेक्ट बाद में पैदा होने वाले हैं वो हमारी वाइटलिटी से पैदा होते हैं कि ड्राइनेस हो गई है जी, अभी खाई थी ड्राइनेस हो गई, अब तो कब्ज हो गई। इस तरह के जितने भी सिम्टम हमारे पैदा होते हैं फिजिकल लेवल पे जो अफीम ने चेंज कर दिया सभी लोग जानते हैं। फिजिकल लेवल पे आपने कोई नशा खा लिया जो शरीर में पैदा होता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैदा होने वाले इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपकी चीज का इफेक्ट ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डीकोड करके हायर लेवल तक वाइटलिटी तक पहुंचाया। अब वाइटलिटी क्या फील कर रही है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम वो जानना चाहें, अगर वो हम समझ जाएं कि हरेक दवाई का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, तो फिर अगर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की परिभाषा मींस सिम्टम्स हाउ इट इफेक्ट्स अवर बॉडी, हमारे शरीर को वो कैसे असर करती है, अगर वो हम जान लेंगे, वो जानेंगे तो तभी ना लिविंग बींग जीवन है बंदा, उस जीवित बंदे को देंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स बजाय गिनी पिग पे, बजाय लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करने के बजाय अगर हम लोग यही लिविंग बींग लिविंग ह्यूमन के करेंगे, तो फिर हमें उनके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पता लग जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिविजुअल होंगे, और जो जिनका जो करेक्टर है वो उसका इंडिविजुअल करेक्टर होगा कि ये रंग हमने पॉट में मिक्स किया तो असल इसका करेक्टरिस्टिक क्या था और असल इसने हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट किया अलग अलग लोगों में। अलग मैं सवाल और आसान कर दूं, कुनीन आप सभी लोगों को दे दें, कुनीन आप सारे सभी समझते हो ना, कुनीन आप तीन चार आदमी को अलग अलग दे दो, अगर फील करोगे कि जो उसके फिजिकल सिम्टम हैं वो तो सभी में एक तरह के आएंगे, लेकिन उसके जो हायर लेवल के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं, फीलिंग डिजायर अवर्शन, कुनीन खाने के बाद वो सबका वक्रा अलग अलग होगा। तो अगर हम हर बीमारी में हर एक दवाई को इस्तेमाल करते हुए उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को साथ में ले लें या ये समझ लें और एक्टिव भूल जाए बीमारी को, भूल जाए शरीर को कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, ओ कैंसर हो गया, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, ये कैसे करेगा, कैसे ठीक होगा, या बहुत बड़ी चीज है जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी में वो हम देख लेते वो कैसे ठीक होगी, तो हमारे लिए परेशानी हो जाती, फिर हम सर्जरी की तरफ दौड़ते हैं या काटो इस गुफा को। पर जिस चीज ने वो चीज पैदा की है, जो डाइवर्टेड है, जो चीज है फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में आ गई है और उसको हम काट कर फेंकेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बीमारी को रूट आउट कर दिया, क्योंकि वो हायर लेवल से शुरू हुई थी, उस हायर लेवल को अगर आप समझ के ठीक करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है और वो हुई है, क्योंकि हर बंदा एक्सपेरिमेंटर है, हर बंदा नए तौर पे अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट हुए वो पढ़ते, उसी के आधार पे फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। सो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है, ट्यूमर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को इरेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना। तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को जो वाइटलिटी को सेट नहीं बैठी वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की कोशिश करती है और आपको सिम्टम के जरिए बताना चाहती है कि ये चीज है। अब इस उल्टी को तो वो उसे नहीं ना मिलाएंगे, अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया तो आप नहीं खाना, ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए या कुछ ऐसा हो गया तो इसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी, अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो हैं कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाएं पे उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकती है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पलें दी हैं, यहाँ लोकल अमेरिका की एग्जाम्पलें दी हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मैलिग्नेंट हो गए, जिनके एक एक दो दो बार सर्जरी भी हो गई, वो लोग भी ठीक हुए हैं। वो लोग भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक हुए हैं? कि हमने उसके एसेंस की मैच की। क्या दे रहे हैं हम? हमने उसकी वाइटलिटी के जो सिम्टम्स थे, ये तो एक्सरे ने बता दिया कि भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, पैथोलॉजी है, चेंज है, सब कुछ हो गया है। अब डॉक्टर लोग जो सर्जरी करने वाले, भी मैंने आपको बताया था कि सर्जरी भी हो चुकी, दो बार भी सर्जरी हो चुकी, फिर दोबारा इरप्ट हो गया। तो क्या हो गया? मतलब हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि बिल्ली तो आ रही है, कबूतर बोलता हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये दिखाई ही ना दे, हम वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इंडिविजुअल कैरेक्टर कि वो वाइटलिटी जो इसके अंदर जिंदा है, जिसने ये ट्यूमर पैदा कर दिया है, जिसको हम आज मैलिग्नेंट कह रहे हैं, एकदम तो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है ना, और वो एक भाषा में आपको बता रही है, अगर आप वो भाषा समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फीलिंग डिजायर अवर्शन अगर आप समझ रहे हैं, और फिर उसको उस दवाई के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि आप जो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना, जिससे हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं। अब जब हैनीमैन ने ये काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ 24 मेडिकेशंस का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के ऊपर प्रूव किया था। अब तो हमारे पास 3000 से भी ऊपर मेडिसिन है और उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम जानते हैं। और अगर कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर ही मैच करके के क्या डिजायर है, कि वाइटलिटी क्या चाहती है, अगर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी तरह की उसको हेल्प दी जाएगी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हमें या तो दर्द तकलीफ या उम्र समा नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि भाई अब इसको वाइटलिटी को ठीक करते करते किसी चीज को तो लगेंगे 6 महीने, अब जीवन इतना समा नहीं देता या तकलीफ इतना समा नहीं देती, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं, वो जल्दी वाला ठीक कर देते हैं। तो वो जल्दी वाला टीका करते हैं लेकिन फिर दोबारा इरप्शन होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वही चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल उसका निवारण नहीं किया होता, और जब तक हम असल निवारण नहीं करेंगे वही बीमारियां बार बार आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपका उसी तरह का उपचार होता रहेगा, और ये एक सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। समझने की जानने की जरूरत हमें ये है कि हमें दवाइयों के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानने हैं, और हमें वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी उनकी भी वही परिभाषा है जो हमारी वाइटलिटी की परिभाषा है। उसको दवाई को देने के बाद शारीरिक सिम्टम भी आप देखते हैं, मेंटल सिम्टम भी आप देखते हैं। मेंटल कहाँ से है? उस वाइटलिटी से है। क्या फील करते हैं आप? तो इस मैंने आपको समा थोड़ा रह गया, मैं आपको याद करा दूं कि मैं हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने सिम्टम आपके ले लिए। ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने आपके सिम्टम्स ले लिए, सिर्फ मेंटल सिम्टम, कि आपकी मेंटल फैकल्टी क्या बोलती, वाइटलिटी आपकी क्या, फिजिकल सिम्टम बीमारी आपको कुछ भी थी, आप पेट दर्द कह रहे थे, आप रसौली कह रहे थे, आपको उसको एक तरफ रख दीजिए। मैंने आपके मेंटल सिम्टम का आपकी वो बोली जो आपकी वाइटलिटी बोल रही है, मेरा जी कच्चा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। सो मेरा मन नहीं करता, नींद नहीं आती, मेरे भूख नहीं लगती, मेरा बात करने को मन नहीं करता, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद उसी आदमी का एक बाल मैंने दिया। ये एक बार नहीं किया मैंने, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। एक बाल लिया, रूट आउट किया रूट से, और वही दवाई जो मैं समझता था कि इसकी वाइटलिटी के मुताबिक है, उसको हमने अपनी तली के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर, और वही जो बाल था उसके साथ चुहाया, वो पेशेंट जो था मेरे टेबल के, मेरी कुर्सी मेरा टेबल टेबल के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, और अल्टीमेट आफ्टर सम टाइम्स उसी ने वही सिम्टम मुझे बताने शुरू कर दिए जो सिम्टम उस मेडिकेशन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के थे। तो वाइब्रेशन इस तरह भी होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, तब तक इस पर विश्वास नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, तब तक आपको हिप्नोटाइज पर भी विश्वास नहीं होगा जब तक आप खुद इस चीज को नहीं करते, तब तक आपको ये जो होम्योपैथिक सिद्धांत है या इसकी दवाइयां जो वाइटलिटी के तौर पे पावर के तौर पे हम देते हैं, पावर का मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मींस जो आपकी वाइटलिटी के तौर पे, क्योंकि नमक हवा में नहीं घोला जा सकता ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन घुला जब ये अमोनिया गंध उसमें आनी शुरू हुई तो साबित ये होगा कि ये घुल गया उसमें। जब आप वो समझना शुरू करेंगे हर बीमारी में, हर इंडिविजुअल बंदे में उसकी जो डिजायर वर्शन फीलिंग्स दिखना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रेकर्ड है ना भाई, अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रेकर्ड आ गया कि हम हर चीज को उसका क्या इफेक्ट हमारी वाइटलिटी पे हुआ नोट, इवन एलोपैथिक स्टाइल में भी बेशक उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन हर दवाई चाहे पेंसिलिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, क्लोरोफेनिकल कुछ भी दो, लेकिन उसके बाद शरीर के इफेक्ट के बाद अगर हायर लेवल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वाइटलिटी इस दवाई को खाने के बाद क्या कह रही है, और यही उसके फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वाइटलिटी के ऊपर वही उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं। यानी मैंने तो क्विनीन के साथ शुरू किया था ना कि क्विनीन देनी शुरू की और उसके बाद देखा कि इसके पास कैसे सिम्टम पैदा होते हैं, मलेरिया वाले सिम्टम तो पैदा हो गए, वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्विनीन, इसका मतलब क्विनीन मलेरिया भी पैदा कर सकती है, जो आदमी किसी को कुर्सी पे बिठा सकता है वो उसको कुर्सी से उठा भी सकता है, दोनों की पावर बराबर है, ये तो वो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उसके बाद ऐसा था कि इस बंदे में इंडिविजुअल फीलिंग क्या पैदा हुई, जहां से उसने कहा कि नहीं सभी मलेरिया के केसेस के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, फिजिकल लेवल पे तो ठीक है लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या इसका क्विनीन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो उससे पे मैच नहीं करता। तो इस तरह हम मेडिकल साइंस के इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर अपना लें, अगर सिर्फ यही देखना शुरू करें हर बीमारी में, ये ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत देर वाला काम है, ये कौन करेगा, क्योंकि अगर आपको क्योर की परिभाषा का पता हो ना तो फिर आप ये समझेंगे कि टेम्परेरी सप्रेस करना, टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करना आपकी डिमांड हो सकती है, अगर कोई चीज अनबियरेबल है तो उसको टेम्परेरी तौर पे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इरेडिकेट करना चाहते हो परमानेंटली तो फिर आपको हल वहीं से करना होगा, वहीं से ये ठीक होगा टेम्परेरी सफाइस करने। हाँ ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेन बर्दाश्त नहीं करते और उस पेन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग ने क्या किया है, अब जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या जो टेम्परेरी वक्ती तौर पे ज्यादा तकलीफ दे तकलीफ है उसको मैनेज करते हैं, उसको हमने बोल दिया एलोपैथिक है। सबस्टांस वही है जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उन्हीं से उनको दवाई बनानी है, उन्हीं से हरेक सिस्टम वाले को दवाई बनानी है, लेकिन हमने उसकी डिवीजन बना दी कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को किस रूप में, जो एक ड्रग सब्सटेंस की जो पावर है, हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, वो जो पावर है उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं या उससे माइन्यूट रूप में इस्तेमाल करते हैं, अफीम खा ली या पोस्ट खा लिया तो हम बोलते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है, और मैं मॉर्फिन पैथेडीन निकाल दी तो फिर हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो एलोपैथिक दवाई है, और अगर मॉर्फिन पैथेडीन से हम उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से भी ऊपर जाते हैं तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हरेक दवाई जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके इस तरह के इफेक्ट्स महसूस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं कि ये ऐसी करते हैं। और अगर उन्हीं रिकॉर्डेड के बेस पर भी हम किसी का ट्रीटमेंट करना शुरू करें और उसी रिकॉर्डेड बेस पर ही हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस करनी शुरू करें, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की डायग्नोसिस करने, वो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, वो इंडिविजुअल का डायग्नोसिस होगा। अगर बीमारी को छोड़कर बीमारी का नामकरण तो हम कुछ एक सिम्टम से लेते हैं ना, वी टेक फ्यू सिम्टम्स इन टू कॉन्सिडरेशन टू डायग्नोस डिजीज, बाकी शरीर को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम वाइटलिटी के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेकर उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने का हमारा तरीकाकार होगा। तो आज का समा मेरा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किस बीमारी से जूझ रहे हो, ट्रीटमेंट करवाते थक गए हो, तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कोई फीस नहीं है कंसल्टेशन की। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो 4086871899। और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ये करवाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 4086871899। जाते जाते ये गुजारिश फिर आपसे करता हूं कि भाई अगर इन प्रोग्रामों में आपको कोई लगे कि भाई जानकारी की बात है, अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये बात और लोगों तक भी पहुंचाएं। वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, वो यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सबरंग रेडियो स्टेशन में आ सकते हैं, वो रेडियो प्रभाग में आ सकते हैं, कहीं भी आप रोजाना इन प्रोग्रामों को 5 से 6 5 टू 6 PM कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप सुन सकते हैं। और हम लोग जीवन की ये चलती हुई यात्रा अब यहां तक ले चले हैं कि अब इस शरीर की बंतर के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हेड से शुरू करेंगे हम लोग, सिर क्या है, बंतर इसकी कैसे बनी, इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है, और उसके बाद अगर ये बीमार पड़ता है तो कैसे पड़ता, हम फिजिकल की बात करेंगे। वो जो इंडिविजुअल बात मैंने आज की है ना, वो उससे हाई लेवल की बात है, ये ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो चलन चल रहा है फिजिकल का, वो बात मैंने बहुत बार कर दी आप सबके सामने कि हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी साइंस थी ना पीछे, वो उस इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंचने की वो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दी हमने, जो नर्वस देखकर ही बता देते थे कि तेरे तो फिरनी में नुक्स है, तेरे तो फलानी जगह नुक्स है, अब वो छोड़ आए हैं। लेकिन जो भी अभी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस शरीर के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस अंग में कोई बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, इसकी फंक्शनिंग की है, फंक्शन कैसे चलती है, उसमें रिकावट कैसे आती है। सो ये सब प्रोग्राम अब आगे से चलने शुरू होंगे। कल से ये प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम होगा वो अंग्रेजी में होगा, दूसरा फिर पंजाबी में होगा और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम हिंदी में, क्योंकि हरेक भाषा समझने वाला इन चीजों को समझ सके, हरेक आदमी ये समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे और वो भी इन प्रोग्रामों को सुने और फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाए। रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, सत श्री अकाल।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया गल्ला जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी,
0: शुक्रिया,
2: थैंक यू जी, मन साहब
1: जी, डॉक्टर साहब थैंक यू,
0: थैंक यू जी, मेहरबानी,
2: थैंक यू दोस्तों, ताडा भी श्रोते हो जेडे प्यार ना सुन दे हो, बड़ी मेहरबानी, फिर अगले प्रोग्राम तक मिलते हैं जी, सत श्री अकाल।

0: ਸਾਰਿਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਸੋਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ।
0: ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ ਖੜੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਆਜ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਮੇ
0: ਜੀ,
1: ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਜ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕਾ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੇਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸੇ 6 ਬਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਸਬਰੰਗ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸਮੇ ਹਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਨ ਸਬ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਸਿਹਤ ਕਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਾ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ, ਯੇ ਬਣਾ ਕੈਸੇ ਥਾ, ਇਸ ਚਲ ਕੈਸੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਯੇ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵੋ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਤੋ ਬਾਂਟਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਬਾਂਟੋਗੇ ਉਤਨਾ ਬੜੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਬਾਂਟੋਗੇ ਉਤਨਾ ਬੜੇਗਾ। ਸੋ ਵਹੀ ਨੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੇ ਤੋ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕੈਸੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੇ ਯੇ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਵੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਹਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਚੈਸਟ ਮੇ, ਔਰ ਚੈਸਟ ਮੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਥੇ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੋ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਏ ਥੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਾਮਨ ਪਾਥਵੇ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜੋ ਵੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਆਰਟਰੀਜ ਹੈ, ਵੇਨਸ ਹੈ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਨਾਲੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਕੀ ਨਾਲੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਟ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟੈਂਡ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇ ਅਯੋਟਾ ਕਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੈਰਿੰਗਸ ਕਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਈਸੋਫੇਗਸ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਯਾ ਹਾਰਟ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਯੇ ਸਭੀ ਕੇ ਸਭੀ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਧਰ ਸੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਸੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਇਧਰ ਸੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਅੰਗੋ ਕੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਈਸੋਫੇਗਸ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਯੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਬੇਚਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਕਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਤੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਮੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਮੇ, ਯਾ ਸ਼ਾਮ ਮੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ, ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਮਹਾਰਾ ਕਾਮ, ਤੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਮੇ ਰਾਸਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੋ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਬਾਕੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਯੋਟਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਹੈ, ਯਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਯਾ ਫੇਫੜੋ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੋ ਯੇ ਇਸਸੇ ਰਾਸਤਾ ਲੇ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਸਮੇ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਘੁਟਨ ਆ ਜਾਤੀ ਕਿ ਤੁਮ ਥੋੜਾ ਹਟੋ ਯਾਰ ਪਾਸੇ, ਵੋ ਉਸਕੇ ਪਾਸੇ ਅਲਗ ਹਟਨੇ ਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸਮੇ ਟੇਢਾਪਨ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਨੇ ਨੋਟ ਕੀਏ ਥੇ ਕਿ ਇਸਮੇ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਸੇ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਇਸਸੇ ਅਲਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਓਟਾ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਚਾਰ ਮੇਨ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਈਸੋਫੇਗਸ ਕੋ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਮੁਝੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਯੇ ਛਾਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਮੀਡੀਆਸਟਾਈਨਮ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਯੇ ਮੀਡੀਆਸਟਾਈਨਮ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਇਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। उसके बाद हमने ये आपको बताया था हार्ट के बारे में और हार्ट के मसल्स कैसे हैं, हार्ट के चैम्बर कितने हैं, हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट का सर्कुलेशन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे इसमें सर्कुलेशन चलन होता है, इसके जो वाल्व्स हैं उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीजें मैंने आप सब लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में बता दी, बहुत से प्रोग्रामों में बता दी कि हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, तीनों लैंग्वेज में मैंने ये चीजें एक एक प्रोग्राम में बता दिया कि हार्ट को, क्योंकि हार्ट को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, है भी इम्पोर्टेंट ऐसा ऑर्गन है ना, तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने इसके लिए आपको डिटेल बार बार दोहरा दी। फिर भी अगर किसी सज्जन मित्र को ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे तो और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो वो अलग से फोन करके पूछ सकता है 4086871899। किसी भी वक्त जितनी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी सिस्टम में, चाहे ब्रेन की बोलूं, चाहे गले के बारे में बोलूं, चाहे छाती के बारे में बोलूं, या एब्डोमेन के बारे में बोलूं, किसी भी वक्त किसी को आपको कोई प्रॉब्लम है या उसके बारे में कोई शंका है या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि और जानकारी मिले, तो आप किसी भी वक्त मेरे से फोन पे बात करके और उसका हल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये सब चीजें जितनी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे ब्रेन में सेट की हुई है, इनके लिए मुझे किताबें फरोलने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। हाँ, विषय जो मैंने करना है वो ठीक मुझे देखना पड़ता है कि आज मैंने क्या करना है। जैसे हम लोग छाती पर पहुंचे हैं तो छाती के जो मेन मीडियास्टाइनम को कवर कर लिया, हार्ट को कवर कर लिया, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है यहाँ पर वो चेस्ट है, सॉरी लंग्स है। तो लंग्स के बारे में बात करते हुए आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, हालांकि हमारा जीवन ही हवा है, दम आया तो हम हैं आदमी हैं, दम नहीं आया तो हम डेड बॉडी हैं। सो वो दम को चलाने वाला जो ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स। तो शरीर में जो लंग्स है ना वो दो है, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है, और आम लोग सभी ये तो जानते ही हैं, लेकिन इसकी और बहुत सी बारीकी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के प्रोग्रामों में, कि एक तो इसका कलर पिंक होता है, एक ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं। और ये जो बातें हैं बेशक आम आदमी की जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग एटॉप्सी करते हैं या जो लोग बायोप्सी करते हैं उनके लिए, जो डॉक्टर लोग जो जिंदा पीस लेकर चेक करते हैं कि उसमें क्या खराबी आ गई है उनके लिए, या एटॉप्सी डेड बॉडी की जब छानबीन करते हैं ये कैसे मरा क्या हुआ जो वो होता है उसको एटॉप्सी बोलते हैं, तो वो एटॉप्सी जब करते हैं उनके काम की चीज है कि कैसे मरा क्या हुआ इसमें रंगत कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इसका जाना जाए कि रंग नॉर्मल रंग क्या है। तो नॉर्मल रंग इनका पिंक होता है, स्ट्रक्चर उसका जो स्पंजी होता है सॉफ्ट होते हैं, और आमतौर पे हमने बार बार कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये प्रेस किए रहते हैं, इसमें कोई चीज नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आना शुरू होता है और जो हमारे एनवायरमेंट का जो 480 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर उस पर पड़ता है तो एकदम उसकी चीख निकल जाती है ऑटोमेटिक, और उसी चीख की वजह से बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है, और बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है और ये फूल जाते हैं, ये फूल जाते हैं। केवल ये ही नहीं फूलते, इनके साथ और बहुत सा स्ट्रक्चर चालू हो जाता है जो पहले बंद था। जैसे मैंने कहा कि सारे शरीर का खून इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में हार्ट के ऊपर वाले खाने में आता है, और उसके बाद वहां से फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर एक नाली निकलती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और वो फेफड़ों में लेकर जाती है। इसमें जो वाल्व लगा हुआ है वो बेचारा दरवाजा इस टाइप का है, आप ऐसे तो दरवाजा हो ना इधर भी जाओ उधर भी जाओ, लेकिन ये दरवाजा एक ही तरफ खोलता है। जितने भी हार्ट के अंदर सेमीलूनर वाल्व है वो सभी एक ही तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ बंद हो जाते हैं। तो इसमें एक सेमीलूनर वाल्व लगा है जिसकी वजह से ये खून जितना भी राइट वेंट्रिकल में आया वो फेफड़ों में जाना शुरू होता है, तो पंप हुआ फेफड़ों में गया वापस नहीं आ सकता, उसमें वापस दूसरे पासे से शरीर से जो आ रहा है खून वही आएगा हार्ट में। तो इस तरह का जो चलन इस चीज का है फेफड़ों का, ऐसे इनको खून मिलता है। अब उसकी जो अंदर की डिस्क्रिप्शन है ना वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। एक तो ये मैंने कहा कि लंग्स दो होते हैं, एक को राइट लंग बोलते हैं एक को लेफ्ट लंग बोलते हैं। इनकी जो शेप होती है स्पंजी होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ये हमने बता दिया आपको। इसकी जो शेप अगर देखें बाहर से तो बाहर से जो शेप इसकी, जैसे पिरामिड है ना, पिरामिड के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं जी, पिरामिड की तरह कोई ऊपर को चोटी है, बीच को जो चौड़ाई है बढ़ती जाती है, नीचे बेस आ जाता है। लेकिन बेस की एक इसकी और खासियत है, बेस इसका डोम शेप है। ऐसे ना कि बेस ऐसे नहीं कि लाइन सीधी आ गई, ऐसा नहीं है, ऊपर त्रिकोण है, कोण बना हुआ टॉप में, जो वहां पर हमारी हसली की हड्डी है उसके नीचे आता है, और नीचे जैसे जैसे आता है ये थोड़ी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जैसे नीचे इसका बेस आता है तो बेस के अंदर गुंबद की तरह है, जैसे मंदिर में या गुरुद्वारों में गुंबद ऊपर बने होते हैं ना तो अंदर से खाली होते हैं, तो इसी तरह जो अंदर का जो बेस है नीचे का वो गुंबद की तरह है। और ये क्यों है, इसलिए कि राइट साइड में फिर पसलियों के नीचे ही, क्योंकि इसका एरिया तो पसली के अंदर अंदर है ना, अपनी जो रिब्स है उनके अंदर अंदर है, और उसके राइट साइड में हमारा लिवर होता है, बहुत ज्यादा पोर्शन लिवर का जो राइट साइड में होता है, हालांकि कुछ जो है लेफ्ट लोब जो है वो बाई तरफ भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, और बाई तरफ स्प्लीन होती है, तिली जिसको हम बोलते हैं वो होती है। तो इसलिए अंदर से बेस जो इसका है फेफड़ों का वो डोम शेप इसी तरह का बना हुआ है। दूसरा, इसकी शक्ल में एक अंतर है कि जो राइट लंग है ना वो हाइट में कम है। हाइट में कम क्यों है, क्योंकि लिवर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नीचे है, कवर कर लेता है पसलियों को, और वो बहुत बड़ा पोर्शन नीचे पसलियों का जो कवर कर लेता है तो फिर भाई इसके लिए स्पेस ऊपर कम बच जाती, लेकिन ऊपर वाली स्पेस बेशक थोड़ी बचती है लेकिन उसके भी तीन पोर्शन है, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, तीन लोब। लोब का मतलब है हिस्से, और अलग अलग हिस्से, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट उनका कोई लेना देना नहीं। अगर वो जो संबंध है अंदर ब्रोंकस से ही है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको, सो डायरेक्ट इनका कोई संबंध नहीं होता। और जो हमारा बाया लंग है, बाया फेफड़ा है तो उसकी भी अजीब रचना कि वो होता तो थिन है, पतला होता है, लंबाई में राइट लंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि स्प्लीन बहुत छोटी है, थोड़ा कवर करती है पसलियों का, और ऊपर से लेकर हमारी क्लेविकल की हड्डी से लेकर नीचे तक जाते जाते काफी राइट लंग से लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें एक और है, मीडियल साइड, मीडियल साइड हम उस चीज को बोलते हैं जो किसी के सेंटर के नजदीक होती है, और इसका दूसरा नाम ये होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो दूर होता है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। मैं और आसानी से समझा दूं आपको, अगर हमने हाथ का बात करने हो तो हाथ बॉडी से डिस्टल पोर्शन है, दूर का हिस्सा है, शोल्डर है ये हमारा मीडियल पोर्शन है, मिडल का पोर्शन है, इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो फेफड़ों की बात अंदर आ गई तो फेफड़ों का जो पसली, जो हमारी स्टर्नम है सामने छाती की हड्डी है, जो इसके नजदीक है उसको हम इसको मीडियल पोर्शन बोलेंगे या प्रॉक्सिमल हिस्सा बोलेंगे, ठीक है। और जो दूर का बाहर का पसलियों के साथ लगा हुआ इनका हिस्सा है बाहर का, उसको हम डिस्टल पोर्शन बोलेंगे। तो ठीक है, ये राइट साइड में जो मीडियल पोर्शन है, लेफ्ट लंग्स का जो मीडियल पोर्शन है वो अंदर से खुरचा हुआ है, ऐसे जैसे किसी को बीच में काट दिया हो। वो काटने का मतलब ये है कि उस हिस्से में हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट ने बहुत सारा हिस्सा फेफड़ों का ले लिया है, वो बाईं तरफ ले लिया है। इसलिए मैंने ये कहा था कि जब हार्ट की बात मैंने करी थी तो मैंने ये कहा था कि हार्ट की जो बाउंड्री है बेशक ज्यादा बाईं तरफ है, हमारी हार्ट में ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है ना इससे सीधे 3.5 इंच अगर हम नीचे आते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की आखिरी बाउंड्री के तेरी हद यहां पर है भाई, वहां तक हार्ट की बाउंड्री होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको हम बोलते हैं। और दाहिने साइड में हम बोलते हैं कि दाहिने साइड में तो हार्ट नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है, जैसे हमारी सामने की छाती की जो हड्डी है ना इसको हमने स्टर्नम कहा था, इस स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में भी हार्ट को जगह मिलती है जो राइट दाहिने फेफड़े से मिलती है। तो मतलब इस तरह की ये इसकी हार्ट की पोजीशन है जो हम बाहर से भी जान सकते हैं, अगर किसी की छाती को देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बाहर पेंसिल अगर लाइन लगानी हो तो हम लगा सकते हैं कि ये हार्ट की बाउंड्री यहाँ यहाँ पर इसकी है। तो मतलब क्या हुआ कि बाईं तरफ का फेफड़ा वो इसी तरह नीचे से कर्व्ड बना हुआ है, कर्व की तरह है, क्योंकि वहां पर हार्ट को एडजस्ट कर दिया गया। तो दूसरी एक अलग बात यह है कि लेफ्ट फेफड़े में दो लोब होते हैं, राइट में तीन, बाएं में दो लोब होते हैं, और दो लोब जो होते हैं उनमें भी पोर्शन जो है नीचे वाले लोब का ज्यादा पोर्शन हार्ट ने कवर किया है। एक और बात इसमें अजीब बात है कि ऊपर वाला जो लोब है उस लोब से एक छोटा सा पोर्शन अलग नीचे को आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअला, लिंगुअल बोलते हैं जीभ को, लिंगुआ जीभ का दूसरा नाम है और लैटिन वर्ड है। तो लिंगुआ का मतलब है जीभ, जैसे हमारी जीभ होती है इस तरह का एक छोटा सा पोर्शन लेफ्ट लोब के ऊपर वाले लोब, लेफ्ट लंग के ऊपर वाले लोब से आकर हार्ट को और सेपरेट कर देता है फेफड़ों से कि भाई ना ना ना तुम आगे नहीं आना, यहाँ पर ये बाउंड्री है इसकी, और वहां पर भी फेफड़ों का थोड़ा हिस्सा है जिसको हम लिंगुला बोलते हैं। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई है तो इसके भी तीन ही है ना, नहीं तीन नहीं है, लोब तीन नहीं है, क्योंकि लोब की जो डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बताने वाला हूं कि जितने भी लोब है ना फेफड़ों में, राइट में हमने तीन बताया, लेफ्ट में हमने दो बताए और एक ये लिंगुला बताया, इसको लिंगुला को हम लोब नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जो दूसरी डिस्क्रिप्शन है ना वो ये पूरी नहीं करता। वो क्या है कि जितने भी ये फेफड़े हैं, या वैसे भी मैंने ये कहा था कि जितने भी अंग हैं शरीर में सभी अंगों को कुदरत ने एक गिलाफ में लपेट कर वहां पर रखा हुआ है ताकि उनको पता रहे कि मेरी आखिरी बाउंड्री ये है। और इसी तरह ही फेफड़ों को भी ऊपर से कवर किया हुआ है और उसका नाम है प्लूरा। प्लूरा एक गिलाफ की तरह है, जैसे गिलाफ रजाई के ऊपर हम चढ़ाते हैं ना, तो दो लेयर होते हैं उसके अंदर हम रजाई को डाल देते हैं, सिरहाने के दो लोब होते हैं उसके अंदर सिरहाना डाल देते हैं, तो इसी तरह ये इसके दो लोब होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। जो हार्ट के ऊपर था उसको पेरिकार्डियम में कहा था हमने, और इसको हमने प्लूरा कहा था। और ये जो प्लूरा है इसके दो पर्दे मैंने आपको बताया, एक तो बाहरी बाहरी पर्दा है जो पसलियों के साथ लगता है, दूसरा पर्दा जो है वो हर एक लोब के अंदर जाता है। यही डिफरेंशिएशन हो गया कि ये तीसरा जो मैं लिंगुला बताया है ये लोब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो मेम्ब्रेन जा नहीं रहा, जो अंदर का मेम्ब्रेन है इस प्लूरा का वो हरेक लोब के अंदर बाहर जा रहा, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर रहा है कि ना भाई तू दूसरे लोब के साथ अटैच नहीं होगा, ना तेरा अलग बाउंड्री है उसकी अलग बाउंड्री, आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर का लेयर जो है वो फेफड़ों के अंदर सेपरेशन करता है उनको, लेकिन इस लिंगुअल को तो इस तरह का कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए ये एक सेपरेट सा चीज हो जाती है सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर कई प्रॉब्लम हार्ट फेफड़ों को आ जाए तो कम से कम हार्ट उससे भी जरूरी है। खुराक बेशक हमारे घर में पड़ी रहे और हमको खाने नहीं को देगा तो वो कैसे होगा, तो हार्ट को, हार्ट ने तो सारे शरीर को खाने के लिए देना है, इसलिए इसको कोई रुकावट नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने एक छोटी सी जीव की तरह का छोटा सा पोर्शन लगा दिया। सो मैं ये कह रहा था कि हर एक फेफड़े के ऊपर कवरिंग किया हुआ है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, बाहर का जो उनका लेयर है वो पसलियों के साथ साथ पूरे को कवर करता है, अंदर का जो लेयर है वो हर एक लोब के अंदर, यहाँ पर लोब का हिस्सा है इसके अंदर कवर करेगा, फिर बाहर आ जाएगा फिर दूसरे लोब को कवर करेगा, ताकि लोब का आपस में कोई कनेक्शन ना रहे। और अगर इनका कोई कनेक्शन है तो वो जो सांस की नली ऊपर से आ रही है जिसकी बात मैं अभी करता हूँ, वो ही कनेक्शन इनका रहेगा, डायरेक्ट इनका आपस में कोई कनेक्शन लोब्स का नहीं रहता। तो तीन लोब राइट साइड में, दो लोब हमने बताए बाएं फेफड़े में, तो इनके अंदर जो अंदर का लेयर है ये अंदर जाता है लोभ के अंदर, और फिर क्योंकि फेफड़ों को फैलना है, नीचे को भी ऊपर को भी, नीचे को भी ऊपर को भी, बाहर को भी फैलना है, जैसे हवा जाएगी उसी तरह वो फैलेगा, तो फैलने के लिए फ्रिक्शन ना हो, जैसे हम तेल डालते हैं उसमें मोबिलाइल, इसकी मोबिलाइल डालते हैं, तो मोबिलाइल डालने का मतलब होता है कि फ्रिक्शन ना हो, या इसका तेल का कोई इंजन को नुकसान ना हो। इसी तरह ही कुदरत ने इसमें एक फ्लूड रखा हुआ है जिसको इंटरस्टीशियल फ्लूड हम बोलते हैं, जिससे लुब्रिकेशन रहती है। जब फेफड़े फौलते हैं हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो इंस्पिरेशन होता है और उससे फेफड़े फैलते हैं और पूरी जितना उनका एरिया है उसको कवर कर लेते हैं। तो वो टच करेगा उसको बाउंड्री को, जो बाहर की बाउंड्री है, तो उसको रगड़ ना लगे क्योंकि इसके अंदर का भी लेयर है। तो इसी तरह ही जो फेफड़े खुद इटसेल्फ लोभ भी फैलते हैं, तो लोभ में भी फैलने से इसकी अपनी कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये अंदर का जो लेयर होता है ये लोब्स के अंदर तक जाता है, फ्लूड हर जगह वो फैला रहता है, फ्रिक्शन ना हो। तो ये मैंने आप सब लोगों को बताया। पहली तो बात लोभ की बता दी कि राइट साइड के तीन लोभ हैं, बाईं तरफ के दो लोभ हैं, एक छोटी सी स्लेट है जिसको लिंगुला हमने बोल दिया है, और इनका कवरिंग जो है उसको हमने प्ल्यूरा बोला है, और प्ल्यूरा के दो लेयर होते हैं, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड रहता है ताकि अंदर के जितने भी अंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे स्टोमिक हो, चाहे लिवर हो, जितना भी इनको फैलना है, जिनकी बाउंड्री है, बाउंड्री में फैलने के बाद दूसरे अंगों को इसकी कोई तकलीफ ना हो, ये इसकी बाउंड्री। और उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि ये ऊपर की तरफ जो बने हुए हैं, पिरामिड की तरफ बने हुए हैं, एपेक्स जो है, जब आप अपनी हसली की हड्डी और सामने स्टर्नम की हड्डी को यहां पर आप टच करेंगे ना, और इसमें एक गैप है हसली की हड्डी और पहली पसली के बीच में, वहां तक इसकी टॉप जाती है। ये मैं खास तौर पे ऐसे कह रहा हूं कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, क्योंकि हवा ज्यादातर जाकर अगर कहीं रुकती है, जिसको हम इम्फाइसेमा बीमारी का नाम लेते हैं, वो ज्यादातर ऊपर वाले हिस्से में रुकती है, और इसलिए वो अपेक्स में जैसे हवा जाती तो है, हवा का काम ही है ऊपर को जाना, भारी चीज को नीचे को बैठना है, तो ऊपर जितनी भी गैसेज या वगैरह कुछ होती हैं और वो ऊपर को जाती है, पेक्स तक चली जाती हैं, और लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इन्फ्लेमेशन है, कुछ ऐसी सोज हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है वो हवा ऊपर गई यहाँ बिल्कुल टॉप में और यहाँ पर ही आकर रुक गई और फिर वो वापस नहीं आ रही, क्योंकि सोज हो गई फेफड़ों में, सूजन होने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्फाइसेमा। इस तरह की प्रॉब्लम उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए आपको ये बताया। उसके बाद हाइलम की बात भी मैंने बता दी कि जो मीडियल पोर्शन है जहां लंग्स को सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन नाक से आ रही है, जहां फेफड़ों को खून सप्लाई करने के लिए उसकी आर्टरी आ रही है, जहां से बाहर जाने के लिए वेन्स जो इसका गार्बेज इकट्ठा करके बाहर लेकर जा रही है वो आ रही है, तो वो जो हाइलम है, जैसे हमारी नाभि होती है, तो नहीं होती है नाभि, तो नाभि की तरह एक ऐसा एरिया होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि राजमा देखा होगा आपने, राजमा का एक अंदर का हिस्सा होता है ना, जैसे वो राजमा की तरह अंदर का हिस्सा बना हुआ है, वो उतने उस एरिए में ही जितने भी ब्लड वेसल्स अंदर जाने वाले हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स बाहर जाने वाले हैं, जितनी भी नर्व्स अंदर जाने वाली हैं, ये सभी के सभी उस इतने छोटे से एरिए के अंदर अंदर पास करते हैं, और उसी एरिए में ही उनका आगे आगे पीछे किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं है, सारी एंट्री जो है इसमें वहीं से होती है, उसको हमने हाइलम बोल दिया। उसके बाद अब आई इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात। सांस का काम है इसका, ज्यादातर सांस देना हमें, ऑक्सीजन नाक से अंदर जाती है, और नीचे का जो पोर्शन है गले के नीचे है उसका नाम है लैरिंक्स। लैरिंक्स का जो हिस्सा है वो 10-12 सेंटीमीटर के करीब होता है। उसके बाद ये जो हमारा, जिसको हम नरगट आम पंजाबी में घरों में बोलते हैं, ये जो कंडी सी है उभरा सा हिस्सा आप देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, या इसका जो ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम बोल रहे हैं हाई आयड बोन, हड्डी का नाम है हाई आयड बोन, और ये उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको हमने ट्रेकिया बोला था। तो ट्रेकिया इस तरह का स्ट्रक्चर कुदरत ने नेक में बनाकर रखा है कि भाई ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो सिर से नीचे को जा रहे हैं, नीचे से ऊपर सिर को जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, कहीं ऐसा ना हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते कि भाई इसको पूरा यहां से निकालना है तो पूरी सिक्योरिटी से निकाला जाए, इसको भी नुकसान ना हो। तो वो जो ट्रेकिया है वो हमारी इस तरह की बनी हुई है, स्प्रिंग टाइप की होती है, उसके बारे में पहले भी प्रोग्रामों में मैंने बताया था कि स्प्रिंग टाइप की होती है और ये कार्टिलेज की होती, हड्डी की नहीं होती। हड्डी बनने से पहले का जो प्रोसेस है मेम्ब्रेन का, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं कि पूरी हड्डी तो बन, जैसे ये नाक है ना, ये हमारा सामने का नाक, हम हाथ लगा रहे हैं, ये नाक कार्टिलेज का बना हुआ, हड्डी का नहीं। और पीछे अब हाथ लगाते हो ना आंख के नजदीक, तो आप देखते हैं ये हार्ड है, ये हड्डी का बना हुआ, टर्बिनेट्स उसको बोलते हैं। तो सामने का जो है ये थोड़ा लचकदार है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेकिया जो बनी हुई है स्प्रिंग टाइप बनी हुई है और ये कार्टिलेज टाइप की एक इसकी स्ट्रक्चर है कि मूव कर सकती है, आगे पीछे होती रहती है। अब ये रखी इसलिए यहाँ कुदरत ने कि इसके नीचे से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है पास करें, मुख्यमंत्री को गुजरना है तो पूरी सिक्योरिटी कर दो चारों ओर जी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कुदरत ने उसके बनाई हुई है और इस सिक्योरिटी से जब ये नाली, मैं फिर दोबारा एक दोहरा दूं कि इस जंक्शन का अंदर का जो स्ट्रक्चर है ट्रेकिया के अंदर की, जिसको प्रोटेक्शन ये कर रहा है ट्रेकिया, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का गला तो खराब है या गले में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि वो जा ही नहीं सकती अंदर चीज, तो डॉक्टर लोग यहाँ पर सुराख करके ना फूड पाइप के कनेक्शन करके पाइप यहाँ ही डाल देते हैं। तो ये उस चीज का प्रोटेक्शन का हमारे पास इंडिकेशन है कि ये ट्रेकिया है, यहाँ पर आप सुराख कर सकते हो और फूड पाइप को पहुंच सकते हो या लैरिंग्स को, सांस नली को पहुंच सकते। कई लोगों को देखा होगा जिनको इस तरह की एम्फाइजेमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वहां पर एक विसल सी लगा देते हैं डॉक्टर कि सांस यहीं से आता रहे, नाक की जरूरत ही न पड़े, आपस इस तरह के आजकल के प्रबंध हुए हैं। तो खैर मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई ये एपिग्लोटिस के एरिया की प्रोटेक्शन करती है ट्रेकिया। एपिग्लोटिस का एरिया एक इस तरह की चीज है, इस तरह का जंक्शन है जहां पर फूड पाइप और सांस की नली ये दोनों आकर मिलती हैं। पहले जो नाक की नाली होती है, नाक से निकलती है और पीछे जाती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जा रही है। जब गले में आकर एपिग्लोटिस के एरिया में पहुंचती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है और फूड पाइप मुंह से शुरू होती है, नीचे फेरिंग्स होगी और फेरिंग्स जब ये एपिग्लोटिस के एरिया पर यहां पहुंचती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। मतलब फूड पाइप पीछे हो जाती है, सांस वाली नाली आगे हो जाती है और ये एक जंक्शन बन गया। और इस जंक्शन में कुदरत ने एक ऑटोमेटिक वाल्व लगा दिया। ऑटोमेटिक वाल्व का मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे हो तो उस वक्त उस तरफ का रास्ता खुलेगा, वो वाल्व उधर को जाने देगा उसको, और जब आप खाना खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक सेंस है कि खुराक उधर को जाएगी। कभी कभी हमारी वो नर्व अगर फेल हो जाए, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को बार बार चौकिंग होती है, पलट जाते हैं लोग, फिर बहुत जबरदस्त खांसी आती है कि कोई खुराक का हिस्सा या कोई चीज जो है वो सांस वाली नली में चली, इवन पानी पीते हुए कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि पानी सांस वाली नली में आ जाता है, लेकिन वहां जा नहीं सकता, तेरा भाई रास्ता ये नहीं है। और फिर जैसे अथरू आने वाली बात होती है, चैकिंग होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है अगर फूड वगैरह हिस्सा कोई चला जाए तो। लेकिन वो ऑटोमेटिक वाल्व यहां लगा हुआ है जो इनके रास्ते को तब्दील करता है, गाड़ी का कांटा चेंज करता है, अगर तुम इधर को जाना है तुम इधर को जाओगे, ठीक है। तो यहां आकर फेफड़ों की नाली आगे हो जाती है और ऊपर के इसका नाम था लैरिंग्स, एपिग्लोटिस से निकली तो इसका नाम हो गया ब्रोंकस, और फूड पाइप जो ऊपर से आई थी उसका नाम था फेरिंग्स, नीचे जब इससे निकली जाती ग्लोटस से तो इसका नाम हो गया आइसोफेगस। तो इनके नाम भी बदल गए और ये आगे निकलनी शुरू होगी। हम बात फेफड़ों की कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ लैरिंग्स को लेकर ही चलेंगे हम लोग। तो लैरिंग्स जब एपिग्लोटिस से निकली तो इसके नाम बदल गया, ब्रोंकस नाम हो गया इसका। और ब्रोंकस का स्टार्टिंग तो एक है लेकिन आगे दो हिस्सों में बांट गई, दो हिस्सों में बांट गई इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही, प्रोटेक्शन है उसकी, इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही वो दो हिस्सों में बट गई और एक राइट फेफड़े को जाएगी, एक लेफ्ट फेफड़े को जाएगी। उसको राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस हम बोलते हैं। बड़ी आसान सी बात है समझना कि लैरिंग्स के दो हिस्से हो गए, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, उसका नाम चेंज हो गया लैरिंग्स का, ठीक है। सो उस दाहिने फेफड़े को और बाएं फेफड़े को जाने वाली होगी। अब जब ये जो हाइलम मैंने बताया, जो सेंट्रल वाला जो राजमा के अंदर का हिस्सा जो मैंने कर्व किया होता है उस हिस्से की बात कर रहा हूं, वहां से ये फेफड़ों में एंटर करेगी दोनों साइड, वहीं और भी स्ट्रक्चर जा रहे हैं और वो मीडियास्टाइनम में जा रहे हैं। बड़ी प्रोटेक्शन है उनकी, उनके लिए कुदरत ने अलग अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रबंध किया सिक्योरिटी का। सो ये दोनों राइट को जाएंगी, लेफ्ट को जाएंगी। अब आगे का जो इसका नाम है, हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जब हम बोलते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में एक नक्शा आ जाता है कि एक ट्री का एक स्टेम होता है, तना होता है, तने के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, टहनियों की सब टहनियां होती हैं, छोटी छोटी टहनी होती हैं, फिर उसके आगे पत्ते होते हैं, जो लीव्स हैं वो चौड़ी होती है, टहनी तो बिल्कुल पतली होती है, और उसके आगे जो पत्ते निकलते हैं या जहां फूल निकलते हैं, फूल भी चौड़े होते हैं और पत्ते भी चौड़े होते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। और ये जो ब्रोंकियल ट्री है हमारा, जब ट्रेकिया से निकला दो हिस्सों में बटा और उसके बाद इसका राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस आ गया नाम, उसके आगे जब ये ब्रांचिंग होना शुरू होता है ना, इधर भी टहनियां फैल रही, राइट फेफड़े में लेफ्ट फेफड़े में जानी शुरू होगी, प्लस राइट साइड में तीन भागों में बांटकर तीन लोब में जानी शुरू होगी, लेफ्ट साइड में दो भागों में बांटकर दोनों चीजों में बांटनी शुरू होगी। तो जो ब्रोंकस की वो लेफ्ट साइड में दो हिस्सों में बटी, राइट साइड में तीन हिस्सों में बटी, और फिर वो आगे ब्रांचिंग होनी शुरू होगी, फिर उनकी आगे ब्रांचेस निकलनी शुरू होगी, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई, ठीक है। ब्रोंकियाई जो है बस समझ कर लें कि एक दरख्त की बहुत ब्रीक टहनियां हैं इस तरह, लेकिन वो अंदर से खोल है, अंदर से पाइप है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जानी है, अंदर और कुछ नहीं जाना, सॉलिड कोई चीज नहीं जा सकती, ऑक्सीजन जाती है। तो ब्रोंकाई के अंदर वे ये जो है ब्रांचेस जब होती हैं उसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल्स, छोटी, जैसे आमतौर पर बोलते हैं एक तो आर्टी होगी ना, आर्टियोल्स होगी ना, आर्टियोल्स के आगे जो पंजाबी में उसको बोलते रतवाला, रतवाला का क्या रत, सभी समझते हैं रत क्या है, खून, खून क्या है, रेड, लाल लाल टाइप की कोई भी चीज जब वाल की तरह ब्रीक हो जाए तो उसको हमने रतवाला बोला था, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट है इससे कि हम उसको आर्टियोल्स बोल दें। अंग्रेजी में समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, हमारे हिंदी में समझना बहुत बहुत मुश्किल सी बात है। जैसे मैंने दूसरे प्रोग्रामों में बताया था, अगर हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं तो बड़ी आसान सी बात है, सभी समझ लेते हैं, और अगर हम ये कहें लो पथ गामनी विश्राम ग्रह तो बड़ा मुश्किल है जानना, ये जान रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह मेडिकल साइंस में जितने भी हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज्यादातर वर्नाकुलर टाइप के हो गए, ज्यादातर रूटीन, गुड वेरी गुड जी। तो ये आम रूटीन के बहुत सारे लफ्ज हैं, हर एक भाषा ने एक दूसरी भाषा से लफ्ज लिए हैं और वो अपना विरसा और स्ट्रांग करते रहते हैं। और मेडिकल साइंस में तो खास तौर पे ऐसा हुआ है कि मेडिकल साइंस, चाहे हम हिंदी में, चाहे हिंदी वर्षन वाले लोग हैं, चाहे पंजाबी वाले लोग हैं, ज्यादा वर्ड हमारे जो हैं वो अंग्रेजी वाले ही हैं और उनको समझना हमारे लिए आसान है। तो ये मैं उस ब्रोंकियल टी की एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रहा हूं कि टी की तरह जब बना तो जब उसकी ब्रोंकियोल्स बन गई, छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके आगे फिर जैसे पत्ते निकले, तो पत्ते निकलते हैं तो वो टेनिस जो ज्यादा चौड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, तो उसके आगे एक जैसे फुलफला होता है ना, पुखाना होता है ना, बुलबुला जैसे फुलाते हैं हम लोग, वो बुलबुले की तरह आगे स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्गोलाई बोलते हैं उसको, हाँ जी, वो पुकाने की तरह है, वो फैलती है कि जैसे ही बाहर से हवा आई हमने इंस्पिरेट किया, सांस लिया, इतनी ब्रांचों से होता होता होता होता एल्गोलाई तक पहुंचेगा, वो एल्गोलाई फूल जाएगी, जब वो फूल जाएगी तो उसके अंदर दो काम होंगे, एक तो ये कि ये एयर आई है, दूसरा ये है, अच्छा एक और अंतर है इसमें, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सांस तो हम एक मिनट में 14 से 16 बार लेते हैं नॉर्मली, हार्ट एक मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, मतलब क्या हुआ, हार्ट जो फेफड़ों को खून भेज रहा है वो एक मिनट में 72 से 80 टाइम भेज रहा है, मतलब है कि ये जो एल्वोलाई है इसमें ऑलरेडी हवा आने से पहले खून वहां पर है, और वो खून है जो पूरे शरीर से होकर आया है, उसमें नाइट्रोजिनस कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेस तो हैं, इसमें गार्बेज और भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम है। अब ये 72-80 बार ये समझ कर लें कि ये जो ट्रैफिक आ रही है 72 ट्रेन आ गई हार्ट से फेफड़ों में और वो एल्वियोलाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 72 से 80 बार एक मिनट में ट्रेन आ गई, इतनी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जो सामान लेकर आ रही, वो जो खून लेकर आ रही है उसमें गार्बेज है सारा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजिनस गैसेस है और भी कुछ है, लेकिन सांस जो है आ रहा वो 14 से 16 बार पर मिनट में आ रहा। तो मैं ये बात कहकर आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि खून ब्लड ऑलरेडी उन एल्वोलाई में एग्जिस्ट करता है, जब ऑक्सीजन आई बाहर से, सांस से ऑक्सीजन अंदर गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भारी है, उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की है, तो क्या वैसे वो छोटे छोटे स्कूलों में हम जो पढ़ते थे ना, तो ये साइंस के एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करवाते थे कि जो भारी गैसेस है उसका जार था उसको हम नीचे ऊपर रखते थे और जो हल्की गैस उसको नीचे रखते थे, तो अल्टीमेट देखते थे वो एक्सचेंज हो जाती थी, भारी गैस नीचे आ जाती थी दूसरी ऊपर चली जाती, ठीक वही क्रिया यहां पर होनी शुरू हो जाती है कि बाहर से हमने सांस लिया, ऑक्सीजन इस ब्रोंकियल ट्री से होते होते ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स तक जाते हुए यहाँ एल्वोलाइज में पहुंच गई, और एल्वोलाइज में ऑलरेडी ब्लड यहाँ है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जहां ऑक्सीजन गई ये तो भारी है, एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन गई तो ये अंदर बैठ जाएगी उस ब्लड में जो वहां पर भरा हुआ पहले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर चली जाएगी, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कुदरत ने अपने आप बनाया है, इसमें बहुत बड़ी कारीगरी वाली समझने वाली बात नहीं है कि कैसे हमारा खून साफ होता है, कैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, कैसे ही है, और ऑक्सीजन बाहर से आई, ये खून वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, और ये जो एक और बात है, यहां पर एक बड़ी ऐसी बात होती है कि जितनी भी एल्वोलाइज हैं, ये जो पुकाने तरह फूली हुई है जिसमें खून आकर इकट्ठा होता रहता है 72 बार एक मिनट में, उसमें नीचे बहुत थिकनेस होती है क्योंकि बहुत ब्लड नीचे है, जैसे ये हम कहें कि किसी एक ही बर्तन में दो तरह की चीजें, दो रंग नहीं रह सकते, दो तरह का जूस हो तो अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, रेड कलर का जो हरे रंग का कोई जूस आप मिलाएं तो वो एकदम मिक्स मिल जाएंगे आपस में, लेकिन यहां पर एक अचंभे वाली बात होती है कि ऊपर वाला जो होता है वो लाइट उसका डिफरेंट कलर होता है, नीचे वाले का सेपरेट कलर होता है, क्योंकि थिक खून नीचे बैठ जाता है। एक बात आपको शायद याद होगी, मेरे दिमाग में आ गई अभी चलते चलते, मैंने आपको कहा था कि प्लेसेंटा जो है, जब बच्चा मां के पेट में होता है ना, तो मां से जो खून आता है वो सीधा बच्चे को नहीं जाता। रास्ते में एक कस्टम डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, तो उस प्लेसेंटा में खून एक तरह इस तरह का कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह का खून रहता है। एक खून जो मां की तरफ से आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है और वो भारी है, दूसरी तरफ बच्चे से वापसी होकर खून जो आ रहा है वो भी प्लेसेंटा में मां को वापस जा रहा है और वो हल्का है, वो सेपरेट है। तो मतलब बच्चे से जो आया हुआ खून वो ऊपर रहता है और नीचे से प्लेसेंटा, आपने देखा होगा कभी किसी ने ऑल देखी हो ना, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ऑल देखी हो तो उसके नीचे वो नाली लगी होती है जो हम काटते हैं, नाड़ू काट दिया जी, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे लगी होती है। और नीचे इसीलिए लगी होती है कि मां की तरफ से आने वाला खून ऑक्सीजन वाला है और ऑक्सीजन भारी है, ये नीचे रहेगी, और जो बच्चे से आने वाला खून है वो हल्का है इसलिए ये ऊपर रहेगा। और आप उसको देखेंगे भी तो नीचे वाला पोर्शन जब और बाहर आ जाती है बच्चे के साथ, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेड होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है जहां अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है वो नीले नीले रंग का होता है। तो कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह के खून रह रहे हैं। समुन्द्र में भी ऐसा होता है कि वहां का ये नीला समुन्द्र है, वहां का ये हरे रंग का समुन्द्र है, लेकिन समुन्द्र में दीवार तो होती नहीं, एक ही पॉट में इस तरह होता है। तो वही बात मैं फेफड़ों की बात आपसे कर रहा हूं कि फेफड़ों में भी ऐसा होता है कि जो खून हार्ट से फेफड़ों में आया, एल्वोलाइज में पहुंचा, वो हल्का है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और बहुत सी गैसें हैं, वो हल्की है, वो ऊपर रहेंगी, और ये जो जाएगी और एयर बाहर से ये भारी है और ये सेडिमेंटेट करेगी नीचे। तो नीचे वाला खून जो है उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इन्वेड करती है, और इन्वेड करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, कुदरत ने हर चीज इस तरह समझे ना, अगर आप हम लोग समझना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर चीज को कैसे कैसे कुदरत ने बना दिया ऑटोमेटिक। वो गुरु नानक देव जी की बात मैंने करी थी, कई बार मैं करता हूं कि जो कि छिपाया सो एक बार, उसने जो करना था ना एक बार सब कर दिया है, अपने आप सारा कुछ चले जा रहा है। और ये भी अपने आप करने वाली बात है कि मैं जब सेल की बात कर रहा था ना आपसे, एक सेल है, सेलों से ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे बॉडी बनी हुई है। अब सेल किस तरह का किला है जिसकी दीवार तो है और इस दीवार में दरवाजा नहीं है। अब इस सेल में बाहर से खुराक भी जाती है, अंदर से गार्बेज भी बाहर आता है, लेकिन दरवाजा नहीं है। तो अब उसका क्या प्रोसेस है, उसकी मैंने बार बार आप लोगों को एग्जांपल दिए, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में उसी तरह वो बैठ जाए कि या हाँ ऐसे ऐसे ये होता है। आप कपड़े के पोने से आप चाय छानते हो या शिकंजी भी बनाते हो तो वो छानते हो, या कोई भी चीज इस तरह की पानी की बनाई हुई शरबत की उसको छानते हो, तो उसको जितना प्रेशर दोगे ना, जितना ऊपर से प्रेशर दोगे उतना नीचे से वो संघना मादा भी नीचे आ जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर ज्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह ही जो खून सेल में पहुंचता, हरेक सेल की बात करो, उसमें जो आ जाते हैं ना वो आर्टियोल्स हैं, बाहर से खून सेल में आता है, आर्टियोल्स में प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से आर्टियोल्स का खून सेल की दीवार को इसी तरह प्रेस करके उसके अंदर चला जाता है, और जो अंदर का गार्बेज है जिसमें गैसेस हैं वो बाहर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह इस प्रोसेस का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि कैसे सेल के अंदर दरवाजा तो है नहीं, कैसे सेल के अंदर खून जाता है, खुराक जाती है, कैसे सेल से अंदर से बाहर गार्बेज आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परमीएबिलिटी। तो परमीएबिलिटी के तरीके से ही ये सारा प्रोसेस सारे शरीर में एक एक सेल में खून जाता है, खुराक जाती है, इसी परमीएबिलिटी के तरीके से ही एक सेल से बना हुआ गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं फेफड़ों की। अब फेफड़ों के एल्वोलाइज में वो जो पुकाने फूले हुए हैं उनमें हार्ट से खून आता आता आता आता 72 टाइप खून आ गया, उसमें आकर सेडिमेंटेट कर रहे, वो फूल गए, वो फूले हुए हैं। और याद करें कि फूलना भी उनका इस तरह है कि वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकें, अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने ब्रीक हैं, फूल जाते हैं। 72 बार एक ट्रेन आई, उसने अपने पैसेंजर वहां उड़ाल दिए, बावजूद इसके भी वो माइक्रोस्कोप से देखने लायक है। तो क्या हुआ, वो उसमें चले एल्वोलाई में, वो चले गया, वो खून बैठा हुआ, पहले बाहर से ऑक्सीजन आई तो उस ऑक्सीजन के जो वो भारी है, उस ऑक्सीजन का जो है मॉलिकुलर वेट ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रह जाती है, वो चीजें ऊपर आ जाती हैं, जो सॉलिड ब्लड होता है वो नीचे रह जाता है। अच्छा एक याद, इस ब्लड में और गार्बेज भी है, ये जो ब्लड फेफड़ों से हार्ट से होकर फेफड़ों में आया है ना, अकेला गैसियस गार्बेज नहीं है, और गार्बेज भी है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि ये यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन भारी है वो नीचे बैठ जाती है, और नीचे ऑलरेडी ब्लड है, और उस ब्लड में ट्रेन के खाली डब्बे हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा कि जितने भी ब्लड के सेल है ना, उनमें कुछ सेल तो हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल कहने से मेरा मतलब ये है कि उसका अपना अंदर भरा हुआ है, उसका उसको लिविंग सेल बोलते हैं हम लोग, जो अपने आप अपनी पूरी जिंदगी आगे आगे कर सकते हैं। सो वो उनको हम न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ये सारे सेल जो हैं ये न्यूक्लिएटेड सेल हैं, मतलब इसके अंदर खाली जगह नहीं है, इसके अंदर अपना मटीरियल है भाई। लेकिन जो आरबीसीज हैं, जिसको हम रेड ब्लड कहते हैं, लाल खून के कण जिनको हम बोलते हैं, ये बेचारे खाली डिब्बे हैं, ये अंदर इसके कुछ नहीं, बाहर बाहर दीवार ही है, खाली डिब्बे हैं, और जो ऑक्सीजन आई थी नीचे वो इसमें भर जाती ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये खाली हैं, और भरती कैसे है, क्योंकि इनका अपना मेम्ब्रेन है, इनका को ये भी तो सेल है ना, तो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो भारी, वो जबरदस्ती इसके अंदर घुस जाती है, वो ये ट्रेन के डिब्बे भर जाती है, उसके बाद इनको वापस जाना है, और वापस जाने के लिए नीचे वाले पोर्शन से जो निकलती हैं लाइनें, जिनको हम बोलते हैं वेन्स, और उसकी जगह वेन्स जो हैं वो बाईं तरफ हार्ट को खून लेकर जाती, आने वाली थी एक पल्मोनरी आर्टरी, वो गार्बेज लेकर आ रही थी, दो भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों को उसने बांट दिया, दोनों फेफड़ों से फिर दो दो नालियां, कि भाई जितना तो 72-80 बार चला है बेचारा, तो जितना ज्यादा खून है साफ हो गया है, इसको फटाफट पहुंचा दीजिए फैक्ट्री में, जितना सामान तैयार हो गया इसको फटाफट मार्केट में भेजें। तो कुदरत ने चार वेन लगा दी, कि चार वेन जो हैं, दो राइट फेफड़े से, दो लेफ्ट फेफड़े से, फटाफट हार्ट के बाईं तरफ लेफ्ट एट्रियम में वो भेजना शुरू कर देती। तो खैर वो हार्ट की बात है, मैं केवल आज फेफड़ों तक सीमित हूं, तो फेफड़ों की बात मैं ये कर रहा हूं कि इस प्रोसेस से ये जो हमारी एल्वोलाई है, इनमें एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, वो एक्सचेंज प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इसमें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि 72 बार खून आता है या 80 बार आता है या किसी का ज्यादा भी आता होगा, पल्पिटेशन होता है या प्रॉब्लम होती है, तो खून ज्यादा आ जाता है कई बार फेफड़ों के, डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप को बुलाकर हम जो देखते हैं ना, तो यही चीज देखते हैं कि कोई चीज ज्यादा आ गई है तो हवा को जाने में दिक्कत होगी ना, उसकी अलग अलग आवाजें हैं जो हमारे कानों में फिक्स है, जैसे वो कोई अच्छा शिकारी होता है ना, तो बाहर जाए वो शिकार करने, तो कोई जानवर बोलता है, बोलता है ये बटेरा बोल रहा है, ये तीतर की आवाज आ रही है, ये इसकी आवाज है, वो जानवरों की आवाजें उसके दिमाग में फिट हो जाती, ये बोल रहा है। इसी तरह हम लोग डॉक्टरों के दिमाग में ये चीजें फिट होती है कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। अगर किसी को निमोनिया हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। तो जितने भी बीमारियां इस तरह की होती हैं उनकी आवाजें अलग अलग हमारे कानों में फिक्स है दिमाग में कि हम ये उसकी आवाज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस से एक्सचेंज का प्रोसेस गैसों का चलता रहता है। बाकी जो गार्बेज है ना, यहां सिर्फ गैसों का गार्बेज एक्सचेंज हुआ है और आगे ये खून हार्ट में गया, हार्ट ने फिर खून पूरे शरीर को दिया, पूरे शरीर में चलते चलते अलग अलग सेंटर हैं, अलग अलग जैसे किसी ने थाने बनाए होते हैं ना, ये सीए स्टाफ है, ये स्टाफ है, वो है, अलग अलग चीजें उन्होंने बना दी हैं। तो आगे जब ये खून चलता चलता, इसमें ऑक्सीजन तो है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए उनको। जैसे बाजार में आता है ना कोई रेडी वाला, कोई सब्जी बेचने के लिए आता है और उसके पास तो सभी सब्जियां हैं, मेरी जो जरूरत है, मैंने कद्दू खरीदने तो कद्दू लूंगा, मैंने भिंडी खरीदनी तो मैं भिंडी लूंगा, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन लेनी थी वो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, आगे ये खून गया, हार्ट ने फिर इसको पूरे शरीर में भेज दिया, पूरे शरीर में भेजते ये खून चलते चलते चलते चलते पहुंच गया किडनी में, मुझे हिस्सा किडनी में पहुंच गया। तो किडनी ने ये सोचा कि ना भाई, खून में इतना सोडियम चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतना ये चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा आ गया है, ये तो बंदा लून बहुत खाता है, ये तो बंदा ये इस तरह की खुराक बहुत खाता है, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं, इसके ये तो एल्ब्यूमिन फैटी चीजें बहुत ज्यादा खाता है। तो वो क्या करेगी कि भाई मेरे पास ये छानना लगा हुआ है, मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, इसमें जो जो चाहिए शरीर को मैं वो जाने दूंगा, बाकी चीज नहीं जाने दूंगा, ये मेरा कस्टमर डिपार्टमेंट है, बाहर के देश से ये चीज नहीं आ सकती। तो वो चीज वापसी खून में फिर भेज देगी किडनी, जो दूसरी चीज है उसको पानी में मिक्स करके पेशाब से बाहर निकाल देगी। अब गार्बेज तो फिर भी बच गया, और भी गार्बेज बच गया, वो फिर खून जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और सर्कुलेट करते करते वो फिर पहुंच जाता है चमड़ी के पास। चमड़ी जो है हमारी, वैसे तो बाहर से लगता है कि ये तो बंद है पूरी तरह, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें मुसाम हैं, और वो मुसाम जो हैं वो परमीएबिलिटी के हिसाब से खुलते हैं, फैलते हैं और सुकड़ते हैं। बाहर ठंड हो तो पेशाब ज्यादा आता है, कोई यहां पसीना नहीं निकल सकता, मुसाम बंद है, गर्मी है तो ये मुसाम फैलते हैं, अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है, ये फैलते हैं, पसीना बाहर आता है, पेशाब काम आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने ये बना, तो खैर ये ब्लड जो बाकी है किडनी से भी हो गया, फेफड़ों से भी हो गया, जो जो जहां जहां बाहर के देश से ये चीज नहीं आ सकती, तो वो चीज वापसी खून में फिर भेज देगी किडनी, जो दूसरी चीज है उसको पानी में मिक्स करके पेशाब से बाहर निकाल देगी। अब गार्बेज तो फिर भी बच गया, और भी गार्बेज बच गया, वो फिर खून जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और सर्कुलेट करते करते वो फिर पहुंच जाता है चमड़ी के पास। चमड़ी जो है हमारी, वैसे तो बाहर से लगता है कि ये तो बंद है पूरी तरह, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें मुसाम हैं, और वो मुसाम जो हैं वो परमीएबिलिटी के हिसाब से खुलते हैं, फैलते हैं और सुकड़ते हैं। बाहर ठंड हो तो पेशाब ज्यादा आता है, कोई यहां पसीना नहीं निकल सकता, मुसाम बंद है, गर्मी है तो ये मुसाम फैलते हैं, अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है, ये फैलते हैं, पसीना बाहर आता है, पेशाब काम आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने ये बना, तो खैर ये ब्लड जो बाकी है किडनी से भी हो गया, फेफड़ों से भी हो गया, जो जो जहां जहां कार्रवाई होनी थी सफाई की हो गई, और उसके बाद ये

बाहर ठंड हो तो पेशाब ज्यादा आता है, कोई यहाँ पसीना नहीं निकल सकता, मुसाम बंद है। गर्मी है तो ये मुसाम फैलते हैं, अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है, ये फैलते हैं, पसीना बाहर आता है, पेशाब काम आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने ये बना, तो खैर ये ब्लड जो बाकी है किडनी से भी हो गया, फेफड़ों से भी हो गया, जो जो जहां जहां कार्रवाई होनी थी सफाई की हो गई, और उसके बाद ये स्किन के पास पहुंचा था, तो स्किन ने कहा कि ठीक है भाई, ये जितना गार्बेज बाकी है ना इसका मैं संभाला करती हूं। और स्किन के अंदर कुदरत ने एक स्पेशल टाइप का टोका लगाया हुआ, टोका मशीन है, चारा कुतरते हैं हम, छोटा ब्रिक ब्रिक करते हैं उसको पशुओं की, तो इसी तरह का उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। वो जो एपोक्राइन ग्लैंड है ना, क्योंकि सारा गार्बेज तो खून में मिक्स होकर आ रहा है, वो सारा तो इतना ब्रीक नहीं है कि चमड़ी के मुसामों से बाहर आ जाए, इसलिए वो उसको ब्रीक करता है, और ब्रीक करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड तो फिर पसीने से वो बाहर निकल सकते हैं। कई बार लोगों को आपने देखा खारिश होती है ना, तो खारिश का मैकेनिज्म क्या है, तो कभी इधर खारिश होगी कभी उधर खारिश होगी, क्या है मतलब? मतलब ये है कि वो जो गार्बेज आ गया आपने जो खाया था वो पूरी तरह टट्टी से पेशाब से निकला नहीं है, रह गया है, वो स्किन तक पहुंचा है, और वो जो चीजें आपने खाई हैं वो शरीर को नहीं चाहिए, शरीर बर्दाश्त नहीं करता, वो गार्बेज के लिए हरेक सेल ने बाहर निकाल दी है और खून में जाते जाते चमड़ी में पहुंच गई है। अब चमड़ी बोलती है कि भाई ये तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, पूरे शरीर को कवर करता है, इतना बड़ा ऑर्गन तो कोई और है ही नहीं, अब मेरे से तो कोई गार्बेज बचना नहीं चाहिए, मैं तो सभी निकालना है मेरी जिम्मेवारी। तो वो जो गार्बेज स्थित होता है केमिकल टाइप का होता है वो नहीं निकलता, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमें इरिटेशन होती है, हम खारिश करते हैं ताकि इससे वो जो मुसाम है वो डायलेट हो जाएं और वो बाहर निकल जाएं। तो खारिश करते करते कई बार वो छिला भी जाता है, खून भी आ जाता है, और कई बार वो उसमें से मुआद निकलता है, उसको हम वेट एक्जिमा बोलते हैं, ऊजिंग एक्जिमा बोलते हैं। कई बार निकलता कुछ नहीं लेकिन खारिश ड्राई हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा तो कम है लेकिन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, खारिश हो सिर्फ इसलिए हो रही है। तो मतलब खारिश का एक्सप्लेनेशन ये है। हम फिर आ रहे हैं अपने उस फेफड़े की तरफ ही, तो फेफड़े के अंदर का जो ट्री था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रोंकस का जो ट्री है वो इस तरह काम करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें बाहर आ जाती है, या और भी जितनी नाइट्रोजन गैसेस में बनती हैं उनको वो बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से, मान लीजिए जैसे आप पहाड़ी में चले गए, वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पर जरूरत है ना शरीर की, हम कुदरत ने नियम फिक्स किया है कि 14 से 16 बार एक आदमी सांस लेता है तो जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, या हम तेज तेज दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो अभी हम तेज तेज सांस लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि अंदर की डिमांड पूरी करनी है, सप्लाई पूरी करनी है, इसलिए हमारा सांस तेज तेज चलता है। अब इसने ऑक्सीजन ले रही तो हार्ट को ऑफ फ्लॉर मुसीबत हो गई कि भाई इसको आगे सप्लाई भी करना, हार्ट जो डिपो है ना बेचारा, है चीनी का डिपो है, बाहर से सामान आया है इनको आगे सप्लाई करना है, ये रख भी नहीं सकता, तो इसलिए हार्ट भी उतना तेज तेज चलना शुरू हो जाता है। हम दौड़ते हैं तो हार्ट भी इतना तेज तेज चलता है, हाइट पे जाते हैं सांस फूलता है तो हार्ट भी बहुत तेज तेज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वो पूरी उसकी कर रहा होता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था हमारे फेफड़ों का था। उसके बाद फंक्शन के बारे में तो आप सब समझते हैं कि इसका फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन के बिना कोई सेल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में इस तरह का काम करती है, अगर चूल्हे में हमने लकड़ी रख दी लेकिन ऊपर दाल सब्जी भी रख दी, लेकिन हमारे पास माचिस ही नहीं है, आग नहीं बलेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन, अब वैसे भी अगर चूल्हे में आग नहीं जलती तो हम फूंक मारते हैं ना, फूंक मारने का मतलब क्या होता है, आग को जलाना, और ये जो हवा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर के अंदर इस तरह का काम करती है कि आग पैदा होती और जिससे हमारे शरीर का पूरे का पूरा चलन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। कभी आगे किसी प्रोग्राम हो तो

0: मैं ये भी आप बताऊंगा कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आग बढ़ती है, ये कैसे होता है कि ऑक्सीजन से सारा शरीर काम करने शुरू कर देता है, जो ऑक्सीजन नहीं है तो पता मुर्दा हो जाता है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे कि ये कैसे कैसे होता है। मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है, पर हाल है बाकी बहुत कुछ मुझे कहने वाला है, जैसे वेट है, अलग अलग फेफड़ों का अलग अलग वेट है, नीचे का जो डोम है उसकी कैसी कैसी बनतर है, उसमें क्या क्या है, और उसमें अगर कोई अंतर आ जाता है तो हमारे पास क्या क्या निशानियां बाहर आएंगी। अभी तो बहुत सी बीमारियां हैं इसकी, फेफड़ों में क्या क्या होता है, जैसे दमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, सीओपीडी होता है, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां, जितनी जितनी मुझे याद आती जाएंगी मैं आप सब लोगों को बताता जाऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे फर्क होता है। इसको हम दमा क्यों बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस क्यों नहीं बोलते, ब्रोंकाइटिस ही क्यों बोलते, निमोनिया क्यों नहीं बोलते, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अगले प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। और फिर बताऊंगा कि भाई अगर इस सारे ताने बाने में कोई नुक्स हो जाए तो डॉक्टर तो देख लेंगे, आम आदमी क्या देखेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जब इस तरह के वकार फेफड़ों में पैदा हो जाएंगे तो कुछ निशानियां बाहर आएंगी जो आम आदमी देखकर पहचान सकता है कि इसके यहां पर नुक्स है भाई, ताकि वो कंसर्न डॉक्टर के पास उसको ले जाए सीधा और सीधा उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए। यहां बहुत सी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आप घर पर भी बहुत सी चीजों का उपचार कर सकते हैं ताकि सीरियस होने से पहले पहले आप उसको कुछ सहूलियत दे सके, कुछ बचा सके, और डॉक्टर के पास जाए, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोले ओ जी आपने तो देर कर दी लाने के लिए। सो बहुत सी चीजें इन प्रोग्रामों में मैं आपके साथ हमेशा साझी करता रहता हूं, और अब फेफड़ों की बात आई है तो वो भी मैं बातें आपके साथ साझी करूंगा कि कौन सी निशानियां बाहर आएंगी अगर इसमें ये पूरे सर्कल है, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो, अगर प्लूरा में कोई नुक्स हो गया है तो, अगर किसी लोब में नुक्स हो गया तो, अगर हवा यहां रुक गई बाहर आ ही नहीं रही फेफड़ों से जिसको बाहर आना चाहिए, तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, और उसकी निशानियां क्या होंगी जो बाहर आएंगी, जो बाहर आप देख सकते हैं, इसका वेरवा मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 95468, फोन नंबर 408-687-1899, ईमेल एड्रेस homeomedicine@yahoo.com homeomedicine@yahoo.com। किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करवा रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तो जो नेचर के प्रोसेस है जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, मेरे 52 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए और इसमें से 26 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, अब जब से अमेरिका में हूं 32 साल हो गए, तब से भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, एवरी डे पढ़ा रहा हूं, तो वो जो नॉलेज इकट्ठा किया हुआ उसके हिसाब से रुकावट कहां हो सकती वो मैं आप सब लोगों को बता सकता हूं, ताकि आपका इलाज हो सके, आप जल्दी सेहतयाब हो सके। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं,
0: सत श्री अकाल।